0: बस एटलूज जानो।
1: MBC रेडियो योर म्यूजिक कंपेनियन।

नहीं घोड़ा। सुना क्या लड़की बोला, बात में बहुत दम है, छाती ठोक ठोक के बोला।

0: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यहीं समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपसे अशिता। नमस्कार।
1: नमस्कार नीलमणि, श्रोताओं को भी नमस्कार। आज 5 जून शुक्रवार की इस प्रातःकालीन पहले संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सभी को नमस्ते और प्रणाम। सबसे पहले हम स्थानीय स्तर पर बात करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ी ड्रग तस्करी का पर्दा साफ हुआ है। 94.5 मिलियन रुपए मूल्य की गांजा बरामद की गई है। 2 यात्रियों सहित 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर की ये बड़ी कार्रवाई। और 19 जून को सरकार वित्त वर्ष 2026-2027 के बजट की प्रमुख रूपरेखा पेश करेगी। पूरे मॉरिशस की नज़र इस महत्वपूर्ण बजट पर टिकी है, जिससे सामाजिक राहत और आर्थिक दिशा को लेकर बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का केंद्र बना हुआ है। प्रकृति को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता और सामूहिक प्रयासों पर जोर दिया जा रहा है। वृद्धों और कमजोर वर्गों से करोड़ों रुपए की कथित ठगी मामले में नया खुलासा सामने आया है। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में एक और संदिग्ध कल रात गिरफ्तार हुआ, आज अदालत में उसकी पेशी है। और साइबर हमलों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी के बीच मॉरिशस ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत किया है। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन अधिनियम में संशोधन कर डिजिटल सेवाओं में सुरक्षा और भरोसे को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिबानी सशस्त्र संगठन हिजबुल्ला ने अमेरिका समर्थित इसराइल लिबानन युद्ध विराम समझौते की शर्तों को सख्ती से खारिज कर दिया है। संगठन का कहना है कि ये वार्ता लिबानन के लिए अपमानजनक और निष्फल रही है तथा इससे जनता के बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं है। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच 11 यूरोपीय देशों ने रूसी पर्यटकों के लिए वीजा नियमों को और कड़ा करने की मांग की है। इन देशों का मानना है कि छुट्टियों के लिए यात्रा की अनुमति यूरोपीय एकजुटता को कमजोर करती है और सुरक्षा संबंधित जोखिम भी बढ़ा सकती है। इसके साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। फिलहाल के लिए बढ़ते हैं हम मौसम संबंधी जानकारियों की ओर।
2: Your weather forecast on RM2
3: Radio Masti।
1: मौसम का हाल। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवा का बहाव है। अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है सुबह के समय और दिन के दौरान आसमान साफ रहेगा और विशेषकर सेंट्रल प्लाटू पर दोपहर बाद और उत्तर पश्चिम तथा उत्तर में बादल विकसित होंगे और रहकर वर्षा होगी। कभी कभार बारिश तेज भी हो सकती है। रात के दौरान ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और रहकर वर्षा होगी। तापमान, अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा, सेंट्रल प्लेटों पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच।

0: और तटीय इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह के समय हवा हल्की बहेगी तथा दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दिन के दौरान हवा बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पार सामान्य रहेगा, 2 मीटर की लहरें उठेंगी। आज सूर्योदय सुबह 6:49 पर और सूर्यास्त शाम 5:37 पर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
0: तो इसके साथ ये पहला फ्लैश न्यूज समाप्त हो चला। हमारे यूरोप का और आपकी मुलाकात पुनः होगी ठीक 6:30।

की बेला ताजगी भरी शुरुआत। भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।

0: प्रणाम शुभ्रभात श्रोतागण, घड़ी मिलाते चलिए। इस समय सुबह के 6:05 हो चुके हैं। इस शुक्रवार 5 जून 2024 को साथ निभा रही है पूजा। ये MBC रेडियो मॉरिशस का सीधा प्रसारण है। श्रोताओं, कहा जाता है कि हमारे सोच विचार का ही अंतर है। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा ही वो बनता जाता है। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियां सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से हाइलैंड्स के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर मोसेलमो राहिमिया आउदाली लेन और आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 7 जून 2024 को सुबह के 9 बजे से लेकर 12 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और फिर हैं क्यूपिप के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर इन गलियों में गाफ्रे स्ट्रीट, रूट जॉन्डन, ओगस एसनूफ स्ट्रीट, लिसले रेओफ्रे स्ट्रीट, बेनादिन सेंट पियर स्ट्रीट के रहने वाले निवासियों को और साथ में हैं दागुची ग्रांप्रे स्ट्रीट, कॉलेज लेन के आसपास के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 7 जून 2024 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और अंत में हैं वाकवा के रहने वाले निवासियों को, खासतौर पर सैंपल और फिनिक्स के रहने वाले निवासियों को, रूत सैंपल, बेशाव लेन, पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड, सौमिल लेन, इदगौद किरीन एवेन्यू, मोसेलमों नोएल, एपास गुमानी और बालगोबिन के कुछ हिस्सों में, बालगोबिन लेन के कुछ हिस्सों में, उस्मान एवेन्यू, आली जाक स्ट्रीट, एपास लोरियो, मोसेलमों शाम्बो, मोसेलमों सुब्राती, केनिक लेन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, CWA सैंपल के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 5 जून 2024 को सुबह के दोपहर के 2:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक, क्षमा कीजिए, 2:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है।
1: 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
0: आइए श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं सुधा वृष्टि के साथ। आइए इसे सुनते हैं हिंदू महासभा की ओर से।
2: हिंदू महासभा द्वारा आइए सुनिए सुधा वृष्टि।

वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुत्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री श्री सीतारामचन्द्राय नमः। श्रीरामदूताय नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। ओं नमो भगवते सियाराम कृष्ण हरि नारायण। सभी मेरे श्रोताओं को सादर नमन करते हुए हिंदू महासभा की ओर से मैं बाबाजी गिरीश शर्मा आज फ्राइडे 5 जून 2026 के सुधा वृष्टि कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इन दिनों अत्यंत पावन और पुण्यदायी अधिक पुरुषोत्तम मास चल रहा है और यह पुरुषोत्तम मास हमें यह प्रेरणा देता है कि हम अपने जीवन को केवल भौतिक सुखों तक सीमित ना रखें, बल्कि भगवान श्री हरि की भक्ति, सत्कर्म, सेवा और साधना के माध्यम से अपने जीवन को आध्यात्मिक रूप से भी समृद्ध बनाएं। हम सभी इस अधिक पुरुषोत्तम मास में यह संकल्प लें कि अपने जीवन में धर्म, सत्य, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलेंगे तथा भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करेंगे। शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकेकनाथं। गत सप्ताह हम इस श्लोक का वर्णन कर रहे थे, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे लिखा गया है मेघवर्णं शुभांगं। इस चरण में भी श्री हरि विष्णु के दो और विशेषण हैं। सामान्यतः इसका भी अर्थ मेघ के समान वर्ण वाले और शुभ अंगों वाले हैं, परंतु तात्विक दृष्टि से इनका भाव यह है कि श्री हरि विष्णु का वर्ण मेघ के समान श्यामल तो है ही, साथ ही जैसे मेघ सूर्य का प्रकाश पाकर अपने वर्ण में विविधता और मनोहरता उत्पन्न कर लेता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु भी समय और स्थिति के अनुसार विभिन्न रूप, वर्ण आदि धारण कर भूभार हरण आदि अनेक अनेक कार्य संपादित करते हैं और अपने मनोहर छवि के दर्शन कराकर अनेक भटके हुए जनों को सुमार्ग पर ले आते हैं। मेघ के समान वर्ण वाले होते हुए भी श्री हरि विष्णु के अंग अतीव शोभन है। यह कथन इसलिए कुछ अटपटा सा लगता है कि कहां तो काला कलुता मेघ और कहां अति कमनीय, अति मनोहर श्री हरि विष्णु के अंग। परंतु श्री हरि विष्णु के वैदिक स्वरूप ब्राह्मणोस्य मुखमासिद बाहु राजन्यः यजुर्वेद कहते हैं, इसके ऊपर दृष्टपात करने पर यह अतपतापन जो है दूर हो जाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि चारों श्री हरि विष्णु के अंगभूत है। भगवान विष्णु के वर्ण कैसे भी हो, परंतु यदि अंग बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय हो, तो वर्ण के दोष अछूते रहकर वे न केवल अपने महत्ता का धोतन कर पाने में समर्थ होते हैं, अपितु अपने गुणों से रंगों को भी उसी प्रकार उत्कृष्ट

प्रतिपादित कर देते हैं, जैसे सुयोग्य पुत्र पिता के मन को और अधिक बढ़ा देता है। इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु के रंग और अंग दोनों ही बहुत ही सौम्य हैं और दोनों ही बहुत ही सुंदर हैं। इसके साथ श्री हरि विष्णु का जो श्यामल वर्ण का अर्थ है, उसके पीछे एक वैज्ञानिक महत्व भी है। मुख्यतः रंग सात होते हैं और यदि सातों रंगों को एक साथ मिला दिया जाए तो वो केवल कृष्ण वर्ण यानी केवल काला रंग रह जाता है। आकाश स्वयं श्यामल है, परंतु सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि के रूप में प्रकाश का मूल भी है। उसी प्रकार श्री हरि विष्णु की स्थिति भी इसी प्रकार होते हैं। सभी वर्णों को स्वयं में विलीन करके वह श्यामल और सांवला रूप धारण करते हैं, परंतु प्रकाश ज्ञान आदि का मूल होने के कारण वह शोभन भी है। इसलिए श्लोक कहते हैं मेघवर्णम शुभांगम। फिर उसके बाद बताया गया है लक्ष्मीकांतम कमलनयनम योगी बिरध्यान गम्यम। इन तीनों का सामान्य अर्थ बस इतना है, लक्ष्मी के पति, कमल के समान नेत्र वाले और योगियों को ध्यान द्वारा भी बोध गम्यम करने वाले। परंतु तात्विक दृष्टि से इसका भाव यह है कि लक्ष्मी अर्थात धन संपदा, श्री शोभा आदि के स्वामी होते हुए भी श्री हरि विष्णु कमल के समान नेत्र वाले हैं। अर्थात यह सत्य है कि श्री हरि विष्णु लक्ष्मी के नित्य सहचर है, उन्हीं के साथ वे उनकी सेवा स्वीकार करते हुए क्षीर सागर अथवा वैकुंठ में निवास करते हैं और लक्ष्मी संपत सतत अनेक चरणों में उनके चरण में लपते रहते हैं। परंतु यह सब होते हुए भी जैसे कमल जल में रह कर के भी उससे पोषित होते हुए भी विलग रह जाते हैं, ठीक उसी प्रकार कमल के समान नेत्र वाले भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी के पति होते हुए भी उससे अलग से ही रहते हैं। और यही कारण है कि जिस पर वे अनुग्रह करते हैं, सर्वप्रथम उसकी लक्ष्मी को ही वे समाप्त कर देते हैं। भाव यह है कि श्री हरि विष्णु का अनुग्रह बहुत कुछ अभिमान रहित आदि गुणों पर निर्भर हुआ करता है। जब तक व्यक्ति लक्ष्मी का दास बना रहता है तब तक ये गुण उसमें नहीं आ पाते और फलस्वरूप श्री हरि विष्णु के अनुग्रह से वह वंचित रहता है। परंतु पूर्व पुण्यों के प्रभाव से जब वह श्री हरि विष्णु के अनुग्रह का भाजन पा लेता है तब श्री हरि विष्णु उनकी धन संपदा का विनाश कर उसके अनुग्रह मार्ग में बाधा दूर कर देते हैं और क्रमशः उसके मन में लक्ष्मी यानी धन संपदा के प्रति उनकी तृष्णा दूर हो जाती है और वह व्यक्ति धन आदि को चोर करके भगवान विष्णु के चरणों में लीन हो जाते हैं। कमल नयन विशेषण श्री हरि विष्णु के जल में रह करके भी जल से विलग रहने की भावना का भी द्योतक है। अतः लक्ष्मीकांत और कमल नयन ये श्री हरि विष्णु के अन्य विशेषताओं के विस्तृत विशेषण करता है। फिर उसके बाद बताया गया है योगी विरध्यानगम्यम। जहां सामान्यतः इस बात का परिचय कराता है कि उक्त अनेक अनेक विशेषणों से सम अलंकृत होकर के श्री हरि विष्णु के वास्तविक स्वरूप का अवबोधन योगियों को भी ध्यान में ही हो सकता है, वह यह विशेषण विशेष अर्थ में यह भी स्पष्ट कर देता है कि अपने नाम के अनुपूर तथा विश्व आधार गगन सदृश आदि विषयन युक्त होने पर श्री हरि विष्णु अणु अणु में व्याप्त है। वे वस्तुतः इतने सूक्ष्म हैं कि योगी ध्यान में ही उनका वह स्वरूप दर्शन कर पा लेता है। इस प्रकार सूक्ष्म रूप से सब में व्याप्त
और महान

0: रूप से सब पर निवास करने वाले श्री हरि विष्णु पृथुलता और सूक्ष्मता न केवल अप्रतिम और योगी ध्यानमगम्यम विशेषण को बनाने वाला है, अपितु श्री हरि विष्णु के महत्व को भी प्रतिपादित कर देता है। और अंत में कहा गया है, वंदे विष्णु भव भय हरम सर्वलोके कनाथम। यह भगवान श्री हरि विष्णु की वंदना की गई है। इस अंतिम चरण में भगवान श्री हरि विष्णु के विशेषण भव भय हर और सर्वलोक एकनाथम आए हैं, जिनके द्वारा श्री हरि विष्णु की सांसारिक भय दूर करने की अप्रतिम क्षमता और समस्त लोक का एकमात्र स्वामी इसका वर्णन करते हैं। वह अखिल विश्व का एकमात्र स्वामी प्रतिपादित होकर भव भय नाश को दूर कर देता है और अपने भक्तों के ऊपर अपना कृपा बरसाते हैं। और इस श्लोक में भगवान विष्णु के सूक्ष्म लक्ष्मीपति और निर्लिप्त विश्वाधार शून्य स्वरूप चराचर जगत के एकमात्र स्वामी की भगवान की वंदना की गई है। श्रोताओं, संक्षेप में इस सामान्य से श्लोक में भगवान श्री हरि विष्णु के जिन मनोहर एवं विभूतिमय स्वरूप के दर्शन कराए गए हैं, वह वेद पुराण उपनिषद आदि सम्मत होने के कारण दिव्य अथवा अनुपम तो है ही, साथ ही भव भय अत्यंत भयभीत सम जो है उसको नष्ट करके भक्तों के ऊपर कृपा करवाने वाला एक बहुत सुलभ श्लोक है, जिसका हम लोग समय समय पर उच्चारण करते हैं। चलिए, भगवान विष्णु की हम लोग ऐसे ही पूजन करते हुए इस अधिक पुरुषोत्तम मास में श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने की कोशिश करें। आज की कार्यक्रम को मैं यहीं विराम देता हूं। आपकी ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सत्यम शिवम सुंदरम, ओम शांति ही शांति ही शांति ओम, श्री सीताराम चंद्रार्पणमस्तु, साधुवाद, जय श्री हरि।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदू महासभा द्वारा सुधा वरिष्ठी।

मित्रः शंवरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोतागण, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यार्थ प्रकाश मास के शुभ अवसर पर यह कार्यक्रम आर्य सभा मॉरिशस की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आज का हमारा विषय है यज्ञ, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश के तीसरे समुलास में मानव कल्याण के लिए हमें बताया है। देव यज्ञ। यज्ञ को अग्निहोत्र, हवन, होम, अग्निकर्म आदि नाम से जाने जाते हैं। महर्षि जी बताते हैं कि यज्ञ कुंड लोहे, मिट्टी, पीतल, तांबा के होते हैं, किंतु सोने चांदी के हवन कुंड अत्यंत लाभकारी और गुणकारी होते हैं। यजकुंड के आकार। यजकुंड किसी धातु या मिट्टी का हो, ऊपर 12 या 16 अंगुल चौकर उतना ही गहरी और नीचे 3 या 4 अंगुल परिमाण से वेदी बनाए जाएं। हवन सामग्री में 4 प्रकार के पदार्थ होते हैं। पहला सुगंधी कारक पदार्थ, दूसरा

पुष्टिकारक पदार्थ, तीसरा रोगनाशक पदार्थ और चौथा मिष्टकारक पदार्थ। सुगंधि कारक पदार्थ से वायुमंडल में सुगंधि फैलती है और दुर्गंध का नाश होता है। वे पदार्थ हैं कस्तूरी, केशर, अगर, तगर, कपूर कचरी, नाग, नागर मुथा, देवदारू, खास, चंदन, धूप, गुगल, जायफल, इलायची, दालचीनी तथा सूखे हुए सुगंधित फूलों की पत्तियां। पुष्टिकारक पदार्थ, घी, पका हुआ अन्न, नमक रहित जिसमें नमक न हो, दूध, चावल, अश्वगंधा, सूखे मेवे जैसे काजू, बादाम, खारस, छुआरा, अंजीर, किशमिश, मुनक्का। रोग नाशक पदार्थ, तुलसी, गिलोय, मुलेठी, नागकेसर, लवंग, पीली सरसों। मिष्टकारक पदार्थ, गुड़, शहद, मोहनभोग, खीर, लड्डू। यज्ञ में डाला गया पदार्थ कभी भी नष्ट नहीं होता है, वह रूपांतरित होकर सूक्ष्म रूप लेकर वायुमंडल में फैल जाता है और प्राणी मात्र को पुष्ट करता है। इन पदार्थों के अतिरिक्त आम, बरगद, पीपल, पलाश, चंदन आदि के संविधाएं प्रयोग की जाती है। यज्ञ का अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा जड़ और चेतन दोनों प्रकार के देवों की पूजा होती है। जैसे यज्ञ से जल, वायु, पृथ्वी आदि जड़ देवता शुद्ध होते हैं। साथ ही साथ यज्ञ के बाद माता पिता, गुरु, बड़ों को नमस्ते प्रणाम किया जाता है, उसका सम्मान किया जाता है, तो वह चेतन देवों की पूजा कहलाती है। संगतिकरण, संगतिकरण से तात्पर्य मिलजुल कर संगठित हो जाना। जैसे यज्ञ में घी और हवन आदि सामग्री के सभी पदार्थ मिलकर संगठित हो जाते हैं और वायुमंडल को शुद्ध करते हैं, वैसे ही जब यज्ञ वेदी में पति पत्नी, पुत्र पुत्री, सब परिवार मिलकर यज्ञ करते हैं, आपस में एक दूसरे का सहयोग करने की भावना को बढ़ाते हैं, वह संगतिकरण कहलाता है। दान, यज्ञ के समय यजमान घी और सामग्री का दान करता है। जो देता है वह देवता होता है। यजमान घी और सामग्री की आहुति अग्नि देवता को देता है, तो वह देवता बन जाता है। यज्ञ में प्रयोग होने वाली लकड़ी को समिधा कहते हैं। यज्ञ में जो तीन समिधाएं को अग्नि देवता को दान करते हैं, वह आठ आठ अंगुल की लंबी तथा अंगुष्ठ के सदृश चौड़ी होनी चाहिए। जिस पात्र से हम घी डालते हैं या चढ़ाते हैं उसे चम्मच कहते हैं। मध्यमा, अनामिका और अंगूठा उंगलियों से चम्मच पकड़ना चाहिए। यज्ञ में स्वाहा के उच्चारण एवं स्वाहा बोलकर आहुति देना चाहिए। लकड़ी जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस वृक्षों और वनस्पतियों का आहार है, भोजन है। इस गैस को ग्रहण करके पेड़ हमें ऑक्सीजन, जीवन वायु प्रदान करते हैं। इनमें कोई संदेह नहीं कि लकड़ी जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस पैदा होता है, किंतु बिना लकड़ियों जलाए रोगनाशक औषधि का सूक्ष्मीकरण भी नहीं हो सकता। अग्नि में जलाने से ही पदार्थ सूक्ष्म होता है और शक्ति बढ़ती है। इसीलिए हवन सामग्री में अधिक से अधिक कस्तूरी, केशर, अगर, तगर, इलायची, सौंफ, जायफल, जावित्री, लौंग, पीली सरसों, तुलसी, गुगल पदार्थ डाले जाते हैं। मोटरसाइकिल या मोटर कार चलाने समय और भोजन पकाते समय कार्बन डाइऑक्साइड बनती है।

अहम खाना पकाना मोटर चलाना बंद कर दे? नहीं, इसका एक ही उपाय है, यज्ञ। मनुष्य के शरीर से नित्य दुर्गंध निकलता है जिससे जल वायु भी बिगड़ता है, अर्थात परमात्मा ने हमें शुद्ध वायु प्रदान किए हैं जिसको हम जीवन वायु या ऑक्सीजन कहते हैं।

0: इस पाप का प्रायश्चित सुगंधित पदार्थों की आहुति होम में डालकर जलवायु को शुद्ध कर अपना तथा अन्य प्राणियों का कल्याण करना है। यज्ञ करने से लाभ। यज्ञ करने से जल वायु भूमि अन्न की शुद्धि होती है। उत्तम स्वार्थ दीर्घायु तथा विशेष सुख शांति की प्राप्ति होती है। अनेक रोगों से निवृत्ति मिलती है, बचते हैं तथा मान सम्मान में वृद्धि होती है। प्रकृति का संतुलन बना रहता है, अर्थात ऋतुओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होती है। वातावरण में विद्यमान हानिकारक रोग नाशक कीटाणुओं का नाश होता है। यज्ञ के धुएं से वायुमंडल के ओजोन परत में बने छिद्र बंद हो जाते हैं। व्यक्ति की धर्म के प्रति रुचि प्रेम और विश्वास में वृद्धि होती है। यज्ञ करने से विषैली गैसों का नाश होता है। यज्ञ करने से इस लोक और परलोक दोनों जगह सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। जिस घर में दैनिक एवं प्रतिदिन हवन होता है वहां कोई बच्चा अल्प आयु में किसी संक्रामक रोग से मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम दे रहा हूं। आशा है कि यज्ञ करते समय इन विशेषताओं पर ध्यान देंगे। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
1: सत्यार्थ प्रकाश के संदर्भ में अभी आपने सुना यह विशेष कार्यक्रम।
2: KHz यह है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
3: घड़ी मिला लीजिए, सुबह के ठीक 6:31 हुए हैं।

शुक्रवार 5 जून 2026 के प्रातकालीन समाचार बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाते हैं। सबसे पहले आज की सुर्खियां। एसएसओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बड़ी ड्रग तस्करी का पर्दाफाश हुआ। 94.5 मिलियन रुपए मूल्य की गांजा बरामद। 2 यात्रियों सहित 3 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर की कार्रवाई। आज विश्व पर्यावरण दिवस। पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास का केंद्र बना। प्रकृति को बचाने के लिए वैश्विक स्तर पर जागरूकता और सामूहिक प्रयासों पर जोर। वृद्धों और कमजोर वर्गों से करोड़ों रुपए की कथित ठगी मामले में नया खुलासा। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में एक और संदिग्ध गिरफ्तार। आज अदालत में उसकी पेशी होगी। 19 जून को सरकार वित्त वर्ष 2026-2027 के बजट की प्रमुख रूपरेखा पेश करेगी। पूरे मॉरिशस की नज़र इस महत्वपूर्ण बजट पर टिकी है, जिससे सामाजिक राहत और आर्थिक दिशा को लेकर बड़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। साइबर हमलों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल लेन देन में बढ़ोतरी के बीच मॉरिशस ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत किया है। इलेक्ट्रॉनिक लेन देन नियम में संशोधन पर डिजिटल सेवाओं में सुरक्षा और भरोसे को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मॉरिशस में वर्ष 2026 की गन्ना कटाई का मौसम अगले कुछ दिनों में शुरू होने जा रहा है। शुष्क मौसम के बावजूद गन्ने की वृद्धि संतोषजनक रही है और इस बार की फसल दिसंबर के मध्य तक जारी रहने की उम्मीद है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिबानी सशस्त्र संगठन हिजबुल्ला ने अमरीका समर्थित इसराइल लिबानन युद्ध विराम समझौते की शर्तों को सख्ती से खारिज कर दिया है। संगठन का कहना है कि ये वार्ता लिबानन के लिए अपमानजनक और निष्फल रही है तथा इसे जनता के बड़े वर्ग का समर्थन प्राप्त नहीं। नमस्कार, इन सुर्खियों को अब हम विस्तार देते हैं। एसएसआर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल अधिकारियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 62.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया। ये मादक पदार्थ लंदन गैटविक से एयर मॉरिशस की उड़ान से पहुंची 2 यात्रियों के पास से ये बरामद किया गया। जब्त की गई इस ड्रग की

0: बाजार कीमत लगभग 94.5 मिलियन रुपए आंकी गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों यात्रियों की पहचान रिविया दी क्रियोल और बुआदिजामोगैते के रहने वाले चर्मदेव चतुरी और रुमर्शन पदारत के नाम से की गई है। आत्सू अधिकारियों ने प्रोफाइलिंग अभियान के तहत उनके मॉरिशस पहुंचने पर उन्हें रोका। उनके कब्जे से मिली 4 सूटकेसों की स्कैनिंग के दौरान संदिग्ध संकेत मिले। इसके बाद दोनों यात्रियों को एमओआरए की कस्टम एंटी नार्कोटिक विभाग के कार्यालय ले जाया गया, जहां विस्तृत तलाशी में चारों सूटकेसों में छिपाया गया गांजा बरामद हुआ। इसके बाद आत्सू और ट्रैफिक ब्रांच ने संयुक्त अभियान चलाया, जिसके तहत मौदालबेया निवासी मनीष कावलीसौ को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरी कार्रवाई को पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सोजबाली के नेतृत्व में अंजाम दी गई। 19 जून को सरकार वित्त वर्ष 2026-2027 के बजट की प्रमुख रूपरेखा प्रस्तुत करेगी। ये एक महत्वपूर्ण अवसर है जिस पर सभी मॉरिशनों की नजरें टिकी हुई हैं। जनता ऐसे बजट की उम्मीद कर रही हैं जो सामाजिक कल्याण पर केंद्रित हो और लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करे। ये बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब आर्थिक परिस्थितियां अभी भी अनिश्चित बनी हुई हैं। इस बजटीय अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री देश की प्राथमिकताओं के बारे में संकेत देंगे और आने वाले वर्ष के लिए आर्थिक दिशा स्पष्ट करेंगे। आखिर इस बजट से क्या उम्मीद की जानी चाहिए, इस विषय पर राजमीना सीतामणि और आशी बेचू की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
1: Nous prévisons un amélioration dans le pays du système de compétitivité et surtout la productivité. Malgré le fait qu'il nous prévisons, ça va élément, nous prévisons innovation entre autres, sa contexte d'incertitude mondiale là et ce ban impact sous-jacent le pouvoir d'achat. Vous pensez d'extrêmement important. Pour moi, les choix difficiles, et c'est de trouver ça l'équilibre. La clé, c'est de se concentrer sur l'essentiel, mon pensée, surtout par rapport à un budget d'un État souverain. Parce que vous voyez, dès que l'accent est mis sur l'austérité, l'assainissement et élimination du gaspillage, libération de ces ressources là, plus d'efficience, pour permettre des gaz, c'est une marge de manœuvre budgétaire devant qui est nécessaire à nous un investissement qui est indispensable.
0: अभी आप सुन रहे थे अर्थशास्त्री अमित बकियता को। खबरों को हम आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हम पर्यावरण के बारे में। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये दिवस पृथ्वी को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का संदेश देता है। पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान ने हमारी धरती की रक्षा पर बल देते हुए युवाओं से पर्यावरण संरक्षण के लिए सांस्कृतिक आंदोलन का आह्वान किया। उन्होंने स्वच्छ और हरित पर्यावरण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाने तथा लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें सुनते हैं।
2: गवर्नमेंट पे सेवी बुकू लॉज ऑफ पब्लिक प्रोग्रामा साल्टे कि जिमोनिन जेते डबोला रोड डंड्रे डटेरे वाग एक लोला प्लाज लाने अपरे लाने नेटवाये पे कुट प्लीसेर सा वे डियर कि डोला मोइंस लॉजन पुर फेर लेस ऑटर डेवलपमेंट et qu'embellit nos pays. Nous n'avons pas dit nous l'étant nettoyer et que nettoyer parce qu'il y a beaucoup de Mauriciens pour continuer à salir nos pays, pour continuer à cultiver mauvaises habitudes et paraître fier de ça. À l'occasion Journée mondiale de l'environnement, moi invite Ban Zenes, Ban 16 à 24 ans, à relever un défi, à nous faire une révolution culturelle pour sens comportement de nos populations, à nous arrêter de salir, à nous fleurir, à nous arrêter de polluer nous l'air avec pétrole, à nous servir autant que possible l'énergie solaire, à nous protéger nous la rivière que nous lagons, pour que demain, nous bons enfants continuent à vivre comment nous finissons vivre de cette planète-là. Bonne fête de l'environnement.
0: निर्माण सामग्री के अवशेष

0: कचरे के बैग, घरेलू कचरा और कभी कभी पशुओं के अवशेष मॉरिशस में अवैध कचरा डंपिंग के मामले लगातार चिंता का कारण बने हुए हैं। पर्यावरण पुलिस इस समय इस समस्या को लेकर सतर्क है। जनवरी से मई 2026 के बीच कुल 575 मामले दर्ज किए गए हैं। इस प्रकार के उल्लंघनों के लिए 30 चालान जारी किए गए हैं, जिनमें अधिकतम 25,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अलावा सार्वजनिक स्थानों पर छोटे कचरे फेंकने के 532 मामलों में भी चालान जारी किए गए हैं। दक्षिणी क्षेत्र में हाल ही में एक नदी में पशुओं के अवशेष फेंके जाने की घटना सामने आई। हालांकि कचरे को हटा दिया गया, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति का पता नहीं लगाया जा सका। पर्यावरण पुलिस के इंस्पेक्टर विश्वनाथन अमासी से बात की आद्रियन वाले ने। Viveran Asta Gomincitaman qui est.
1: Janvier à mai, nous venons de recevoir plus que 575 complaintes.
2: जनवरी से मई 2026 के बीच हमें पर्यावरण और कूड़े से जुड़ी 575 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। इलीगल डंपिंग के लिए 30 कॉन्ट्रावेंशन जारी किए गए हैं। इसके लिए जुर्माना 25,000 रुपए तक जा सकता है। 532 से ज्यादा कॉन्ट्रावेंशन इलीगल लिटरिंग के लिए जारी किए गए हैं। दक्षिण में हाल में एक शिकायत आई, पशुओं के अवशेषों को नदी में छोड़ दिया गया था। पर्यावरण पुलिस ने जल्द हस्तक्षेप किया। ग्राम परिषद ने वहां से कूड़ा उठवाया, पर पता नहीं चल सका कि किसकी हरकत। जनता से मांग की जा रही है कि पर्यावरण की रक्षा करें, सफाई की सब सुविधाएं मौजूद हैं, बड़ी मात्रा में कचरे को हटाने की भी सहूलियत मौजूद है। हम जनता के स्वास्थ्य और पर्यावरण की हिफाजत के लिए तत्पर
1: है।
0: वृद्धों, विधवाओं और अन्य कमजोर वर्गों को निशाना बनाकर की गई 5 मिलियन रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच में नया विकास सामने आया है। फिनिक्स निवासी रमेश हेमराज को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार को गिरफ्तार किए गए कथित मास्टरमाइंड हेमराज मनोहर के बैंक खातों की जांच में रमेश हेमराज द्वारा किए गए 3.4 मिलियन रुपए से अधिक के संदिग्ध लेनदेन का खुलासा हुआ है। रमेश हेमराज पर मनी लॉन्ड्रिंग का अस्थायी आरोप गया है और उन्हें आज सुबह अदालत में पेश किया जाएगा। साइबर हमलों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल लेनदेन में लगातार वृद्धि को देखते हुए मॉरिशस ने अपने कानूनी ढांचे को और सुदृढ़ किया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एक्ट में संशोधन किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को बेहतर ढंग से विनियमित किया जा सके और डिजिटल सेवाओं में लोगों का विश्वास मजबूत हो। ये सुधार देश की डिजिटल परिवर्तन रणनीति का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में मॉरिशस को अफ्रीका में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। मंत्री अविनाश राम तोहल से बात की जेनी यालापा ने। विवरण आस्था गोबिन।
2: कस्टम विभाग की ओर से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से दस्तावेजों को भेजने और उनकी जांच करना संभव होगा। वे दस्तावेज जो विदेश से भेजी जा रही है, अब से कस्टम विभाग की ओर से क्लियरिंग प्रक्रिया कम समय में हो जाएगी। साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के लिए जो इंतजार करना पड़ता था, उससे बचा जा सकेगा। इससे पैसों की बचत भी होगी। अफ्रीका में ये इस प्रकार की पहली सेवा है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एक्ट 2002 से मौजूद है। 25 साल बाद इसमें सुधार लाया गया है। इसकी बड़ी जरूरत थी। अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ज्यादा आसान होगा।
0: मॉरिशस में साइबर सुरक्षा ने एक नया चरण पार किया है। साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनेशन रेगुलेशन 2026 कल से लागू हो गए हैं। ये नया कानूनी ढांचा देश की महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचनाओं को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। इनमें वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक प्रशासन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी कि ICT, ऊर्जा, जल आपूर्ति और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। इन नियमों के लागू होने के साथ ही एलाइटिस द्वारा क्राउडस्ट्राइक के सहयोग से एक साइबर सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। क्राउडस्ट्राइक एक विश्व प्रसिद्ध अमरीकी साइबर सुरक्षा कंपनी है जो कंप्यूटर सिस्टम को साइबर हमलों से बचाने के लिए समाधान प्रदान करती है और कई सरकारों व संगठनों के साथ कार्य करती है। एलआईटीस

0: के सीईओ वैसों बुगेली से बात की, जिन्हें यलापा ने विवरण अदिति अवतर।
1: Ça vise à protéger tout ce qu'on appelle les infrastructures critiques à Maurice.
2: LRT's के सीईओ वैसों बुगेली कहते हैं, इस नए कानून का मकसद है मॉरिशस में सभी महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों की सुरक्षा का ध्यान रखना। उदाहरण के तौर पर टेलीकम्युनिकेशंस एक ऐसा महत्वपूर्ण सेक्टर है जिसके अंतर्गत गंभीर कमियों के होने से एक पूरी अर्थव्यवस्था ठप पड़ सकती है, एक छोटे साइबर हमले से सब बाधित हो सकता है। इस कानून से ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की बेहतर सुरक्षा होगी। ये एक बहुत अच्छी पहल है। आज सभी संस्थाओं को एक ठोस साइबर सुरक्षा प्रणाली स्थापित करना अनिवार्य होगा ताकि उनके साथ साथ समस्त मॉरिशन जनता भी सुरक्षित रह सके। अभी हम देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर तेल के बढ़ते दामों के साथ किस प्रकार सभी देश प्रभावित हो रहे हैं, चाहे वो अप्रत्यक्ष रूप से ही क्यों न हो। अब ऐसे में ये विचार करने योग्य है कि अगर मॉरिशस का कोई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा प्रभावित हो तो पूरा देश घुटनों पर आ सकता है।
0: मॉरिशस टेलीकॉम के सीईओ विमल गंगादीन के अनुसार साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में मॉरिशस अफ्रीका के सबसे प्रदर्शनकारी देशों में शामिल हैं। हालांकि उनका मानना है कि इस स्तर की उत्कृष्टता को बनाए रखने और लगातार बदलती साइबर खतरों का सामना करने के लिए स्थानीय कौशल को और मजबूत करना तथा प्रशिक्षण में निवेश करना अत्यंत आवश्यक है। सुनते हैं।
3: Comment se te trouver na beaucoup de content, images, photos, vidéos qui commencent generated by AI.
2: मॉरिशस टेलीकॉम के सीईओ विमल गंगादीन कहते हैं, आजकल देखा जाता है कि बहुत कंटेंट्स, तस्वीरें, वीडियोस आदि एआई जनरेटेड होते हैं और साथ ही सच और बनावटी में अंतर कर पाना उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। दूसरी तरफ ऐसी प्रवृत्तियों से हैकर्स ज्यादा आसानी से विभिन्न सिस्टम्स में प्रवेश कर लेते हैं। इस तरह अब ऐसे नए ढांचे और सशक्त सिस्टम स्थापित करना और भी जरूरी हो रहा है जिससे हमें बेहतर सुरक्षा मिले। साथ ही हमें जरूरी प्रतिभाओं और साधनों से लैस होना होगा ताकि हम खुद को, अपनी संस्थाओं को और अपने देश को साइबर हमलों के खिलाफ सुरक्षित रख सकें।
0: मॉरिशस में वर्ष 2026 की गन्ना कटाई का मौसम अगले कुछ दिनों में शुरू होने जा रहा है। चीनी मिलों का संचालन 22 जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। ये अभियान ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब पिछला मौसम सामान्य से अधिक शुष्क रहा, लेकिन इसके बावजूद गन्ने की वृद्धि कुल मिलाकर संतोषजनक रही। मॉरिशस कृषि सदन के एक बयान के अनुसार गन्ने की कटनी का कार्य दिसंबर के मध्य तक जारी रहने की संभावना है। साथ ही सर्दियों के आगमन के साथ गन्ने में चीनी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है जिससे उत्पादन को लाभ मिलेगा। आशी बेचू, आस्था गोमिस चमन।
4: देश में वर्ष 2026 की गन्ना कटाई का मौसम 22 जून से शुरू होगा। सबसे पहले आल्टियो की यूनियन फ्लक और तिगा की उत्तरी क्षेत्र स्थित चीनी मिलों में पेराई आरंभ होगी, जबकि ओमनिकेन की दक्षिणी मिल 14 जुलाई से संचालन शुरू करेगी। गन्ना कटाई का ये मौसम दिसंबर के मध्य तक जारी रहने की उम्मीद है। अक्टूबर 2025 से मई 2026 के बीच गन्ने की वृद्धि सामान्य से अधिक शुष्क मौसम में हुई। इस अवधि में सामान्य वर्षा का केवल 63% ही दर्ज किया गया। तापमान औसत से थोड़ा अधिक रहा जबकि धूप का स्तर सामान्य के करीब बना रहा। इसके बावजूद मई के अंत तक गन्ने की वृद्धि संतोषजनक रही। हालांकि गन्ने में चीनी बनने की प्रक्रिया अपेक्षाकृत धीमी रही। विशेषज्ञों का मानना है कि सर्दियों के मौसम के साथ गन्ने की वृद्धि की रफ्तार कम होगी जिससे उसमें शक्कर की मात्रा बढ़ने में मदद मिलेगी। उधर 29 मई तक 6149 छोटे गन्ना खेतिहरों ने अपना पंजीकरण पूरा कर लिया था जो 7920 हेक्टेयर क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहीं बड़े उत्पादकों ने 24415 हेक्टेयर क्षेत्र घोषित किया है। पिछले वर्ष इसी अवधि में छोटे उत्पादकों का पंजीकरण क्षेत्र 8569 हेक्टेयर और बड़े उत्पादकों का 24746 हेक्टेयर था। गन्ना उत्पादकों के लिए पंजीकरण प्रक्रिया अभी भी जारी है। हालांकि 2 जून से देर से पंजीकरण कराने वालों पर अतिरिक्त शुल्क लागू कर दिया गया है।
0: अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्ला ने अमरीका समर्थित इसराइल लेबनान युद्ध विराम समझौते की शर्तों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। एक कड़े बयान में संगठन के प्रमुख नाइम कासिम ने कहा कि ये वार्ता लेबनान के लिए निष्फल और अपमानजनक साबित हुई है। उन्होंने दावा किया है कि लेबनान की जनता के बड़े वर्ग ने भी इस प्रस्ताव को पूरी तरह खारिज कर दिया है।

0: प्रक्रिया ऐसे समय आई है जब इसराइल और लेबानन ने अपने नाजुक युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। इसके तहत लेबानन के भीतर कुछ पायलट सुरक्षा क्षेत्र स्थापित किए जाएंगे जहां हिजबुल्ला के सदस्यों की गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। अमरीकी विदेश विभाग द्वारा बुधवार को जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि ये समझौता हिजबुल्ला की ओर से पूरी तरह से गोलीबारी बंद किए जाने की शर्त पर आधारित है। बताया मौसम के हाल की ओर। आम हालत, हमारे इलाके पर हल्की हवा का बहाव है, अगले 24 घंटों के लिए अनुमान है। सुबह के समय और दिन के दौरान आसमान साफ रहेगा तथा धूप खिली रहेगी। दोपहर बाद विशेषकर उत्तर पश्चिम, उत्तर और सेंट्रल प्लेटों वाले इलाकों पर बादल विकसित होंगे और रेकर वर्षा होगी, कभी कभार बारिश तेज भी हो सकती है। रात के दौरान ऊंचाइयों पर बादल घिराएंगे और रेकर वर्षा होती रहेगी। अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा, ऊंचाइयों पर 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच और तटीय इलाकों पर अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच। न्यूनतम तापमान सेंट्रल प्लेटो पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और साहिली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच। सुबह के समय हवा हल्की बहेगी तथा दिन के दौरान हवा दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समुद्र प्रवाह रेखा के पास सामान्य रहेगा और 2 मीटर की लहरें उठेंगी। आज सूर्योदय सुबह 6:49 पर और सूर्यास्त शाम 5:37 पर। इसके साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हो चला। इसकी तैयारी में पूरी समाचार डेस्क का और कंसोल पर हमारे सहयोगी कादर का सहयोग मिला है, जिन्हें हम धन्यवाद देते हैं। सुनने वालों को भी आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। साथ रहिए, बढ़ते हैं हम शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: शोक समाचार सुनिए। लिस्कालिये रोड प्लेन मायो में 78 साल की 78 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती चित्ररेखा कालीचरण पैदाश्रम रामलगन और जिन्हें मामा बाबीता के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12:30 बजे उनके घर प्लेनमानियो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन चिड़ियर हॉफ बॉस नून रॉयरोड गोश्तिया में 91 साल की 91 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती रोहिणी ब्रिजमोहन पैदाश्रम सेवम्बा और जिन्हें रोशनी सेवम्बा के नाम से भी लोग जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज उनके बेटे भुवन ब्रिजमोहन के घर गोश्ते से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दिन के 12:30 बजे गांव गुप्त की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन चिड़ियर हॉफ बॉस नून तमिल टेम्पल रोड शिमेग्रोनिये में 69 ईयर्स ओल्ड के श्री कृष्णा स्वामी कर्पेन जिन्हें रामेन के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 2 बजे उनके भाई शानमुगा कर्पेन के घर श्रीमेघोनी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौगोपाल शामुनी की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 2 PM रॉय रोड प्लेन दीपापाई में 76 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती भीष्मावती दुखित पैदाश्रम गुदोई और जिन्हें प्रेमिला के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज सुबह 11:30 बजे उनके बेटे देव दुखित के घर प्रेम दीपापाई से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पीतों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टिडियर हॉफ फॉर 11 AM जगदम्बी रोड गुडलैंड्स में 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती राजकुमारी पीरू पैदाश्रम ओकीम और जिन्हें उमा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर गुडलैंड से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बेलमो गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाएगी। क्रिमिशन टिडियर 1 PM रॉय रोड ग्रैंड खुदरत में 72 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती अंजलि रुकमीन पैदाश्रम दामरिया और जिन्हें रजनी के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 1:30 बजे उनके बेटे उदय रुकमीन के घर ग्रैंड खुदरत से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मिजिन गांव दिमास की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 1 PM बेलेक्स हीथ कैंट यूके में 74 साल की 74 ईयर्स ओल्ड

के श्री जयराज जीबन, श्री जयराज जीबन जिन्हें अनिल के नाम से लोग ज्यादा जानते थे और जो पहले तागोर रोड फोंजिसा के रहने वाले थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी यूके समय अनुसार शाम 3 बजे उनकी पत्नी अनुराधा जीबन के घर बेलेक्स हीथ कैंट यूके से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थीम्स व्यू क्रिमाटोरियम की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन इन यूके एट 3 PM यूके टाइम। रामनारायण रोड कुतेज में 75 साल की 75 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती बसंती रामचंद पैदाश राम चमन और जिन्हें सुनीति के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई हैं, उनकी अर्थी आज 11 बजे उनके घर कुतेज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए वहीं शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 11 AM। मोसेल एवेन्यू पेरुश मोसेलमा ले माए माइबो में 85 साल की 85 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सावित्री देवी पैदाशी नाम दुखी और जिन्हें साबित के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके बेटे सुनील देवी के घर मेबक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोंबो मेबक की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 11 AM। ला रू लोरिलियर वेदर में पोस्ट ऑफिस के सामने 87 साल के 87 ईयर्स ओल्ड के श्रीमती भगवत प्रसाद झुमक जिन्हें दयानंद के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके घर वेदर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए दागोचेक शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 11 AM। रू डिक्रेओल मेबर्ग में 55 साल की 75 ईयर्स ओल्ड के श्री बिसुंदत रामसन जिन्हें कुलो के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके मामू उनकी शांति रामसन के घर मेबक से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पैनवानियों की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टूडिया 11 AM। सर हिलेरी ब्लड एवेन्यू कैट्रबोन में 103 साल की 103 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती सन्मत दसोई पैदाशम गोकुल जिन्हें सुगिन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी कल दिन के साढ़े बारह बजे उनके घर कैट्रबोन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए तोमामेल की शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 12:30 PM। मोसेलमा सेंट हेनरी सेंट हुबेर में 27 साल के 27 ईयर्स ओल्ड के श्री कृष्णा चकोरी जिन्हें पिक्सन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज सुबह 10 बजे उनकी दादी आज सुबह 10 बजे उनकी नानी सुकन दमयंती के घर मोसेलमा सेंट हुबेर से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए सेंचिलियक शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टुडे एट 10 AM। स्वराज भवन लेन लालमाटी में 89 साल की 89 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती कलावती मंगर पैदाशी नाम लखनऊ जिन्हें विद्यापति के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज सुबह 11 बजे उनके बेटे मनीष मंगर के घर लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मेजिन कौनिवास की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 11 AM। बाउंड्री रोड रोजिल में 77 साल की 77 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती धनवंती देवी रामचंद पैदाश नाम पैम और जिन्हें रेखा के नाम से लोग ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनके घर रोजिल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांधी पालमा की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 1 PM। जिल्फा लेन सेंट जूलियन दुतमो में 109 साल की 109 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दनमतिया सुको पैदाश नाम रतन और जिन्हें मुना के नाम से भी ज्यादा जानते थे कि मृत्यु हो गई है, उनकी अर्थी आज दिन के 1 बजे उनकी बेटी अनीता सुको के घर सेंशुनिया दुटमो से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कौतुगैल के शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट 1 PM। कल्पुलेन मैडम लुलू रोजबेल में
52 साल के 52 ईयर्स ओल्ड के श्री धनंजय लाला, श्री धनंजय लाला जिन्हें गंग के नाम से लोग ज्यादा जानते थे, की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 11 बजे उनके घर रॉसबेल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए मागजानी रॉसबेल की शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 11 AM। मोसेलमा प्रुडम रिविया दिजांगी में 83 साल की

0: तो यजोल की श्रीमती जयमूंती लखन, श्रीमती जयमूंती लखन पैदाश्रम लक्ष्मण और जिन्हें चामुन के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनके अर्थी आज सुबह 10 बजे उनके बेटे सुरेश लखन के घर कृविया दिजाओगी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए गांव वॉक शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टूडिया 10 AM ब्लैकबर्न रोड कोंगुमा में, ब्लैकबर्न रोड कोंगुमा में 50 साल के 50 ईयर्स ओल्ड के श्री देव आनंद राम रिचिया जिन्हें लोलो के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज दिन के 12 बजे उनके भाई मंगल राम रिचिया के घर कोंगुमा से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए त्यामिनी स्थियोले के शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमिशन टूडे 8 नून शोक में डूबे इन सभी परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: स्पोर्ट्स न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आ गया लिवरपूल में आंदी इराओला, आ गया डील डॉन। लिवरपूल का नया हेड बॉस का नाम है आंदोनी इराओला। आंदोनी आंटफील्ड में आ गया। साइन करने के बाद इराओला ने कहा कि लिवरपूल जैसे क्लब के लिए साइन करना बहुत बड़ा सम्मान और चैलेंज चुनौती है, पर वो इसके लिए तैयार हैं। लिवरपूल हैं इसीलिए यहाँ आने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ा, ऐसा उसने कहा। मुझे पता है मैं कहाँ आया हूँ और मुझसे क्या उम्मीदें हैं, पर मैं तैयार हूँ। याद दिला दें, आंदोनी इराओला बोर्नमुथ को यूरोपा लीग के लिए क्वालिफाई करा चुका है और अब लिवरपूल के साथ चैंपियंस लीग में होगा। आनफील्ड रोड में आंदोनी इराओला का स्वागत है। ट्रांसफर न्यूज, आर्सेनल के टारगेट एली जूनियर क्रूपी के लिए अब पेरिस सेंट जर्मेन रेस में नहीं है। मैनचेस्टर यूनाइटेड की शॉपिंग लिस्ट में एवर्टन के स्ट्राइकर विमान एंजाई का नाम जुड़ गया है। लिवरपूल और आरबी लाइप्ज़िग के बीच बातचीत शुरू हो गई है यान जियोमांडे के लिए, पर खबर है लाइप्ज़िग उसे बेचना नहीं चाहता और पेरिस सेंट जर्मेन भी उसे साइन करना चाहता है। फ्रेंडली मैचों में कल वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट टीम फ्रांस की हार हुई। आइवोरी कोस्ट ने फ्रांस को 2-1 से हराया। डुए और जालू आइवोरी कोस्ट के गोल स्कोरर रहे। फ्रांस का गोल चर्की ने स्कोर किया। स्पेन और इराक के बीच मैच ड्रॉ 1-1, स्पेन के लिए फेरान टोरेस का गोल। स्वीडन 2-2 ग्रीस, स्वीडन के लिए ग्योकरेस और नेल्सन का 1-1 गोल। ग्रीस के लिए सिमिकास और मासुकास का 1-1 गोल। ईरान 2-0 माली, स्लोवेनिया 1-1 साइप्रस, नॉर्दर्न आयरलैंड 1-0 गीनिया, लेसोथो 1-1 केन्या, साउथ कोरिया 1-0 एल साल्वाडोर, पनामा 4-2 डोमिनिकन रिपब्लिक, अंडोरा 2-0 लिएश्टेनस्टाइन, और चेक रिपब्लिक 3-1 ग्वाटेमाला। स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी ग्रिल एम्बोलो को USA जाने का वीजा मिल गया है। उसे पहले रोका गया था, पर अब वो अपनी टीम के साथ जुड़ सकता है US में। मैनचेस्टर सिटी गुस्से में है और रियल मैड्रिड के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट एनरिके रिकेलमे पर केस करेगा। रिकेलमे ने कहा था कि अगर वो प्रेसिडेंट बन गया तो सिटी से अर्लिंग आलोन को साइन करेगा। उसने आलोन के नाम के साथ एक रियल मैड्रिड का शर्ट भी दिखाया था। सिटी लीगल एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। टेनिस, फ्रेंच ओपन में माया च्वालिन्स्का फाइनल के लिए क्वालिफाई हुई। क्वालिफायर थी इस टूर्नामेंट में, अब ड्रीम रन फाइनल तक। च्वालिन्स्का ने श्नाइडर को हराया। फाइनल में उसका सामना आंद्रीवा से होगा। आंद्रीवा फाइनल में पहुंची कोस्टिक को हराकर। आज लड़कों का सेमीफाइनल मेंसिच वर्सेस वेरेव, अर्नाल्डी खेलेगा कोबोली के खिलाफ। क्रिकेट, इंडिया की T20 टीम कल अनाउंस की जाएगी। खबर है श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया जाएगा सूर्य कुमार यादव के स्थान पर। स्काई को शायद जगह नहीं मिलेगी और युवा सेंसेशन वैभव सूर्यवंशी को टीम में रखा जाएगा मेडन कॉल अप। मॉरिशस में मॉरिशस की लेडी क्लब एम ने कल जिबूती को 2-1 से हराया। अब रिटर्न लेग की तैयारी है। और साइकिलिंग में टू डेली सिक्लिस्ट के तीसरे चरण में कल फ्रांस के अंतवान यूबी की जीत हुई और येलो जर्सी अब यूक्रेन के अनातोली बुद्याक के साथ है। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।

0: चलती चलती प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें, आ गया आंदोनी इराओला, लिवरपूल में आ गया और फ्रेंडली मैचों में कल फ्रांस की हार हुई, आइवरी कोस्ट ने उसे 2-1 से हराया। फिर मिलेंगे RM2 पर 7:40 पर, और भूलिएगा नहीं वर्ल्ड कप स्पेशल RM2 पर, यह होगा 8:30। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
2: सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस शुक्रवार 5 जून शाम 3:30 विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है प्लेनमाया आर्य समाज में, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा रचित महान वैदिक ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे। शुक्रवार 5 जून को शाम 6:30 लावोचा के झरनाथ शिवालय में मासिक काली पूजा का आयोजन किया जा रहा है।

0: नमस्कार, गुड मॉर्निंग। खरी मिलाते चलिए, इस समय 7:11 हो चुके हैं। इस शुक्रवार 5 जून 2024 को 7 नवारी है पूजा। सुबह का नजराना कार्यक्रम में आप सभी का दिल से स्वागत करती है। भाई, कहा जाता है छोटी सी जिंदगी है, हर बात पर खुश रहिए। कल किसने देखा है, इसीलिए अपने आज में खुश रहिए, अपने आज को संवारिए सकारात्मक सोच के साथ। आइए इसे शुभ विचार के साथ कार्यक्रम का आरंभ करते हैं चिंतन से। आइए इसे सुनते हैं श्रीमती डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में।
1: मूल्य, सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: बाहरी दिखावे से हम संसार को कुछ समय के लिए भ्रमित तो कर सकते हैं, परंतु जब समय हमें कसौटी पर परखता है, तब हमारी वास्तविकता संसार के समक्ष आ ही जाती है। याद रहे कि दिखावा हल्के सिक्के की तरह होता है, यह अधिक समय तक नहीं चलता है।

भाई कितने कितने मजेदार गीत जो हैं हमारी इंडियन सिनेमा ने हमें दिए हैं। कहा जाता है जो लब नहीं कह पाते ये गीत कहे जाते हैं, यही तो हम कहते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। वैसे इस संसार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिखावे तो बहुत करते हैं पर अंदर से खोखले हैं, इसीलिए जो है उसी को आप दुनिया को दिखाओ, जो नहीं है उसे दिखावे कहते हैं। अरे भाई 2 दिन की जिंदगी है, लोगों को दुख देना बंद तो कीजिए। अगर हो सके तो अपने मन में प्यार लाएं, प्यार बांटिए, लोगों को दुख के अलावा एक और चीज है उसे खुशी दीजिए। क्योंकि कर्म का ही फर्क है, जो आप करते हो वही आपको मिलता है। अच्छा करेंगे तभी तो अच्छा मिलेगा। रास्ते पर हैं तो आपको कहेंगे सावधानी बरतिए, और घर पर अगर कुछ लोग साथ निभा रही हैं तो आपका स्वागत है। आप सुन रही हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम, कुछ पुराने गीतों के बाहर लेकर आई हैं पूजा, तो चलिए सुनते हैं कुछ ऐसे धुन जो कानों में नहीं दिल तक

वही आवारा नहीं दीवाना बनिए, क्योंकि दीवानेपन से ही लोगों के दिल तक हम पहुंच पाते हैं। आवारा नहीं, बहुत सारे लोग जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैला जी हैं गौन खुबिया सुदेश से, वही भगवान से ये प्रार्थना करेंगी दादी कि आप ठीक हो जाएं, और सुबह सुबह आप हमारे साथ जुड़ चुके हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं जिंदगी की हर एक मुश्किल एक पड़ाव है, इसको पार करना भगवान शक्ति देता है, इसलिए भगवान आपको शक्ति दे, बस यही आशा है। सादी री है नीता खेदनी जी, गायत्री जी है नुवेल फ्रांस से, लीला जी है वॉशेरी से, अनीता जी है रोजबिल से। कहते हैं कि इन गीतों को सुन सुन के यादों की उस दौर में चले जाते हैं जहाँ कुछ बिछड़े हुए लोग और कभी कभी कुछ यादें छुपे होते हैं। तभी तो कहते हैं ये जिंदगी एक राह है, इस राह पर चलते चलते, इस सफर पर चलते चलते कुछ लोग बिछड़ जाते हैं और कुछ लोग मिल जाते हैं, पर ये जिंदगी जो है अपने अच्छे कर्मों के साथ आप उसे संवारिए, ताकि अंत में यही तो रह जाता है। यादों में बसर करते हैं, ये जिंदगी बस एक सफर है, इस सफर को एंजॉय कीजिए।

राहों पे रहने वाला ये मुसाफिर गेरूलाल सफर करते करते एक बार दूर दराज के पहाड़ों में जाकर रुक गया। एक छोटा सा गांव था और उस गांव में टूटा फूटा सा एक घर।

भाई राहों पे रहते हैं हम, तो बस यादों में ही बसर करते हैं। और बहुत सारे लोग जो हैं हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इतने प्यार से और इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हैं कि क्या बोले। ऐसे ही गुनगुनाते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। रास्ते पर हैं, काम पर जा रहे हैं तो आपको कहेंगे भूख खास, वैसे आप लोग हैं तभी तो हम हैं। तो क्यों ना ये गीत आप सभी के नाम है। और अभी सादी रही हैं मुंजे ख्वायाओ से मारा सुमारो जी हैं, इतनी प्यारे प्यारे मैसेज भेजती रहती हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मारा जी। तो क्यों ना इस ठंडी मौसम में पप्पी लहरी का एक सुंदर सा गीत आप सभी के नाम। यार बिना चैन कहाँ रे, वैसे हम मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग के बिना रेडियो मॉरिशस नहीं। जिंदगी में चाहे कितनी भी रुकावट क्यों ना हो, चलते रहे।

सा दे रही हैं लक्ष्मी जी बॉम्बू से, शिव गोविंद जी हैं, और हमारे इस प्लेलिस्ट को एंजॉय कर रहे हैं। यूं ही सुनते रहिए, गुनगुनाते रहिए हमारे साथ, ऐसे ही चंद प्यारे प्यारे गीतों के बाहर लेकर आएंगे। साथ में है शर्मा सजादा जी, और जानू परिवार, आशा जानू जी और मामा कुमारी, शिवरानी जी हैं गांव बुआ से,

0: जानता है। इसलिए जो आपकी अपनी मुश्किल है, आपका अपना जो दुख दर्द है, ये आप ही जानते हो। ये कोई और नहीं समझेगा जब तक उस पर नहीं गुजरता। इसलिए किसी और को सुनाना है, तोलना है, जज करना है, तो पहले उस पर बीता हुआ वो दुख को समझिए, तब बातें बनाना। हमारे ऐसे ही इंडियन सिनेमा ने हमें एक सुंदर गीत दिए हैं, तो चलिए उनको सुनते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। इस सफर पर आप चलते रहें, सफर आपका है,
1: का काम है कहना।
0: इसे सजाना या बिगाड़ना आपके ही हाथों में है।

एक्चुअली आप लोगों से एक बात कहनी है, और वो है कि जीवन में जिस पर जो बीतता है वही

0: जैसे मैंने कहा है कि ये राह आपका है, जीवन आपका है, संघर्ष आपका है, तो वो कौन होते हैं लोग जो बातें बनाते हैं? उनको तो बस एक विषय चाहिए चर्चा करने के लिए, तो चर्चा करने दीजिए। आपके फैन हो चुके हैं, इसीलिए तो करते हैं। पर जितना आप प्यार बांटेंगे, लोगों को समझेंगे, जिंदगी उतना ही खूबसूरत होते जाएंगे। और किसी को समझना सबकी बस की बात में नहीं। तो चलिए अभी के लिए रेडियो के इस कार्यक्रमों पर एक नजर डालते हैं। देखते हैं आज आप लोगों के लिए क्या है रेडियो मॉरिशस पर
1: झलकियां।
2: झलकियां

0: अभी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना कार्यक्रम और 8 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम और 8:50 पर हमारी धरोहर कार्यक्रम लेकर आएगी किरण जानकी जी। फिर आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे समाचार होंगे। समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम और 10 बजे आप फिर से समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार भक्ति धारा कार्यक्रम प्रस्तुत करेगी रोशनी और 10:15 बजे आप शास्त्र नवनीतम कार्यक्रम सुन पाएंगे और भक्ति धारा कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 10:50 पर और 11 बजे समाचार होंगे। समाचारों के उस पार 11:03 पर उर्दू कार्यक्रम सायदा की तरफ से 12 बजे तेलुगु भाषा में कृतिका द्वारा कार्यक्रम सुनेंगे। दिन के 1 बजे आप RC द्वारा तमिल कार्यक्रम सुनेंगे। रंगारंग कार्यक्रम गुजराती भाषा में लेकर आएगी हमारी प्यारी रत्ना जी और इसे आप सुन पाएंगे दिन के 1:45 पर। 2 बजे आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे हॉन्ग हॉन्ग के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम। 2:30 बजे आप सुनेंगे सपहर के 3 बजे आप समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार आपकी पसंद कार्यक्रम जारी रहेगा और सपहर के 3:45 से लेकर आप उर्दू कार्यक्रम से लेकर 4 बजे तक आप कार्यक्रम सुन पाएंगे, उर्दू कार्यक्रम सुन पाएंगे अनवर की तरफ से। और 5 बजे आप गीत गज़ल कार्यक्रम सुनेंगे परवेज़ा की तरफ से। और शाम के 6 बजे आप पूरा समाचार बुलेटिन सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार 6:20 पर चंद फिल्मी गीत आप सभी के नाम और 6:30 बजे आप चाइनीज कार्यक्रम सुन पाएंगे जिनके तरफ से। तमिल कार्यक्रम रात के 7 बजे आप सुन पाएंगे और 7:30 बजे आप तेलुगु भाषा में विश्वाजी द्वारा आप कार्यक्रम सुन पाएंगे। गीत गंगा कार्यक्रम मराठी भाषा में बापू की ओर से 7:50 पर। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम इस भक्ति कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे अलका जी द्वारा। फिर महफिले शब परवेज़ा लेकर आएगी रात के 8:40 पर। और रात के 9 बजे भोजपुरी तड़का कुछ भोजपुरी गीत आप सभी के नाम आपके ही डेडिकेशन सुरेखा जी प्रस्तुत करेगी। और रात के 11 बजे सुनहरे पल कार्यक्रम गिनिशा की ओर से क्षमा कीजिए। और रात के 12 बजे से लेकर 6 बजे तक पुराने गीत और कुछ भजन आप सभी के नाम रेडियो मॉरिशस की लहरों पर।
1: रेडियो मॉरिशस
2: झलकियां
3: रेडियो मॉरिशस
4: 19 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।
0: श्रोताओं आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से फिगोफ्ला के रहने वाले निवासियों को खासतौर पर एवेन्यू दे कोलंब, एवेन्यू दे आइंग्रेट, एवेन्यू दे कनारी, एवेन्यू दे अग्लियों और एवेन्यू दे पेड्रिक्स, एवेन्यू दे फ्लामा, एवेन्यू दे

0: मोरां एवेन्यू कारोल के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार और शनिवार 6 जून 2024 को सुबह के 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों से क्षमा प्रार्थी हैं। बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई को सामान्य रूप पर लाई जाएगी। श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है
1: 819 किलोहर्ट्ज़। ये है रेडियो मॉरिशस।

भाई ऐसे ठंडी ठंडी मौसम में रोमांटिक गीत तो बनता ही है, और वैसे भी आप सुन रहे हैं सुबह का नजराना। सुबह सुबह ऐसे ऐसे प्यारे प्यारे गीत जब भी हम सुनते हैं तो मूड तो अपने आप में ही बन जाता है ना। इसीलिए तो हम हैं, चले आते हैं साथ निभाने के लिए, आप सभी के मनोरंजन के लिए ही। मदहोश दिल की धड़कन, चलिए आप सभी के नाम कुमार सानू जी और सादिरी हैं लता जी।

0: सुबह का नजराना लाए खुशियां हजार, रेडियो मॉरिशस पर।
1: तो चलिए इसी के साथ सुबह का नजराना कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं। 7:08 बजे आप भोजपुरी में समाचार सुन पाएंगे। समाचारों के उस पार फिर से मिलेंगे गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। तब तक के लिए तैयार रहें उस धमाकी कसरत के लिए। और अभी आप सभी के नाम वैसे तो मिलना जुलना तो होते ही रहेंगे, कैसे रेडियो मॉरिशस द्वारा ऐसे ऐसे गीतों के साथ।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला जा फजीर के 8 बजे तक। आठ बजे के भोजपुरी समाचार में आप सब लोग की स्वागत करा जाता है। सब लोग के प्रणाम नमस्ते। सबसे आगे देश के बारे में बतियाव जा। मॉरिशस में बरिस 2026 के गन्ना के कटाई के मौसम आवत कुछ दिन में शुरू हो होला बाटे। चीनी मुल्ला के चलाई के काम 22 जून से चरणबद्ध तरीका से शुरू हो होला बाटे। ई अभियान ऐसे वक्त में शुरू हुआ था जब गल मौसम सामान्य से जस्ती शुष्क रहल बाटे, पर एकर बावजूद गन्ना के फसल कुल मिला के संतोषजनक रही। मॉरिशस कृषि सदन एगो बयान निकलले बाटे जेकर में बोलल गल बाटे कि गन्ना के कटनी के काम दिसंबर के मध्य ले जारी रही और एकर संगे ठंडा के अइला के संगे गन्ना में चीनी के जो मात्रा है उ कले कले बढ़े के उम्मीद बा, जेकर से उत्पादन के बहुत लाभ पहुँची। आप लोगन के बता देवी लाजा कि मॉरिशस में ई जोन बरिस 2026 के गन्ना के कटाई है एक शुरुआत जोन हुआ था 22 जून के ई उ दिन यूनियन फ्लैग में आलतीओ मुल्ला और उत्तर के तेगा मुल्ला में उत्पादन के काम शुरू हुई और दक्षिण में उबनिकेन में 14 जुलाई के गन्ना के पेड़ के काम शुरू हुई। बड़जना लोग विधवा और कमजोर वर्ग के निशाना बना के करगल 5 मिलियन रुपया से जस्ती के कथित ठगी के मामला में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन के जांच में एगो नवा विकास सामने आल बाटे। फिनिक्स के रहे होला रमेश हिमराज के काल रात के पकड़ल गल बुद्ध के गिरफ्तार कर गल कथित मास्टरमाइंड जोन ई सब मामला के पाछे सब योजना बनैले रहल। हेमराज मनोहर के बैंक खाता के जांच में रमेश हेमराज देने से करगल 3.4 मिलियन रुपया से जस्ती के संदिग्ध लेन देन के खुलासा भी होल बाटे। रमेश हेमराज पर मनी लॉन्ड्रिंग के अस्थाई आरोप लगावल गल और ओकरा आज फजीर के अदालत में पेश करल जाए। एसएसओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर काल अधिकारी लोगन एगो बड़का कार्रवाई करलन जा, जहां पर ही उ लोग 62.5 किलोग्राम गांजा पकड़लन जा। ई मादक पदार्थ लंदन गैटविक से मॉरिशस के एगो उड़ान में आल और उड़ान में 2 यात्री के लगे से ई सब बरामद करल गल। जब्त करल गल ई ड्रग की बाजार में कीमत 94.5 मिलियन रुपया आंकल जाता। गिरफ्तार कर गल दोनों यात्री के पहचान रिविया दिखेल आबुआ देजामोगत के रही होला चर्मदेव चतुरी और रुमर्शन पदारत के नाम से होल बाटे। आजसू के अधिकारी प्रोफाइलिंग अभियान करलन जा और उ लोग के मॉरिशस पहुंचला पर उ लोग के रोकल गल। उ लोग के कब्जा में मिलगल 4 गो सूट केस के स्कैनिंग करल गल और संदिग्ध संकेत मिलला पर उ लोग के एमओरी के कस्टम एंटी नैकोटिक विभाग के कार्यालय भेजगल, जहां पर सब नीमन से तलाशी भइल और सब सूट केस में छिपावल गल गांजा बरामद होल। एकर बाद आजसुआ ट्रैफिक ब्रांच संयुक्त अभियान चलैलन जा, जेकर तहत मौदालबेय के रहे होला मनीष कावलीसौ के भी पकड़ल गल। ई पूरा कार्रवाई पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सूरजबाली के नेतृत्व में चलल। आवत 19 जून के सरकार दिने से वित्त बरिस 2026-2027 के बजट के प्रमुख रूपरेखा प्रस्तुत करल जाए। ई एगो महत्वपूर्ण अवसर है जेकर पर सब मॉरिशन लोग के नजर टिकल बाटे। जनता ऐसन बजट के उम्मीद करता जेकर से सामाजिक कल्याण और आदमी के वित्तीय राहत मिली। ई बजट ऐसन वक्त में पेश करल जाता जब आर्थिक परिस्थिति अभी भी अनिश्चित बनल बाटे। ई बजटीय अभ्यास के माध्यम से प्रधानमंत्री देश की प्राथमिकता होला विषय पर जस्ती ध्यान दे और आय होला बरिस खातिर आर्थिक दिशा स्पष्ट करियन। हर बरिस के 5 जून के विश्व

0: विश्व पर्यावरण दिवस मनावल जाला। ई अवसर रहेला दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटे आर प्राकृतिक संसाधन के सतत उपयोग के देने आदमी लोग के जागरूक करे खातिर कईगो कार्यक्रम के माध्यम से कदम उठाए के ई बरिस धरती पर सुरक्षित आ स्वच्छ, धरती के सुरक्षित आ स्वच्छ बनाए खातिर सामूहिक जिम्मेदारी निभाए के संदेश देवल जाता। पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान हमनी के धरती के रक्षा पर बल देलन आर युवा लोग से पर्यावरण संरक्षण खातिर सांस्कृतिक आंदोलन के आह्वान करलन। उ स्वच्छ आर हरित पर्यावरण दिने जन जागरूकता बढ़ाई आर सब आदमी के पर्यावरण संरक्षण के प्रयास में सक्रिय भागीदारी खातिर प्रोत्साहित करलन। और आप लोग के ई भी याद दिला दी विलाजा कि निर्माण सामग्री के अवशेष यानी कि जब कुछ घर या कोनो मकान बन जाला तो टूटल चीज जोन रहेला उ इधर उधर नहीं फेंके के चाही। कचरा के जोन थैली रहेला घरेलू कचरा और कबो कबो पशु के अवशेष मौसस में अवैध कचरा डैम्पिंग के मामला निखन उभर के सामने आल बाटे। पर्यावरण पुलिस इस समस्या के लेके सतर्क बाटे। जनवरी से मई 2024 के बीच कुल 575 मामला ऐसा दर्ज करल गल। इस प्रकार के उल्लंघन खातिर 30 गो चालान जारी करल गल जेकर में सबसे जस्ती 25,000 रुपया ले जुर्माना भरे के पड़ी सकी। एकर अलावा सार्वजनिक स्थान में छोटा कचरा फेंके खातिर 532 गो मामला दर्ज होल जेकर चालान निकालल गल। दक्षिण क्षेत्र में हाल में एगो नदी में पशु के अवशेष फेंकल गल रहल। हालांकि कचरा के हटावल गल पर जिम्मेदार व्यक्ति के पता अभिले नहीं चलल बाटे। आज दूसरा देश के समाचार में यूक्रेन युद्ध के बीच 11 गो यूरोपीय देश रूसी पर्यटक लोग खातिर वीजा नियम के आर कड़ा करे के मांग करत हुआ जा। इस सब देश माने लन जा कि छुट्टी खातिर यात्रा के अनुमति यूरोपीय एकजुटता के कमजोर करी आ सुरक्षा संबंधित जोखिम के भी बढ़ाए। उधरे लेबनानी सशस्त्र संगठन हिजबुल्ला अमरीका आर समर्थित इजराइल लेबानन युद्ध विराम समझौता के शर्त के सख्ती से खारिज कर दिलक, ओके नकार दिलक। संगठन ई बोलता कि ई वार्ता लेबानन खातिर अपमानजनक है आर निष्फल भी रहल बाटे आर इसे हुआ के जनता के बड़ा वर्ग के भी समर्थन मिलल बाटे यानी कि ई मुद्दा के ई समर्थन मिलल बाटे। तो एक संगे ई भोजपुरी के समाचार समाप्त भेल। ध्यान से साथ दे लो का खातिर धन्यवाद। अभी संगे रह बढ़ब जा भी मरनी के समाचार देने।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBCRadio.tv, NBCRadio.tv.
0: मरने के समाचार सुन रिविये दे क्रेओल मेबर्ग में रिविये दे क्रेओल मेबर्ग में 55 बरिस के 55 इयर्स ओल्ड के श्री बिसुंदत रामसन जिनकरा कोलो के नाम से भी आदमी जैसे जाना था जाके मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी आज 11 बजे इनकर माँ शांति रामसन के घरे मेबर्ग से उठाकर अंतिम संस्कार खातिर प्लेन मानियो के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टी डी एट 11 AM निस्कालिये रोड प्लेन मानियो में 78 बरिस के तीन कोड़ी 18 बरिस के श्रीमती चित्ररेखा कालीचरण पैदाशाम रामनगर जिनकरा मामा बबीता के नाम से बेनवी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी आज 12 बज के आधा इनका घर है प्लान मान्यो से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमिशन टूडे एट हाफ पास नून रॉयल रोड ओस्टिया में 91 साल के 4 कोड़ी 11 बरिस के श्रीमती रोहिणी ब्रिजमोहन पैदाशाम सेवा जिनकरा रोशनी सिवंबा के नाम से भी अभी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी 12 बज के आधा इनकर बेटा भुवन ब्रिजमोहन के घरे ओष्टिया से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गौगोप के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट हाफ पास नून तमिल टेम्पल रोड शुमेगोनिया में 69 साल के 3 कोड़ी 9 बरिस के श्री कृष्णा स्वामी कपेन जिनकरा रामेन के नाम से भी आदमी जैसे जानते जाके मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर भाई राम मुगन कपेन के घर शमग्रणी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कौ गोपाल शामुनि के शमशान भूमि ले जावल जाए। क्रिमेशन टुडे एट 2 PM रॉयल रोड प्लेंटी पपाई में 3 कोड़ी 16 बरिस के श्रीमती भीष्मावती दुखित पैदाशनाम गुदोया जिनकरा प्रेमिला के नाम से भी आदमी जैसे जानते जाके मृत्यु हो गल बाटे। इनकर अर्थी आज 11

के आधा इनका इनका बेटा देवदुखित के घर प्लैन मानियों से उठा प्लैन दीपा पाई से उठा के अंतिम संस्कार खातिर पीतों के शमशान भूमि ले जावल जाए के मिशन टूडे एट 11:30 AM जगदम्बी रोड गुडलैंड में 77 बरिस के 3 कुड़ी 17 बरिस के श्रीमती राजकुमारी पीरू पैदाश नाम ओकेमा जिनका उमा के नाम से भी आदमी जस जानथन जाकर मृत्यु हो गल बाटे इनकर अर्थी आज दिन के 1 बजे इनका घर गुडलैंड से उठा के अंतिम संस्कार खातिर बेलमो गुडलैंड के शमशान भूमि ले जावा जाए कमीशन टी आर 1 PM रॉय रोड ग्रैंड रोड में 3 कुड़ी 12 बरिस के 72 बरिस के श्रीमती अंजलि रुकमीन पैदाशाम दामगिया जिनकरा रजनी के नाम से भी आदमी जस जातन जाकर मृत्यु हो गल बाटे इनकर अर्थी आज 1 बज के आधा इनकर बेटा उदय रुकमीन के घर गौनगुदगत से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मिजिन कौदेमास के शमशान भूमि ली जावल जाए क्रिमेशन टी एट 1:30 PM बेलेक्स हीट कैंट यूके में बेले हीट कैंट यूके में 3 कोड़ी 14 बरिस के 74 बरिस के श्री जयराज जीवन जिनकर नील के नाम से भी आदमी जैसे जानते हैं आर जोन आगे टागोर रोड फोंजी साग के रहे होला रलन के मृत्यु हो गल बाटे इनकर अर्थी आज यूके समय अनुसार सांझ के 3 बजे इनकर पत्नी अनुराधा जीवन के घरे बेक्सली हीट कैंट यूके से उठा के अंतिम संस्कार खाती थेम्स व्यू क्रिमेटोरियम के शमशान भूमि ली जावल जाए क्रिमेशन इन यूके एट 3 PM यूके टाइम रामनारायण रोड कुतेज में 75 बरिस के 3 कोड़ी 15 बरिस के श्रीमती बसंती रामचंद पैदाशराम चमन आज इनका सुनीति के नाम से भी आदमी जस जानते हैं जाकि मृत्यु होगल बाटे इनकर अर्थी आज 11 बजे इनका घर कुतेज से उठा के अंतिम संस्कार खातिर हुए के शमशान भूमि ले जावल जाए कमीशन टी डी 8:11 AM आवेन्यू पेरुष मोसेल मॉल मेबर्ग में 85 बरिस के 4 कोड़ी 5 बरिस के श्रीमती सावित्री देवी पैदाशराम दुखिया जिनकरा साबित के नाम से भी आदमी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु होकर बाटी इनकर अर्थी आज 11 बजे इनकर बेटा सुनील देवी के घरे मेबक से उठा के अंतिम संस्कार खाती है टोम्बो मेबक के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टी डी 8:11 AM ला रू लोरिलियर वेद में डाकघर के आगे पोस्ट ऑफिस के आगे 87 बरिस के 4 कोड़ी 7 बरिस के श्री भगवत प्रसाद झुमक जिनकरा दयानंद के नाम से भी आदमी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु होकर बैठे इनकर अर्थी आज 11 बजे इनकर घरे वैद्य से उठा के अंतिम संस्कार करती दागुचे के शमशान भूमि ले जावल जाए कमीशन टी डी 8:11 AM सहेली री ब्लड एवेन्यू कैट्रोबोन में 103 बरिस के 5 कोड़ी 3 बरिस के श्रीमती सन्मत दसोई पैदाशम गोखुला जिनका सुगीन के नाम से भी जस जानते जाके मृत्यु हो गल बाटी इनकर अर्थी काल दिन के 12 बजे इनकर घरे कैट्रोबोन से उठा के अंतिम संस्कार खातिर थ्वामा मेल की शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टुमोरो एट 12:00 PM मोसेलमो सैंत ओरी सैंचुबेर में 27 साल के 1 कोड़ी 7 बरिस के श्री कृष्णा चकोरी जिनकरा पिक्सन के नाम से भी आदमी जस जानते जाके मृत्यु हो गल बाटी इनकर अर्थी आज फजीर के 10 बजे इनका नानी सुकन दमयंती के घरे सैतौरी सैचुबे से उठा के अंतिम संस्कार खाती सैचिलिया के शमशान भूमि ले जावल जाए कमीशन टू डी 8:10 AM स्वराज भवन लेन लालमाटी में 89 साल के 4 कोड़ी 9 बरिस के श्रीमती कलावती मंगर पैदाश्रम लखना जिनकरा विद्यापति के नाम से भी आदमी जिस जानते हैं जाके मृत्यु होगल बाटी इनकर अर्थी आज फजीर के 11 बजे इनकर बेटा मनीष मंगर के घरे लालमाटी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मिजिन कौदेमास के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टी डी 8:11 AM बाउंड्री रोड गोजिल में 77 बरिस के 3 कोड़ी 17 बरिस के श्रीमती धनवंती देवी रामचंद पैदाश्रम पैम और जिनकरा रेखा के नाम से भी आदमी जाथन जाके मृत्यु हो गल बाटी इनकर अर्थी आज दिन के 1 बजे इनका घर रोजिल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गांधी पालमा के शमशान भूमि ले जावल जाए क्रिमिशन टी डी 1 PM जिल्फा लेन सेंट जूनियर दुतमो में 109 बरिस के 5 कोड़ी 9 बरिस के श्रीमती धनमतिया सुको पैदाशम रतना जिनकरा मुना के नाम से भी आदमी जैसे जानते हैं जाके मृत्यु होकर बैठे इनकर अर्थी आज दिन के 1 बजे इनकर बेटी अनीता सुको के घर ही सेंट जूनियर दुतमो से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कौतोल के शमशान भूमि ले जावल जाए कमीशन टू डी 1 PM कल्पू लेन मैडम लोलो रोजबेल में 4 कोड़ी 12 बरिस के 52 बरिस के श्री धनंजय लाला जिनकरा गंग के नाम से भी आदमी जैसे जानते हैं जाके

0: मृत्यु हो गल बाटी इनकर अर्थी आज 11 बजे इनकर घरे रोजबेल से उठा के अंतिम संस्कार खातिर मागजानी रोजबेल के शमशान भूमि ले जावल जाए कमिशन टूडियाटी लेवन एम मोसलमा फ्रीडम रिविया दिस ऑन गीमे मोसलमा फ्रीडम रिविया दिस ऑन गीमे 4 करोड़ 3 बरिस के 83 बरिस के श्रीमती जयमुंती लखन श्रीमती जयमुंती लखन पैदाशल मचुमन जिनकरा जामुन के नाम से बेदमी जिसने आत्मा जाके मृत्यु हो गल बाटी इनकर अर्थी आज फजीर के 10 बजे इनकर बेटा सुरेश लखन के घरे रिविया दिस ऑन गी से उठा के अंतिम संस्कार खातिर गाँव बुआ के शमशान भूमि ले जावल जाए कमीशन टूडिया 10 AM ब्लैकबर्न रोड कोंगुमा में 50 बरिस के 2 करोड़ 10 बरिस के श्री देव आनंद राम रिचिया जिनकरा लोलो के नाम से भी आदमी जैसे जानथन जा के मृत्यु हो गल बाटे इनकर अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकर भाई मंगल राम रिचिया के घरे कोंगुमा से उठा के अंतिम संस्कार खातिर त्यामिनी स्त्री उल्लेखी शमशान भूमि ले जावल जाए कमीशन टूडिया 8 नून दुख अशोक में डूबल इस सब परिवार के संगे हमने की दिली संवेदना बाटे
1: एट हंड्रेड एंड 19 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार और आप सभी का स्वागत करती है पूजा गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। वैसे कहते हैं ना कि सुबह सुबह दिमाग की कसरत के लिए हम उठ ही जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं इस कार्यक्रम के साथ जुड़ चुके हैं और इंतजार भी करते हैं कि कब गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम से कुछ ना कुछ हम भी दिमागी कसरत कर ले। तो आइए, आज का जो नाश्ता है वो नवीन जी द्वारा प्रिपेयर की गई है और उनके द्वारा बनाए हुए नाश्ते को चलिए हम चखते हैं, देखते हैं कैसा बना है और उनको तहे दिल से धन्यवाद। तो इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आपको डायल करना है 400

ये दो आठ शून्य आठ पाँच पर 402-80-85 या फिर 525-17-005 पर आप हमें मैसेज भी भेज सकते हैं। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं। पहला सवाल कुछ इस प्रकार है, ध्यान से सुने। किसको पानी की जरूरत नहीं है? किसको पानी की जरूरत नहीं है? 402-80-85 पर किसको पानी की जरूरत नहीं है? 402-80-85 पर

0: आया मौसम दोस्ती का, मैं तो कहूंगी आया मौसम गरम गरम नाश्ते का। तो चलिए लाइन पर एक श्रोता है, उनको सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। हेलो,
1: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग आपको। कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ।
0: चलिए शोभा जी, आप बताइए तो आपके पास क्या जवाब है।
1: तो मैं कोशिश कर रही हूँ प्लास्टिक के फूल,
0: प्लास्टिक के फूल
1: और पत्थर भी,
0: और पत्थर भी नहीं, दोनों गलत हैं। कोई बात नहीं।
1: ओके,
0: फिर भी आपने कोशिश की, उसके लिए धन्यवाद।
1: ओके, धन्यवाद।
0: और कहेंगे शुभ दिन आपको।
1: शुभ दिन आपको भी, बाय
0: बाय। इंतजार है जी, 402-808-5 पर है, 402-808-5 पर। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो।
2: हेलो,
0: नमस्ते जी।
2: नमस्ते,
0: कैसी हैं आप?
2: ठीक हैं।
0: और आपका स्वागत है, और आपका स्वागत है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। तो आपका शुभ नाम?
2: तारा।
0: तारा जी कहाँ से बोल रही हैं? तारा जी
2: रोजिल से। रोजिल से?
0: रोजिल से, मैंने तो सुना दिल से। कोई बात नहीं, चलिए बताइए आपके पास क्या जवाब।
2: हाँ, उतना तो नहीं जानते हैं, लेकिन हम
0: कोशिश तो करते हैं।
2: कच्चू का पत्ता, वो पानी को नहीं, वो पानी गिर जाते हैं उसमें जाते हैं।
0: कच्चू के पत्ते को? नहीं, ये भी गलत जवाब तारा जी। फिर भी आपको कहेंगे शुभ दिन और बहुत बहुत धन्यवाद भाग लेने के लिए। चलिए एक और श्रोता है लाइन पर, उनको भी अवसर देते हैं। हेलो।
3: हेलो,
0: नमस्ते।
3: गुड मॉर्निंग माय डियरेस्ट पूजा।
0: गुड मॉर्निंग जी, कैसी हैं आप?
3: आई एम वेरी वेरी फाइन एंड वेरी गुड।
0: ओके,
3: but I'm not so sure, maybe it will be a very very bad answer. Could be river, he has his own water.
0: आप बहुत बहुत करीब हैं। river, another answer.
3: pond or well.
0: नहीं,

0: I can't make it up now.
1: Okay, it's okay. So okay, I will tell you. Have a good morning and have a nice day.
0: Thank you, my dear. Thank you. Bye.
1: भाई कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आप बहुत बहुत करीब थी। चलिए मैं फिर से जो है क्वेश्चन दोहराती हूँ। ऐसे नवीन जी के प्रश्न बड़े ही हटके होते हैं। किसको पानी की आवश्यकता नहीं है, यानी किसको पानी की जरूरत नहीं है। लाइन पर एक और श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं कि उनके पास क्या जवाब है। हेलो
2: हेलो पूजा जी, नमस्ते बहना।
1: हेलो जी, कैसी हैं आप शोभा जी?
2: मैं ठीक हूँ पूजा जी, क्योंकि मैं पूजा कर रही हूँ।
1: अच्छा, पूजा कर रही हैं, मेरे लिए भी और हम सबके लिए आप प्रार्थना भी करना चाहिए,
2: स्पेशल तुम्हारे लिए।
1: धन्यवाद। चलिए बताइए आपके पास क्या जवाब है।
2: वो है समुद्र।
1: समुद्र कैसे पता चला आपको?
2: क्यों उसकी उसमें तो पानी है ना।
1: हाँ हाँ,
2: क्यों उस नदी में पानी है, समुद्र में पानी है।
1: क्या बात है बाबू, आपको कहेंगे बधाई हो। क्या धमाकी, क्या दिमाग लगाया आपने, और आपने सही जवाब दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शोभा जी।
2: देखिए ना, तो मैं पूजा कर रही थी तो वो मैंने जीत लिया ना।
1: भगवान की कृपा से
2: दे आपको।
1: भगवान की कृपा से आपको मिली, और ये है समुद्र। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर।

अरे ये बड़ा ही हटके और फनी भी है, मजाकिया भी है। चलिए सुनिए ध्यान से। किस जंगल में शेरनी कभी कभी शेर पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करती है? बड़ा ही आसान है, दिमाग लगाइए। किस जंगल में शेरनी कभी कभी शेर पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करती है? किस जंगल में शेरनी कभी कभी शेर पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करती है? 4028 पर

चलिए बताइए कि किस जंगल में कभी कभी शेरनी अपनी हुकूमत चलाती है, बताइए वो कौन सी जंगल है? किस जंगल में शेरनी कभी कभी शेर पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश करती है?

इस गीत से मैंने आप लोगों को एक टिप्स दे दी है। किस जंगल में शेरनी कभी कभी शेर पर अपना हुकूमत चलाने की कोशिश करती है?

0: इस जंगल में कभी कभी शेरनी शेर से अपना जो है हुकूमत चलाती है। बड़ा ही आसान है, इस गीत को ही सुन लीजिए, जवाब मिल जाएगी। जंगल है, आधी रात है, लगने लगा है दर्द। कहाँ है, किस जंगल में है? 402-808-85 पर। लाइन पर एक और श्रोता है, आइए उनको सुनते हैं। हेलो,
1: हेलो, नमस्ते।
0: नमस्ते जी, आपका शुभ नाम?
1: रामदत्त है।
0: रामदत्त जी, आपका स्वागत है गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम में। और आपके पास क्या जवाब है?
1: घर परिवार।
0: घर परिवार, आप बहुत करीब हैं। एक और जवाब देना चाहते हैं? कोई बात नहीं रामदत्त जी, आपको कहेंगे शुभ दिन। एक और श्रोता है लाइन पर, आइए उनको सुनते हैं। हेलो, हेलो,
2: नमस्ते पूजा जी।
0: नमस्ते जी, कैसी हैं आप?
2: ठीक हूँ जी।
0: ठीक हूँ जी, बताइए जी, जवाब क्या है जी?
2: तो मैं भी कोशिश करती हूँ। पति पत्नी में जब घर में बहस चलती है, नोकझोंक होती है,
0: हाँ,
2: तो पत्नी ज्यादा बरसती है।
0: हाँ, तो वो जंगल का नाम क्या है?
2: जंगल का नाम नहीं पूछा।
0: जंगल का नाम पूछा है मैंने।
2: जंगल में शेर
0: तो शेरनी तो दहाड़ती ही है ना शेर, हाँ, के ऊपर। तो फिर आपको बताना है जंगल का नाम क्या है।
2: पता नहीं जंगल।
0: कोई बात नहीं, आपने कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देवी जी। बाय बाय। हेलो, गुड मॉर्निंग।
3: हेलो बहन जी।
0: नमस्ते, गुड मॉर्निंग।
3: नमस्ते,
0: कैसी हैं आप?
3: हाँ, मैं अच्छी हूँ बिजी जी। मैं मोंगू से बोल रही हूँ, नंदनी नेपाल।
0: नंदिनी जी, आपका स्वागत है। और नंदिनी जी के पास क्या जवाब?
3: धन्यवाद। मेरा जवाब है प्यार।
0: प्यार, और प्यार के बाद क्या होता है? प्यार के बाद
3: सब कुछ अच्छा हो जाता है।
0: हाँ, अच्छा हो जाता है,
3: हो जाता है।
0: किस जंगल में जाते हैं प्यार के बाद?
3: बुद्धि, बुद्धि के प्यार।
0: बुद्धि? नो, नहीं नहीं, बुद्धि नहीं।
3: मन, मन
0: नहीं। किस जंगल में जाते हैं प्यार के बाद?
3: घर के, घर रूपी जंगल।
0: घर रूपी जंगल का नाम क्या है?
3: परिवार।
0: एक और?
3: संयुक्त परिवार।
0: हाँ हाँ, पर उस जंगल का नाम नहीं बता रही है ना आप। कोई बात नहीं, आपने बहुत कोशिश की उसके लिए।
3: प्यार से दीदी।
0: प्यार से, हाँ,

0: पर उस जंगल का नाम कुछ और है, पर आपने
1: शेर
0: कोशिश
1: पर
0: की।
1: कब्जा कर लेते हैं ना। हाँ, लक्ष्मी जो पत्नी है, पत्नी प्यार जताती है बहुत घर को चलने के लिए। हाँ, अच्छी तरह से घर चले, परिवार ठंडा रहे,
0: जी,
1: है
0: पर
1: तो।
0: ये जो है गलत जवाब है। फिर भी आपने
1: आई आई आई
0: कोशिश की, उसके लिए बहुत बहुत
1: संस्कार
0: धन्यवाद।
1: से संस्कार
0: नहीं नहीं
1: नहीं। अच्छा, बहुत
0: कोई
1: धन्यवाद
0: बात नहीं,
1: धन्यवाद
0: आपको कहेंगे
1: धन्यवाद।
0: शुभ दिन। प्यार के बाद एक जंगल में जाते हैं, कौन क्या है नाम उस जंगल का? चलिए श्यामा जी को हम सुनते हैं। नमस्ते श्यामा जी, कैसी
2: नमस्ते। कुछ
0: हैं आप श्यामा जी?
2: कुछ अच्छी हूँ, कुछ अच्छी नहीं हूँ, क्या करेंगे, जिंदगी है ना, किसी प्रकार जीना पड़ता है ना।
0: पर
2: तो
0: भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य हमेशा अच्छे ही रहे।
2: यूँ तो
0: और
2: अच्छी ही रहती हूँ, अब देखिए ना, उम्र का तकाजा है ना। हाँ, कभी अच्छे रहते हैं, कभी अच्छे नहीं रहते हैं, और घर का काम धाम बहुत है ना, खुद
0: बहुत
2: संभालना पड़ता
0: जी
2: है ना।
0: जी पर आपके पास क्या जवाब है श्यामा
2: वो
0: जी?
2: गृहस्थी है, गृहस्थी है।
0: गृहस्थी है, और मैं आपको सही जवाब दे ही देती हूँ। आपने सही जवाब दिया है, मैं आपको बधाई बोलती हूँ। वो गृहस्थी है, वो विवाह है, जिस जंगल में हम जाते हैं, जहाँ पर वो अपना हुकूमत चलाती है। और आपको
2: लेकिन
0: कहेंगे
2: वो
0: बधाई।
2: गृहस्थ जीवन है।
0: गृहस्थ
2: हाँ,
0: जीवन।
2: गृहस्थ जीवन में ये होता है ना, शेरनी बन जाती है ना घरवाली।
0: ये तो
2: है
0: है।
2: कि नहीं?
0: और
2: जाते यूं तो नहीं दिखाते हैं, जाते हैं तो बस शेरनी बन जाती है, हुकूमत
0: और
2: चलाने लगती है। एक एक समय रहता है चुप चुप चुप चुप, फिर बाद में शुरू हो जाती है। हाँ कि नहीं?
0: और उसके लिए बहुत
2: अच्छा।
0: बहुत धन्यवाद श्यामा जी, और आपने सही जवाब दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से आपको कहेंगे शुभ दिन।
2: आपको भी बराबर। सवेरे तो मैं आपको मैसेज नहीं कर पाई क्योंकि बहुत काम है, और
0: कोई बात नहीं।
2: आंगन बहुत बड़ा है ना, तो साफ करने लगती हूँ तो नहीं सुनती हूँ। आज तो गाना भी नहीं सुना, एक भी गाना, पुराने
0: कोई
2: गाने
0: बात
2: एक भी नहीं
0: नहीं,
2: सुना।
0: कोई बात नहीं।
2: ओके, शुभ दिन आपको बराबर।
0: बाय बाय, नमस्ते। तो चलिए इसी के साथ हम गर्मा गर्म नाश्ता कार्यक्रम के अंत तक आ पहुंचे हैं।
3: गर्मा गर्म नाश्ता।
0: अब हम बढ़ेंगे हमारी धरोहर कार्यक्रम की ओर, और आप सभी के नाम एक भोजपुरी गीत चलाएंगे। 9 बजे आप समाचार सुन पाएंगे, समाचारों के उस पार आज की चर्चा कार्यक्रम। तब तक के लिए आप सभी को कहेंगे नमस्ते, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पूजा को अनुमति दीजिए। मेरी ओर से सभी को प्रणाम।
4: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर।
5: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। कल हमने पर्यावरण के विषय पर बतयात्रा लीजा, कहे कि 5 जून के विश्व पर्यावरण दिवस मनायला जा। और ये भी हम बोलत रही कि ये जो दशक बा, ये पूरा दशक पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम के सुरक्षा खातिर समर्पित बा। संयुक्त राष्ट्र संघ ये बात के ऐलान कर ले बा। यूनाइटेड नेशंस डिजास्टर रिस्क रिडक्शन ये बात के जायजा ले लेबा कि अगर हमने के पृथ्वी, हमने के ई ग्रह के तापमान ओकर जो टेम्परेचर बा, अगर वो और 2 डिग्री से बढ़ जाए तब बहुत तबाही मच जाए। सबसे पहला तो हमने के समुंदर के स्तर बढ़ जाए, और बड़ा बड़ा और बहुत जोरदार तूफान आए, करोड़ों लोग के परी अपन जगह छोड़ के दूसरा जगह जाएगी, भारी बरसात हुई, अचानक बाढ़ उमर आए, और आधा जो खेती बाई दुनिया भर में और फसल उ तबाह हो जाए, और खाना के भारी कमी महसूस हुई। यही खातिर पृथ्वी के तापमान के 1.5 डिग्री से जस्ती नई बढ़े देवे के हमने के चाहे कटिबद्धता लेवे के, चाहे पर्यावरण के सुरक्षा करे के, ताकि मानवतावाद के सकब्जा बचावे, और हर एक जनता के चाहे अपन तरफ से योगदान देवे के, उ चाहे कितना ही छोटा योगदान काहे नहीं रही। तो चलो देखे किसी छोटा मोटा हरकत से हमने सकब जा अपन पृथ्वी के बचावे, अपन योगदान देवे। अब

अपन घर अंगना के जितना सकबा उतना खेती बाड़ी करा हरियाली से भर दा। बगीचा के जो इस्तेमाल बा उ जस्ती करा। और फिर आजकल एनर्जी के बात होता, बिजली के कमती इस्तेमाल करा, जितना सकबा उतना कमती गाड़ी के इस्तेमाल करा, जस्ती चला साइकिलिंग करा। और को वाचुगास जी के बोलल जला कि एक ही गाड़ी के दो तीन जना सके इस्तेमाल करे, तो ये सब के प्रावधान चाहिए करे के प्लास्टिक नहीं बल्कि शॉपिंग बैग के इस्तेमाल करा, रिचार्जेबल बैटरी के इस्तेमाल करा, जब टीवी नहीं देखबा तो ओके बुता दा। लंबा समय तक जे चाहबा कि अगर असर पड़ी तो पानी बचावे के सबसे बड़ा बात बा, कमती पानी के इस्तेमाल करा, ज़ाया नहीं करा, कागज़ के दोनों बगल इस्तेमाल करा, कंपोस्ट बिन बनावा, वॉशिंग मशीन के पूरा भर के ही चलावा, और जब गाड़ी चलेबा तो स्पीड लिमिट तक ही चलावा, कूड़ा कचरा नहीं फेंका हर जगह, जोन तोहर देश के पैदावार बा ओकर ही इस्तेमाल करा, और कोनो सामान के जितना हला सकबा उतना इस्तेमाल करा, रीयूज जेके बोलीला सा, और तोहर एयरकॉन के जोन फिल्टर बा ओके नियमित रूप से साफ करते रहिया, फास्ट फूड कमती खाया, और एकर ई असर होई कि अगर जोन पैकेजिंग है जोन जस्ती प्लास्टिक से बनेला और कागज से बनेला उ जस्ती तब घटे लगी, और फिर हमेशा एनवायरनमेंट फ्रेंडली सामान खरीदिया। ऐसा छोटा छोटा बात के जब ख्याल रखबा तो आप सकबा अपन ओर से पर्यावरण के सुरक्षा में योगदान देवे। कार्यक्रम के ध्यान से सुनला, बहुत धन्यवाद, नमस्ते।

0: देश के समाचारों के साथ स्टूडियो में आ गई है अशिता रघु। चलिए उनसे सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। नमस्कार अशिता।
1: नमस्कार विदिता, श्रोताओं को भी नमस्कार। संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। सबसे पहले स्थानीय खबरें। मॉरिशस में वर्ष 2026 की गन्ना कटाई का मौसम अगले कुछ दिनों में शुरू होने जा रहा है। चीनी मिलों का संचालन 22 जून से चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाएगा। ये अभियान ऐसे समय में शुरू हो रहा है जब पिछला मौसम सामान्य से अधिक शुष्क रहा, लेकिन इसके बावजूद गन्ने की वृद्धि कुल मिलाकर संतोषजनक रही। मॉरिशस कृषि सदन के एक बयान के अनुसार गन्ने की कटनी का कार्य दिसंबर के मध्य तक जारी रहने की संभावना है। साथ ही सर्दियों के आगमन के साथ गन्ने में चीनी की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने की उम्मीद है, जिससे उत्पादन को लाभ मिलेगा। वृद्धों, विधवाओं और अन्य कमजोर वर्गों को निशाना बनाकर की गई 5 मिलियन रुपए से अधिक की कथित ठगी के मामले में फाइनेंशियल क्राइम्स कमीशन की जांच में नया विकास सामने आया है। फिनिक्स निवासी रमेश हेमराज को कल रात गिरफ्तार कर लिया गया। बुधवार को गिरफ्तार किए गए कथित मास्टरमाइंड हेमराज मनोहर के बैंक खातों की जांच में रमेश हेमराज द्वारा किए गए 3.5 मिलियन रुपए से अधिक के संदिग्ध लेन देन का खुलासा हुआ है। रमेश हेमराज पर मनी लॉन्ड्रिंग का अस्थायी आरोप लगाया गया है और उन्हें आज सुबह अदालत में पेश किया जा रहा है। एसएसओ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल अधिकारियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 62.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया है। ये मादक पदार्थ लंदन गैटविक से मॉरिशस की उड़ान से पहुंचा। दो यात्रियों के पास से ये बरामद किए गए जब्त की गई इस ड्रग की बाजार कीमत लगभग 94.5 मिलियन रुपये आंकी गई है। गिरफ्तार किए गए दोनों यात्रियों की पहचान खिवेदिखल और बदिजामुगत के रहने वाले चरमदेव चतुरी और रुमर्शन पदारत के नाम से की गई है। आज अधिकारियों ने प्रोफाइलिंग अभियान के तहत उनके मॉरिशस पहुंचने पर उन्हें रोका। उनके कब्जे से मिली 4 सूटकेसेस की स्कैनिंग के दौरान संदिग्ध संकेत मिले। इसके बाद दोनों यात्रियों को एमओआरए की कस्टम एंटी नार्कोटिक विभाग के कार्यालय ले जाया गया, जहां विस्तृत तलाशी में चारों सूटकेसों में छिपाया गया गांजा बरामद हुआ। इसके बाद अचसू और ट्रैफिक ब्रांच ने संयुक्त अभियान चलाया, जिसके तहत मोदालबिया निवासी मनीष कावलीसर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 19 जून को सरकार वित्त वर्ष 2026-2027 के बजट की प्रमुख रूपरेखा प्रस्तुत करेगी। ये एक महत्वपूर्ण अवसर है जिस पर सभी मॉरिशनों की नज़र टिकी हुई है। जनता ऐसे बजट की उम्मीद कर रही है जो सामाजिक कल्याण पर केंद्रित हो और लोगों को वित्तीय राहत प्रदान करे। ये बजट ऐसे समय में पेश किया जा रहा है जब आर्थिक परिस्थितियाँ अभी भी अनिश्चित बनी हुई है, और इस बजटीय अभ्यास के माध्यम से प्रधानमंत्री देश की प्राथमिकताओं के बारे में संकेत देंगे और आने वाले वर्षों के लिए आर्थिक दिशा स्पष्ट करेंगे। हर वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन से निपटने और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ये दिवस पृथ्वी को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का संदेश देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिबनान के सशस्त्र संगठन हिजबुल्ला ने अमरीका समर्थित इसराइल लिबनान युद्ध विराम समझौते की शर्तों को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। एक कड़े बयान में संगठन के प्रमुख नईम कासिम ने कहा कि यह वार्ता लेबनान के लिए निष्फल और अपमानजनक साबित हुई है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद और नमस्कार।

0: सभी श्रोताओं को विदिता की ओर से प्यार भरा नमस्कार। आज की चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो हमारा जो कार्यक्रम है आज की चर्चा, रेडियो मॉरिशस पर आप इस समय सुन रहे हैं, एमबीसी टीवी 3 पर भी हमारा कार्यक्रम प्रसारित हो रहा है। और हम आपको बता दें कि इस समय ये कार्यक्रम फेसबुक पर भी लाइव है और यही कार्यक्रम आप शाम के 3 बजे रेडियो मनोरंजन पर सुन पाएंगे। चलिए तो यहाँ पर सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। और हमारे बीच आज जिस विषय के साथ हम आए हैं, हमारे मेहमान हमारे जो वकील हैं कपिल देव रघुनंदन जी, वो भी हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। वकील जी नमस्ते।
1: नमस्ते जी, और सब भाई बहन लोग के नमस्ते,
0: स्वागत बात हर कार्यक्रम में। और आज 5 जून बा आज हमने विश्व के जैसे बोला पर्यावरण जन दिवस बा ऊ मनावत है जा वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। और हमने के लिए एगो ऐसा जगह जहाँ पर हमने स्वच्छ हवा मिली, स्वच्छ पानी रही, हरियाली रही, हमने के जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है।
1: हाँ जी, हमने तो बोली से आज के दिन एगो दिन हमने के हमेशा याद करे के चाहला, सिर्फ नहीं मैं भर बरिश तक, काहे हम अवियोन में ये के चाहला हमने के हर देश में और सेतु मोइस में के हमने के अवियोन में ऐसे चाहला हमने के देश के बनाई के रखे के कि सब जे आए का तू हुई सोई का हमने हुई आपसे कि हमने जैसे बोले सन फिये हो आपसे जैसे कि हमने के भाई बहन लोग देखे सर बहुत सा सालते देख फेंके सन बहुत सा कुमा जे जहाँ कुमा जे कैसे लामेर भिड़ी देख बिहुआ खैन सन पियन सन सब बूते कुमा जे आर जोन जोन चीज रही फेंक देवे सन आर बन तेरें आफिस जैसे हमने बोले सर आके हुआ डैम्पिंग करके सब चीज सीमा के आगे सब चीज फेंक फाक देवे सन ऐसा एगो लिहोन मेवे जैसे कि जैब लैंड में फॉर एग्जाम्पल बॉम्बे में खाली अपन नाक नहीं सकब देखे जितना चीज फेंकल बा नदिया में वो औसन लंबी में हमने नहीं चाहते सर हमने के देजा एगो

0: मोरिसस एक स्वर्ग देश है पगाजी ओकर नाम ही हमने पगाजी ओके बनाई के चाहे रहा
1: बिल्कुल। अरे यार शुरुआत भी हमने कर देले हैं जा कि हमने लगे आज कोई कोई के देख लेला कि आप कूड़ा कचरा फेंकत हो जहाँ पर नहीं चाहला फेंकेगे तो वहाँ पर तोहरा चाहिए जुर्माना भरे के। और यूनाइटेड नेशंस जो बा जिसने स्वसंदूज में शुरू कर ले रहा वर्ल्ड एनवायरमेंट डे और ये हमने के एगो प्रक्रिया भी चलते आल बा कि इस दिन हमने के देखेला जा ढेर संस्था लोग बा जो काम करे लन जा लड़का लोग के बतावे लन जा सिखावे लन जा ढेर कोई कुछ करेला आज के दिन निकल के साफ सफाई करे खातिर जैसे बोला कि कोई लामेरू जैब अभी तक वहाँ नहीं है ना पुलिस घूमते रहेला लेकिन फिर भी ढेर कोई है जालन जा समुन्द्र किनारे नदी किनारे या तो फिर कोई ऐसा बंजर जमीन जाके आज के दिन साफ सफाई करे लन जा और उकर महत्व सिखावे लन जा कि हमने के लिए हमने के जो नवयौवनमो कितना पोता बा कि वो साफ सुथरा रहे।
0: और हमने के देखे सलाह पुलिस से बड़ी एक्शन सीवियर लेवल हैं और ओकर लमान भी देखबा कुमा जमने के कानून में कुमा जे वेंसेंक मिल ओपी से ऊपर बा और देखे वो चीज देखिए सन काल एगो लुतो एगो कामी हुई कि कुमा जे ऊ में है ले जाता एगो चीज फेंक दिले बा कोई में एगो है एगो तिहाई में सकियन सन सेजी करे एक बान चीज है ई में
1: कुमा जे ढेर वाला ई भी देखले हैं कि जब कोई गाड़ी चलावता आगे ई ढेर रहल देखिए जब जेबा गाड़ी चलेबा तो सीमा के बोरे में देखबा ढेर प्लास्टिक में खाए के हो फास्ट फूड खा के अपन गाड़ी में नहीं रखे अंसा कुछ करे लंजा वो सब फेंक देवे लंजा पीछे
0: अभी इतने खाना पिए ला का करे कर विधवा जैसे बहुत वो कौन जीरे कर
1: रहा
0: है बेसे करके फेंक देवे ला
1: सिमुआ में तब जब एक जना दो जना तीन जना तो जब से हमने के लालवा तनी कुन सेविया हो गल बा और आजकल कुन जीवा लामोतास हो गल बा आज के सब कोई वीडियो बनाए लगल फोटो खींचे लगल तो जहाँ कोई कुनो कूड़ा कचरा फेंकला कोई के देखला तो कुछ कर लन सा फोटो निकाल के डाल के डाल देवे लन सा सोशल मीडिया पे अब तो प्रॉब्लम हो जाए। और ई जरूरी है आज कोई के देखला कि खा पी के कोनो गाड़ी से कुछ फेंका था तो फोटो निकाले के जरूरी है और चला जनाए के ला पुलिस के कि हम देख ले रही है लुटवार है
0: सेतु तोर वासे कब ऐसे नो गुचीज करेला तो दिनों से करे के चला ओके
1: बिल्कुल बिल्कुल घर के जितना कूड़ा कचरा उठा के जाके एगो बंजर जमीन बा जाके वहां पर फेंक के चला वेलन सा ऐसा नहीं कि जरेबो करेलन सा फेंक के चला वेलन सा जराई के भी धवानी है
0: नहीं
1: लेकिन फेंक के चला वेलन जा ये बहुत बहुत गलत बात करे लन जाता। चलो उम्मीद करते हैं कि आज के दिन हमने के जितना कोई भी अभी सुनत हुआ जा जितना संस्था लोग हवन जा आज के दिन जितना माँ बाप लोग सुनत हुआ जा हमने के अपन लैका लोग के एगो ऐसा मानियर तो जरूर सिखैया कि गाड़ी से बाहर कुछ फेंकिया जाने। और वैसे छोटा रहन जा लैका लोग के जो लैका के सिखेबा वो बचपन से वही सीखी देखो साकू रख दिया अपन अपन गाड़ी में तो जैसे जनला कि कुछ खैला पीला सकवा में डाल के बंद कर दिया घरे जाके अपन कूड़ेदान में डाल दिया एक ले और अच्छा कुंज सकेला रहे। आज सब कोई ऐसा ही भी सोची तो हमने के जो देश बा हमेशा साफ और सुथरा रही। तो चला एक साथ अभी हमके कार्यक्रम जो बा आज की चर्चा है कि हमने बढ़ाओ अब जा और आज के हमने के जो विषय रख ले जा राइट ऑफ वे श्रीमय दु सोची।
0: हाँ जी जैसे हमने बोले सब फ्रांसे में धुआ दे पासाज एगो चीज है तुरा बोली तुम तो जाने ला एगो बड़ा लो तेल तुर पेतेर हुआ ओकर सात लिताज के ऊपर हुआ में तू रहे ला अले ओकर धुआ दे सोची कैसे तू सोची हो ऊपर लेता जुआ से कब मजे है लुतिलुआ में हुआ रहेला अरे लुतिल नहीं तो घर भी बा कुन आदमी के तो चार पांच गो है लेताज के है बना दे लो अंसन तो कर समय दे सोची हम मॉरिशस में भूला जा है ओकर है ओकर आई के चलो ओकर लेस्कालिये में लेस्कालिये से वो निकलेला कुमा जे सीमा से डाला ओकर घर तक ऊपर लेताज तक और लेताज से नीचे ओके आई के चला तो आवेला लेस्कालिये में लिफ्ट नहीं कुमा जे सिबो जो नहीं लिफ्ट की बात नहीं करते सर तो एगो मानिए दे समय दे सोची वो भी है एगो लेस्कालिये कैसे ऊपर से आई नीचे आर के कुमार जाए के उ सिमुआ से भी करब या लेस्कालिये से भी करब एक नम राइट अवे धोआ दे पसास में हमने वो नहीं देखब साज हमने याद देखब सर
1: वो देख लेली सब तो समझा देली सर यानी कि आज तो हर घर अभी लेताज में रहेला नीचे एगो दूसर पुपिये ते बा जो फर्स्ट फ्लोर बा ओकर में दूसर जना के घर बा ओकर ओकर ह ऊपर में एक जना और कैसे अभी अपौतमा ह
0: इसी बोले को अपौतमा
1: रहेला देखो अपौतमा में कई गो दो गो तीन गो लेताज तो रहबे करेला तो मान लो ऊपर में दू जाना बा ओकर देजम लेताज में दू जाना बा नीचे में दू जाना रहता तो कैसे ऊपर झाला जाए के आवत हुआ तोहर कौन धुआ बा तोहर लिस्कालिये कैसे कौन सेवी करेला हो लिस्कालिये माके करके कर धुआ है ये सब चीज चाहला जाने के। हाँ और अभी हमने बतियावत है जा सीमा के बारे में जैसे कि लुत्तो लेके जाइब अब
0: जरूर
1: जैसे सीमा जो सेवी करेला
0: देखा नहीं तोहर काम मजा है
1: बहुत जल्दी
0: तो हमने मॉरिशस में एगो दुआ दे पसाज एगो तेह

0: नहीं मैं देखिए हाँ, हाँ, जमीन हाँ. में बोला था उस समय वहाँ ये करे हमने बोला सर स्वयं दे सोची हर एगो है में माटी में जहाँ बा या वो घर बा तो चाहे ला एगो सीमा निकाले के एगो सीमा वही तो वो सीमा है जैसे आदमी बोला था वैसे हुए ला आली विनी करेला तो हमने के मॉरिशस में दुआ दे पासाज ये जैसे हमने बोला सर एंटेरा जो अंकलावे बा देखते हैं सर जो उनके सीमा नहीं बा है ये देखब सामने कैसे होवेला सीमा कैसे मिले के चला अरे वो घर में कबूत नहीं बा सीमा एगो घर बीच एगो तेहे में बनल बा हुआ जाने लग बान कोई कब मौसले कर देवला एगो है जमीन तभी तो घर और कुछ नहीं बा हुआ सीमो नहीं बा एक फसी का है उतर कुमा जब कब हुआ ओपन कहीं घर बना हुआ था हाँ जो मुसलमान बोट कर ले हो या फिर वे करे के वो दूसर बात नहीं बातें करते हैं सबने हमने बोलते हैं वो सीमा सिबुजो बीच में तू पहला आदमी जाके बना हुआ था
1: हाँ
0: तो ये हमने के कुछ सिविल मोशियाँ रियाजी करेला दुआ दे पसाज गायत अवे बोले ला हर फोप ये ते जो उनके आँख से नहीं बा एगो मजे है दुआ है पब्लिक में जैसे हमने बोला वा पब्लिक में सीमा पब्लिक में वो सकी मांगे ओ एगो दुआ दे पसाज उकर वाजे से अरे तो हर एगो कुमा जे है बा एगो घर बा हुआ बनाई ले वो अब तोरा सीमा नहीं बा आँख से नहीं बा मेन रोड में मिले के तो कैसे जाइब हुआ चाहे ना वो सीमा
1: हाँ.
0: कानून हमी के कुछ सिविल बोले ला कि सगब मांगे करे तुहर वाजे के जमीन हुआ बस कि एक बार कोई मिले ला ओके अभी तारे देखब सर को आदमी के जब बनैले रहन सन घर हुआ कब सीमा बनैले सन या पता जूस हो रहा तो हो रहा एगो सीमा छौ पिए के कोनो के तीन पिए के शहर में बा उन डिफिसिल रहे कभी एगो आदमी गुजर जाए तो कैसे कुमा जो कंधा में वो आदमिया के लेके चलिए वो तीन पिए सीमा में कैसे लुतो लेके चली ऊ में कैसे वान ले जाए बड़का कामी हो गल बा अब कैसे जाए मैं बा आज तक हमने के देश में कि तीने पिए में हुआ बा मैं अब कुमा जो चल गल अब मिनिमम देवेलन सन एगो छौ पिए तो देखे ला जब एगो आदमी के ओकर मजे जमीन में ओकर आँख से नहीं बा दुआ पब्लिक में जाए के सीमा पब्लिक ओकर घर से छोड़ के दुआ भाई सीमे पब्लिक में जाए के तो उस की मांग करे एगो लाकुर से एगो केस नोबाल मांग करे ओकर वासे के एगो बूट ज्यादा जमीन वहाँ दे के अभी से तरेलवा बोल ई जमीन वहाँ जब कब आवेला हमने देखेला एगो आदमी जो उनके घर भीतरे बा उस जमीनवा में आर सीमा नहीं बा तो कैसे एक्सप्लोआते करी ओकर घर हुआ कैसे वो आके आले विनी सकी करे बस की तो ओकर सीमा स्वा इनसफिशिएंट इनसफिशिएंट बा सीमा बा में बड़ी छोटा बा अभी तारे देखब सर बहुत सा फोप ये थे जो बा वो मांगेला ओकर वाजन से एगो दुआ दे दुआ दे जैसे सीमा के समय दे सोची एगो दुआ दे सीमा पस की काहे ओकर जमीनवा जहाँ रहेला जहाँ सीमा बनल बा जनेला बहुत सा पौतेर भी करेला तारेल देखब सबको पता झुबेला उ सीमा बनावेला तो कैसे करेला तो देखे ला भाई भाई बहन लोग रहेला एक माँ बाप छोड़ के चल गल बा जमीनवा और पताज करियन सन तो देखब का होला मटिया छोटा बा तो नहीं सके ना बारह पिए के एगो सीमा दे तो छोटा सीमा करेला तब देखेलन सन कब घर बना लिया कितना मुश्किल होवेला अली जैसे तरेलुआ अभी बोली सन जब घर हुआ सीमुआ से तजिया भर बड़ी छोटा बा तो मुश्किल हो जाला अली तुहर एगो लुतु बा हमारे गो लुतु बा एगो छौ पिए के छोड़ दो चार पिए के सीमा में कैसे तू ही उही जहाँ अपन घर बनैले और हमार घर हुआ दोनों भीरे ऐसा वासे ऐसा अब कैसे हमने ख्वाजे हो बस की सीमा तो सीबुजो चार पिए के बा
1: हाँ।
0: चार पिए में तो दू गो लुतो नहीं सकी
1: हाँ हाँ हाँ।
0: दू गो लुतोआ के छोड़ दो एगो पांच मिनट के सोचा एगो कामियो कामियों कैसे कुमा जाए ऊ में आई अब तू सकब एगो कुएं में आतान करी हम यहाँ आतान करी कितना दूर और कैसे जाना बीच सीमा में चल अले हुआ बस हम क्या रहते कर देखे चाहे हमारे लोग
1: तो
0: हुआ
1: अब तो या तो फिर बोली हमने हम प्रेस हैं तो ऑये दाल
0: हाँ अब किसने अर्जी लंबा दूर जगह जाए कितना कितना सकल जाए वो आदमी
1: कब वाजे तनी मूवी कर देवे लंचा
0: बहुत कोई
1: नहीं कि लंबा सीमा करके गई ला अब तोरा रगल बा सौ में तोहर घर में जाए तो वो बता नहीं ऑये दाल हमने निकला कुछ सब करे
0: एगो चीज है कब दू गो है कुमार भी देखब सब को सोल्यूशन है मैं अभी पहला बोल दिया सर प्रॉब्लम हुआ तो देखब यहाँ दू गो लुतुस या दू गो कामियो यहाँ कुमार जे बड़ी नहीं सकता उसी मुँह से मैं सोचिया में कुमार जे है कुमार जे था वैसे करे आले भी नहीं करे अब दूसरा चीज कभी देखब एगो सीमा छोटा रहला जैसे मैं बोल सा चार पीएसी पा छो पी के एक्सप्लोटेशन करे के उस सीमा सर्वी करे के एगो

0: आदमी के जाए के ओकर जमीन में सीपोसो एगो एग्जाम एजिस्ट्रियल करे को जता बड़का लिजिन बनाई को तब तो जमीन बड़ा बा सके तो 1500-2000 हई बीघा के एगो जमीन बा तो उ कैसे उ चाहे लो के रास्ता
1: ताकि कामियों जाए कर कामियों आले बिना
0: दिन रात कर हां और दूसरा कोनो तो कम एजिस्ट्रियल नहीं करेला तो कमर्शियल करेला कोनो बुलियारी उतना अमर तो इतना जमीन मां बाप छोड़ दे भाई या किन ले भाई या कुछ होई ते वो कमर्शियल बनाई को जाता जामा गाजे बनावता तो कैसे वो आदमी में उ सिमुआ में उ सकी आई उ राइट ऑफ वे उसे में दे सोचिया तो इनसफिशिएंट बा तो उ का करी छोड़ दे सिमुआ ऐसे अपन जमीन छोड़ दे कुछ नहीं करी और दूसरा तमने से बोला एग्रीकोल हमेशा एक बात आदमी मका करेला कान प्लांटेला लेगिम प्लांटेला वो ओकर जमीनवा में तो कर सिमुआ चाहे ला राइट ऑफ वे आसे कुमजी को बड़ा लॉज कुमाजे ताकि सकी उससे भी करे एक्सप्लोटे करे ओकर जमीनवा के हाँ। सकी प्लांटे करे नहीं सकी ना ओकर वासन के जो प्लांटे वा लेगी ओकर में कमियों पासे करके जाएगे तो नहीं इमें कोरेक नहीं है। आर अब सबसे बड़ा चीज आजकल जनबे करे लो आदमी का करता है एगो घर मज या मुसलमान हो या घर हो अपने को जमीन खरीद ले लेबा अब वो कंस्ट्रक्शन करे करता छोटा छोटा घर या बड़ा बड़ा घर बना के बेचा था
1: हाँ।
0: अरे तो सिमुआ नहीं रही सिमुआ छोटा रही
1: कैसे जाए
0: कैसे जाए कैसे वो कम डेवलप करी उस जमीन वहाँ के
1: हो तो चाहे जब घर भी बनेबा तो कामियों जाला ओकर फेराई जाला ओकर ब्लॉक जाला ओकर सब बड़ा बड़ा कामियों जाला
0: जरूर
1: तो कैसे जाए कमी वहाँ हाँ,
0: जी कुमार जब देखो सर के कुछ सिविल का बोले ला यहाँ हाँ तभी प्रॉब्लम हुआ था हम देखा था सर तो आलो इस सब के हमने देखी ला सर एमोड बहुत एनवीनियंट बा सर्वी करे के उस सिमुआ जब उस सर्वी करे के सिमुआ तो बहुत सा आदमी जो किन ले बा फास्ट करेला बड़का बड़का प्रॉब्लम के तो हर प्रॉब्लम के ते बा एगो सीमा न एगो डिफिकल्टी के बा तो ही हमने देखिला सर तो आदमी का बोलेला हमार कानून देखिला कौन चीज कानून बोलेला ऐसा ऐसा काम है कब हम आवेला वो दुआ दे पसाजुआ सिपोजों इनसफिशिएंट बा आली जब एगो कुमाजे जमीन इनसफिशिएंट बा पासे हुई तो वो आदमी के देखे चाहेला पहला एगो केस करे के चाहेला एगो केस करी लाकूर में एगो मांग करी लाकू के कि देख हाँ एगो सीमा बा मैं एगो सीमा के ओकर लॉज है इनसफिशिएंट बा सिपोजों दू गो लोटो के हई चले के तो मांग करता नॉर्मल में एगो प्लेंथ में डाले लनसन मांग करता लाकूर के कि उस सीमा ओके गांजी कराई के सिपोजों सिमुआ छः पी हो सिपोजों आठ पिए हुई तो आठ पिए हुआ कब करी तो कर वाजें के जमीन हुआ में न ढुक जाए बस ये सिमुआ तो लंबा बा तो दोनों बगल तब वाजें बा सिपोजों वो आदमी पाछे बा तो हियाँ ढुक जाए ना तो कानून बोलेला एगो सीमा जब इनसफिशिएंट बा छोटा बा सेरे बा नहीं सकी वो अकोमोडे करे एगो बड़का कामियों के या ट्राफिक चले के तो सकी लाखों से मांग करे ओकर वाजें वहाँ के ए तोर जमीन एक बगल दे हमके दू पिए सिपा तीन पिए तोर जमीन दे हमके तो वाजन हुआ उतना ही खुशी रही ना
1: के खुशी रहेगी हम तो दीजा हमर हमर अच्छा आदमी के पांच पेस के माटी बा कैसनो कैसने करके घर बनेला
0: हाँ?
1: अब वाजे आके बोली वाजे के जमीन बा बड़ा और वो के बोली कि हमके और जमीन दे भीतरे जाए की तब
0: मॉरिशस में कोनो भाई बहन के नहीं देख बा बोली हम तुके जाने ले दू पिए दे ला हमर जमीनवा में आले ढुक के तू सिमुआ बनाई कॉन्ट्रेयर कॉन्ट्रेयर हमर एक्सपीरियंस है वो जोन के ज्यादा हो बा जमीन वो तोहर जमीनवा में ढुक जाई एनक्रोचमेंट जैसे हमने बोली ला सा तोहर में पिएते कर दे तोहर मत सिमुआ सेरे कर दे एक भानके सावेला आदमी के घर कुमा जब पाछे बा ओके हो सीमा में बा आदमी का करेला हई वाजें वान डाल दे लुत्तो डाल दे तोहरा बारे कर दे सेरे कर दे सिमुआ नहीं सकब तोहर घर बगल जाए के चाहे ओकर द्वार हर बखर ठुक ठुकाई के ए भैया तोर दोर हई कुमा जब कमी वहाँ से पालू तो वहाँ सकबे निकाल दे बस हम नहीं सकल जाते हैं पाछे बस ये बारे करता इस सिमुआ ये तीन कार वाजें वहाँ कहाँ तोहरा कुमा जे एक्सेप्टे हुई उस जमीन वहाँ ओकर बगल के दे के मिसलमा एगो केस तोहरा करे के चाहला लाखों में लाखों से मांग करे के चाहेला कि देख हौ सिमुआ जोन बा सिबोजों चार पिए के बा हमके मांगत नहीं कि छः पिए कर दसी पर आठ पिए ये ओकर प्लेंत में मांगेला ओकर आबो का वहाँ लड़ाई करी तो हियाँ सगब बोले ओके मांगत हुआ मैं तोहरा चाहेला उही

0: लें तो में डाले के वही केसवा में हाँ हम डिस्पोजे हैं पेये करी के गुप्पा एगो पैसा बस की हम दू पीवा के जो है हम है मैं सर्वी करे को जाता हूँ हाँ हम के कुमा जे ओ हम तो कोई तो नहीं दे ना काडो तो वो बोली कि देखा हम एक्सेप्टे हैं उठा से जो सीमा करता हम एक्सेप्टे हैं पैसा एगो पेये करे के जो ओकर वाले बा सिबुजो दू पिए के कितना लंबा के होई उतना एगो वाले पसी अपंतर के काम ही है आके एगो अपंतर बोली कि इतना पैसा रहे यहाँ वो सब नहीं चाहिए एगो डाको गिर जयसन कि देख हाँ तुके दे ला सगबे सर्वी करे हमर है हमर जमीनवा में उसीमुआ आगाजी करे के तब फोडे एगो पैसा पेये करे तब देखी उ लोग कितना पैसा पेये करे कि कितना नहीं अब बोले लन सन जे सीमुआ का बड़ाओ है बड़ा करत हो ओकर त्राजे ओकर कैसे आए के ओकर त्राजे सबसे जो कूट बा कूट
1: छोटा
0: जो छोटा बा ओ के मांग करे कि नहीं कि कुमा जे बीत अबाउ द बुश होने बगल से आओ लहिया छोड़ के होने आके तब यहाँ आओ बोले नहीं एगो सीमा चाहेला त्रासे करे के जोन कुमा जे समय देसी हाँ जोन भीरी बा शॉर्टकट जैसे
1: यानी कि जैसे एगो घर बा घरवा के पीछे आजे एगो दूसर घर बा तो ओके जरूरी नहीं बा कि उ जहाँ दो मिनट एक मिनट में निकली हुआ ओके परी पांच मिनट लेके निकले के
0: हाँ ये कानून बोले नहीं कानून बोले ना हाँ ओके अभी हमने देखा सो कर करूँगा ओके मिल जाए से बोझ वाजवा के मैं चाहे ले गो त्रासे करके गुस्से में जोन सबसे कूद बा अब हुआ कब कूदवा रही जोन दे सीमा जोन सीमा निकली वह पब्लिक में वह पब्लिक में नहीं कि कुमार लंबा करके आके अब होने दूर से निकाल जोन सीमा सबसे कुछ बा बस कि हाँ रहो अंकलावे बा ना कुमार जो कोई तन हुआ नहीं बा सीमा दूसरा तो ऐसा नहीं वो सीमा द कि जाके वह पब्लिक में जोन सीमा पब्लिक के हुआ बा ओकर शॉर्टकट में हुआ जाइब नहीं कि बीच अब द बुश करे के लंबा तब हुआ जाए के सीमा जोन थ्रासे करी उस सीमा जोन वह पब्लिक में जाए जहाँ सीमा में जाए अब देखिए ना सर एगो चीज बड़ी इम्पोर्टेंट है मैं चाहेला उस सीमा जोन बा ओकर दुमाज बड़ी कम करे के चाहेला नहीं कि ऐसा एगो चीज कर ओकर त्रासे जोन फिक्से बा जोन बा ओकर लंदवा भरे जो सब नहीं बा ओकर वाजें के जहाँ उ सीमा दे ले बा वो नहीं कि वाले एगो बोली के पांच गो घर बा अब नहीं बोलबा कि कुमा जे है के उ पांचो घर हुआ लाखोज खुद बा उ पांचो घर हुआ तुर लाखोज दुपिए सीमा के मतलब ईसन में कानून देखी वैसे मैं कानून ही यहाँ देखा था कि ई आदमिया के घर बा यहाँ को जमीन बा अंकलावे बा बन बा चारो बगल से एगो सीमा दे के चला मैं सीमा निकाले के चला हिया जो छोट सबसे छोटा सीमा नहीं कि बड़ा कुमा जो लंबा दूर जाए के
1: पर दूसरा गांव से निकल के निकल जाए के
0: हाँ हाँ ये भी हाँ तो ये कुमा जो कानून मना करे हमने के कुछ सिविल बा अचिक सिस्सा का तो वेंतवा हमने के कुछ सिविल मोहिश है तो वो बोले ला ये कैसे चाहेला सीमा धासे करे के कैसे एगो सीमा निकाले के ताकि वो आदमिया ओकर बगल दुमाज नहीं हुई अभी देख ला सिबुजो हिया चार गो घर बा अब शोट करे के ओके चाला सब चारों तुरे के घर हुआ बस कि यहाँ शोट के यहाँ तो अलाउ पब्लिक में आई ना तो सबकी को मजा एगो एगो एगो थोड़ा सा डिविएशन दिव्याशो करे के उस करे के आन के सीमा हुआ नहीं नहीं कि होने दूर से लेके आन के हिया बनाई के देख ला ये बड़ी एपोत है अब हम नहीं आई ला सर एगो सीमा रहल तोहर सीमा तोहर है कोतरा में तोहर है अब हमके मन बा उस सीमा से रवि करे के पैसा उस सब के भूल जा भी दुआ उस सब नहीं मांगे खोजत है मैं उस सीमा जे हम 30 बरिस से सेर्वी कर ले हैं आले भी नहीं तू कभी ऑब्जेक्टे नहीं कर ले हुआ कोई नहीं ऑब्जेक्टे कर ले बा और उही सीमा हम सेर्वी करते हैं तो ऊ हमें सीमा में धांतं पेयो दुआ में जिस सकब बताई कानून के एक नाम प्रिस्क्रिप्शन तो हम सकब उस सीमा सेर्वी करे और न बिना तोरा पैसा दे के ये देख रहा ये प्रिस्क्रिप्शन है बस कि बोले ला एगो आदमी काल एगो बोली के एगो जमीन बा अब ओके मन बा प्रिस्क्रिय करे के उमठिया कोई तो नहीं बापू पीते कोई तो नहीं देख ले बा अरे कोई नहीं अलबा नहीं देखा था डेवलपे करता कोई कुछ नहीं कभी ऐबे नहीं कर ले बा हुआ उस जमीन हुआ में शायद पोपे तो रहेगो तो हो ही के चाह या दूसर देश में चल गल बा तो देखो।

0: अदमिया 30 बरिस से ओके कुमाजे ओकी पे कर ले बा कॉन्टिन्यूअलमा ओ अदमिया
1: 30 बरिस यानी कि 30 बरिस से ओ आज ओ कम में काम कर ले बा जमीनवा के देख ले बा

0: ou ce qui comment dire ego ah avait avait des prescriptions des semaines voilà ça ou mais il bat comme ça mais prescrire कर दे तो prescrire कर दे तो propriété बन जाए का propriété बन जाए तो सिमो कर हो जाए दिखला हिया तारे लो दिखली सर जहां वाजें वा के चाहे लगो दुमाज दे के हिया आवत है सर एगो प्रिस्क्रिप्शन करे के कि ऊ सर्वी कर ले है सर उस है मजे जमीन वा तो हमने 30 बरिस के बाद हमने आइला सर एगो प्रोपिटेर बन जाइला सर तो ई बड़ी एगो चीज इंपोर्टेंट है खाली दूसरा इस सीमा वा जो ट्रासे हो गल बा आई के मेन रोड में सीमा पब्लिक में बस एक बार घर नहीं दिखला भाई भीतरे बा मेन रोड है बगल बा अब मेन रोड वा हुआ जाए के आए के हाँ तो ओके चाहे ला एगो आने के एगो सीमा जो मेन रोड वा में आवेला अब एगो बोली के कब सकब उ सीमा जो तू सर्वी कर ले हुआ जो तोहर वाजें वा तोहरा दिले बा मजा सीमा वा सर्वी करे के या किन ले हुआ अब काल भीरी गुवेनमा जमीन वा खरीद ला अभी तो नहीं देख लो मजा है गवर्नमेंट है कंपलसरी एक्विजिशन जिसे हमने बोला सर खरेला एक पास के सीमा बनाई के अभी एगो बोली के देख बा केरसिप से जाइब गांव बासें तक उमा है तो देख बस एगो बड़का सीमा हर हर है में बन बन बन गल बा तो उ हाउ सीमा जोन उ सर्वी करे आदमिया तो अभी यह दुआ बेदे सीमा पब्लिक सबके दुआ आकर्षित जहाँ ओकर घर से ओकर जमीन से आके आवेला ओकर है मेन रोड तक सबकी मांग करे कि उस सीमा ओकर वाजें हुआ है सबकी मांग करे कि हाउ सीमा जहाँ आदमी सर्वी करे प्रिस्क्रिप्शन से 30 बरिस तक या बेचले रखल कि उस जमीन ओकर वाजें से अब सुप्रीमे करे के नहीं सर्वी करे के बस की काहे गवर्नमेंट एगो सीमा पब्लिक खोल देलक बोले भैया जा सीमा पब्लिक सर्वी कर का हमार सीमा आके अब सर्वी कर हाँ डाको तू किनले रहला डाको भी अब हम आप ऐसे करत हई पसी काहे उ ओके कुमार जैसे बसों घर बना हुआ था या कुछ बा इनकन्वीनियंट हुई उस सीमा जो उ बकतवा दे ले रहा तो हिया जैसे एगो सीमे पब्लिक मिलल तो ओके बोली कोरे
1: मैम पे ये कर दे रे बा
0: हाँ मैम पे ये कर दे ले बा बस की बोला था ना कि सब कोई के चाहना सीमा पब्लिक करे के गवर्नमेंट एक बार भाई लोग के देख बन वेल फ्रांस में का कर ले रहा है वही अभी बहुत तरी लो जमीन उ लोग के रहल तो सबके पापी भेल लग जोन जोन जहाँ गुवेन म करलक कि बोले हमने निकालत ऐसे वो सीमा कभी को सीमा निकालब सब कुलताई
1: कर सब लग के जमीन के बीच में परी गुजरेंगे
0: हाँ तो बीच के सीमा के कंपलसरी एक्विजिशन एकरे नाम है तो कि तब पे करेला पैसा का उमे जितना बुतवा ले मिसेल म बुतवा ले जोन बुत सीमोए में ले होता तो सिपोसो जब हिया मजा उ सीमा नई दले रहल दुआ दे है मजे पब्लिक रोड नहीं हो रहल तो सब उ आदमी आके मुश्किल होवे जातल दूसर जगह से पासे होई के ओकर जमीनवा में जाए के मैं अब तक खुल गल सीमुआ तो यहाँ तक गवर्नमेंट पे करेला उ लोग के नहीं वो कॉन्ट्रे ऑन लॉन्वेयर है वो वॉजवान के पैसा नहीं दे के चाहला यहाँ तक गवर्नमेंट तोरा पैसा दे कंपलसरी एक्विजिशन में हर मॉरिशस के हमने के लिखल कानून है कि नहीं सकेला आदमी के जमीन ले बिना ओके कुछ न कुछ पैसा पे करे के तो यहाँ ओके एगो पैसा देलक एगो सीमा के मजा खोललक तो अब जहाँ वह पब्लिक हो कानून बोलेला अब वही सीमा तोरा सर्वी करे के चला नहीं कि दूसर आदमी के जमीन में ढुक या दूसर आदमी के कुमा जे जा मांग करे या किन या कुमा जे प्रिस्क्रिप्शन करे
1: सीमा निकाल देले वन तोर खातिर ना भवे सीमा सेवा करे
0: आदमी नहीं बोले ला अरे तो गवर्नमेंट नहीं देखले है सीमा खोल देला अब वो सर्वी कर ऐसे होला तो यहाँ देख ला वो बोले ला वो एगो नोवेल खुद कब कुमा जे खुलल तो तू तोरा चाहेला उ करे के मैं हाउ जोन रहल पहला शुरू प्रिस्क्रिप्शन के या कुमा जे मांग कर ले रहल या उ सीमा इनसफिशिएंट रहल दू गो लो तो नहीं सके पासे करे या कामियों तो अब उ सके सुप्रीमे करे हाउ एक्सेस हुआ बस ये बोली जो सर्वी करी हिया सीमे कुमा है
1: और बोली नहीं हम हुआ नहीं सेवी करब हम ही सेवी करब पे कर ले हम ही सेवी करब
0: हाँ नहीं देखो किस काली उ आदमिया डाली तो बोली ना वो पब्लिक और हमने के कानून तो कानून लिखल है तो बोली ना हमने के भाई बा हमने के है अचिक 685 आ 685 में लिखल बा तोरा चाहे हाउ सीमा चले के जो गवर्नमेंट वा है डाले बा उ पब्लिक के है वो जा सर्वी करे यहाँ तक कानून ओकर हाथ तो खुशी रहे नहीं खुशी जैसे बोल सर ओकर हाथ अतासे होल बा तो चाहे ला ओके जैसे कानून होल बा उसे है करे के ओके दे के तो हो आदमिया के ओके देखब नहीं मिलेला तो हिया हमने के एगो एगो चीज है कब एगो नहीं चलेला एगो सीमा तो सहा सकब एगो कुमा जो आदमी है सीमा के सिपुई में कर दे। लक्ष्मी बोली ना ये जाने ली पहले ये गुस्सी मार हल दो, तो अब तो

0: सीमा नहीं है
1: यानी कि अब सुप्रीमे होगल बा अब हो सीमा नहीं सक बस अभी करे कहे कि तोहर खातिर सरकार एगो नया सीमा बना दिले बा जोन तोहर तोहरा किस वजह एक्सेस सब करे तोहर लिए करीब बा अच्छा बा तो हाउ सीमा जोन बा उ वाजेवा जोन बा बोली देख अब हमार सीमा सेवर कर बंद कर तो बोली नहीं तो हम तो पे करे रही तो कि हम तो ये सीमा सेवर करे बात कुछ हुई
0: हाँ मिसल में एक बार जगह बा कि कहाँ उ लोग बोले लंसन देख हम तोरे दे ले रही पैसा कब पहला शुरू कि उस सीमा के एगो पैसा दिले रहे तब हमके कुमा जब घुमाओ ये हुए ला मांगे लंसन बस बोले ऊ बकतवा तरल अब तो नहीं सर्वी कर बे मिसल माँ हमारे से गो पैसा कुमा जा है देले रले तो सकेला एगो आको हुई थे दोनों में गिरे तो हिया सकी हाँ बुसे करे हाउ बुगवा
1: अरे बीस सकेला हो कि सीमा जब बन गल बा पैसा पे हो गल बा कि तो पैसा मिल गल बा पैसा सेवी कर ले ले बा अब वाजा अच्छा बा निमन बा तब का चाहला जाके कुछ बोले के सीमा सीमा हा सेवी करे के बात कर नहीं सेवी कर बता नहीं कर तुहरा तो पैसा मिल गल बा तो फिर को एक में संतुष्ट हो जाला
0: हाँ मैं एक बार जगह देखब अभी के लिए हमके हे देखब हई मैं हई लागू छे बगल एक बार जमीन बा कब जमीन बा इसने जमीन वहाँ छूटल बा मैं देखब सीता सीमा छोटा छोटा बा भी मोसले होल बा कहूँ कहूँ तो नहीं होल बा तो देखब बहुत सा सीमा बहु एगो कुमा जे एगो डिफिसिल बा कबो के देखब कि अरे कैसे ई सकल जाए एगो दूगो लुतो जाए के और हम तो सबको आजकल खोजत हई सीमा हई बड़का सीमा में देख कब जैब हई शहर हई से बोझ कार्बोन से उ तो हई में हमने के समय हई बा अरे अभी तो चार गो हई बगल दूगो मोहते दूगो देशान अनमन कुमा जे हई में हई दूसर देश नियर में बड़ा बड़ा सीमा करते का हमने के पुपीला सोन लुतो है ने अब तो ज्यादा कुमा जे होता ना ऐसा छोटा छोटा सीमा कभी देखब गुवेन में अंगाजी करते जाता कि कुमा जे हई सकियन सन ट्रैफिक जाए
1: एगो एगो सवाल बा मानना कि एक जना की जमीन बा ओकर जमीन जो बा सीमा के बोर में बा तो पीछे में और जमीन बा ना तो कुछ करलन उ बागाज डाल देलन चारों बगल अपन घर बना लेलन तो पीछे में कोई के जमीन बा अब उस जमीनवा में कैसे कोई सकी एगो अब तक सबके तो अपन बागाज बना ले बा पीछे के जमीन जमीन रहल वो तो कोई जंगल उ रहल कोई के नहीं पता रहल बाद में पता चलल ई जमीन कोई के हा तब अब तक बहुत पहले से कैसे आगे के घर बनावल जानत हो ना अब तक बागाज सब कुछ होगा पीछे में जमीन बा अब तीन गो वाजे होवन जा जो ऐसे अलाइन होवन जा तीनों ऐसे होवन सा जमीन जो बा पीछे में बा अब उनकरा सीमा चाहेला तीन गो या चार गो घर बा तो कहीं कोई ना कोई के तो परी अपन मिगाई तुरे के
0: एगो एगो खूब ऐसा बड़ी जोली है है वो एग्जाम्पल दिला जाने ना मॉरिशस में बाई से जब एगो मुसलमान हुए ला या एगो घर बनेला या भाई बहन लोग पताज करता है तो का करेला भाई बहनों में तो कभी ओके हो जाए आमी आपसे सकबक मजे कुछ ना कुछ बनाई मैं कभी कोनो भाई बहन में बनेला नहीं तो बड़ी डिफिसिल कर देवलन सन तो देखब उस सीमा मेन रोडवा में से पहला आदमिया जैसे बोला एगो बाज ब्लॉक डाल दे ले बा तो पाछे वाला के अक्से नहीं मिलता कुमा जे सीमा बाओ सठ के बा सीमा में सीमा छोटा बा तो बोली देख जाने का कर तू है बहज हुआ तू रे तो के तुरे के चाहेला बस हमने के नहीं
1: मान ना जमीनवा जोन बा वहाँ कोई नहीं देखता हाँ। कोई कोई नहीं जाना था एगो जंगल जंगल बा वो जमीनवा जोन बा कोई के बा और कहूँ दूसर पे ही चल गल बा हाँ। कोई नहीं बा हाँ। ये लोग अपन जमीन मिलल लोग अपन घर बना के सब कुछ कर लेलन हाँ। अब 30-40 साल के बाद ओकर लड़का लोग आवा था बताई हमने के जमीन हमने के अब तो जमीनवा के कैसे तब तक बहास चारों बगल हो गल बा कैसे जी आंसर भितरे
0: हाँ मैं सिल्मा कब ऐसा एगो केस होएला तो उस सखी को केस डाले लाकुर में कि ओकर वाजे हुआ या भाई हुआ चाचा हो या कोई भी हो बने ले बा ओकर जमीन में नहीं का कर ले बा ओकर जमीन हुआ से बुझो आ बे 20 पिये रहल अब तो देखो 25 पिये में डाल दे ले बा से बुझो ई एक दूसरा जब बगजुआ डाल दे लो तब ले ओकर जमीन हुआ के ओकर है में लंबाई में कोरेक बा से बुझो ओकर प्लान बा हर एगो पोतरा कभी गोद बनावे लगो आदमी तो ओकर प्लानवा में बोल देले बा कितना ओकर जिमांसियो बा जे उ करता दल्ले बा बगजुआ दापरे ओकर प्लान के जिमांसियो में हाउ लोग का में कितना आई कुछ नहीं सकी करे का जे नहीं उतूरे खो जाता नहीं ओके मन हुई दे के जाने ला कितना आदमी बा मॉरिशस में पहला हाला घरवा आदमिया उ का करता ओकर हियाँ इलेक्ट्रिसिटी कुआं बा पानी बा बस उ पानी आर इलेक्ट्रिसिटी वाके कुमा जे

0: ओकर तो प्रॉब्लम नहीं बा, मैं अब वो आदमिया जोन पाछे बा ओकर नहीं बा सीमा कोलोन डाले के या पानी ले जाई के ओकर न ऊपर से घरवा तो नहीं सकी ना ओकर घरवा ले जाई। अब एकर कौन समस्या है कैसे ऊ कुमा जे अब ओके पानी मिली या ओके है है इलेक्ट्रिसिटी मिली तो हिया मांग करेलन सन कि देखा ऐतेल है आदमिया के चाहला या एगो कोलोन डाले को जाता मैं कोलोनवा जहाँ डालता ओके चाहला आई हो के घरवा में हो के मटिया में डाले के जो नुकर वहाँ से वहाँ में बा बस की सीमा तो शायद छोटा हुई नहीं सकल जाए कोलोन भी हुआ है डाले
1: तो वैसे भी जब लापोताज हुए ला तो देखा आगे के जो लापोताज रहा जिफे हो रहा एगो माटी तो हरा मिलकर दस पेस के माटी इतना मिला दस पेस के इतना हो तो जहाँ ओकर दस पेस फिनी हुए ला हुए पर एगो बाहर डाल दे रहे हो जा ना अभी बोले ला जब घर बनाओ था चारा तरह थ्वापिए छोड़े के इनकरा बोला थ्वापिए छोड़े के ना थ्वापिए थ्वापिए तब बीच में दलबा अब ऐसन में आज ऐसे होल की कोनो के माटी हाउ बगल बा मिराई के पीछे तो थ्वापिए थ्वापिए बात है तुम्हारी बीच के मिराई तुर क्योंकि सीमा देखे ना
0: अली ई बोलत हुआ जैसे एगो एग्जाम्पल दे रहा भाई बहन हवन सन माँ बाप की जमीन रहल अब का कर लन सन पताज पताज करलन सन तो हियाँ उ लोग के कुमा जे चाहेला एगो सीमा चाहेला कुमा जे एक एकर घर कहाँ गिर रहता एगो सीमा बस की नोमाल में जब एगो जमीन के बंटवारा हुएला कुमा जीविशो हुएला तो चाहेला एगो प्लव करे के ओकर प्लवा में अ पतेरुआ बोलेला इस सीमुआ कितना ओकर गांधे बा और ओकर लंबाई कितना बा बोलेला सी बुझो है जिगचे निमे वन आ ओके मिली ओकर प्लॉट निमे वन जैसे दे थवा कात ऐसे तो उलो के बोलेला हिया के कहाँ मिलेला तो ऊ बखत हुआ आवेला एगो कुमा जे समस्या दुआ देश में तो हिये चाहेला कब कुमा जे जीविसे होवेला भाई बहन में तो तुहरा चाहेला तुम डाकू हो के सिमुआ के बड़ा कितना बड़ा करे के ताकि कुमा जे आई बस कि नहीं कि हमार छोटका भैया पाछे बगल बा हम आगे बगल हैं बोले तो बोली हम तो आगे बगल की तो कोई प्रॉब्लम नहीं बा तो सिगुआ होला सिबुझो बहन हुआ तो ओके तो कुमा जैसे बुझो आगे वाला सिमुआ है नहीं ओके मिली तो कैसे वो पाछे बगल सिर भी करे और ये तू पाछे होला नहीं ओके तो कोई प्रॉब्लम हो जाला तो हिये अपेर का करेला ओकर प्लान है कुमा जे कब करेला तो हिया गो सीमा बनावेला जो आक्से मिलेला एक नाम सुमय कुमे समय को मैं मतलब सब जगह सकी सिर भी करे कोनो कहाँ ओकर जमीन मिलल बा वो कुछ बात नहीं सकी सिर भी करे तो देख बा हियाँ आके पहला होला उसी समय को मैं सेवी करेला हियाँ का वेला क पता जो वेला तो सब चीज डाको हो जाला अपेर डाल देवेला अब ई है क पता जो वेला और कभी कभी एगो जमीन बेचाला जमीन बेचाला या पताज हुएला क पताज हुएला तो वंच से तू एगो आदमी के सकेला आगे मिलल बा एगो दूसरा भाई बहन नहीं है एगो दूसरा के मिलल बा तो दूसरा के कब मिलल बा तो ओकरो ना चाहेला एगो सीमा जहाँ के मिले ना तो कैसे वो आई नहीं सकबा ओकरो अंकलावे कर दे कि अंजगे बारी कर दे एक बार तो देखबा कब एगो आदमी ऐसा सीमा करेला जाके करा ओकर क्लोचिया का करेलन सन गेट डाल दे वेलन सन है सिमोय में वो पाछल के आदमिया नहीं सिकला अब गेट डाल दे या गाड़ी तो के लाकले डाल दे वेला अब लाकले डाल दे वेला तो अच्छे बैगो सीखी हुई थी मैं ओके लकलेवा नहीं दे वेला ना लकलेवा वो खाली अपने खातिर रखेला तो इसी बोझो 12 बजे रात के आई थे देखा था वो लाकलेवा तो कहाँ से मजे जाएगी ये भी देखबा कुछ बहुत सा
1: देर कोई कुछ करेला गमला में फुजे प्लांसी होकर के हाउ डाल दे वेलन सन
0: वो सब डाल देवेला हाँ सब हुआ जाए
1: वाजन जो माँ ओकर घर भीतरे बा और के झगड़ा हो गल बा तब के जाए नहीं देवे लंजा
0: हाँ तो ये तो आर एगो जो ये सीमोए के विषय में का तो सीमे दे सोची है
1: एगो समस्या एगो संगतिया के एगो समस्या रहल जहाँ पर परिवार वे हो वंजा उनकर घर भीतरे में बा और सामने पे जब लापौताज हो तो बातचीत नहीं हुएला तो कुछ करेला वो अपन जितना ओकर गमला उ बा जिकर ओकर कूड़ा कचरा बा सब सीमा में ऐसे छोड़ देवेला अब ये जब लुत्तू लेके आए तब कैसे जाए
0: एक खूब बोला एक बार पोफलेयर नहीं है जहाँ अपन घई घरवा मिरेवा के रख लेवा निकाल के तनी आहेने डाल देला हो आदमिया के मुश्किल ये तक मजे पूछ डाल दी फ्लेयर तो फासिल बा वो नहीं समझ से इनकन्वीनियंस हुई आदमिया के पास हुई के मैं सबसे बड़ा चीज जान रहा कितना उसीमुआ जोन बा वो में घर बनावत वन सन कोनो घर गाज डाल देवेला उसीमुआ में कुमा जे है आके आवेला उसी मुँह से बुझो 12 पेयर के रहल 4 पेयर के कुमा जे उमे बिचवा में है देखबा एगो है डाल दे बा एगो है घर बना दे बा तो सकल लाइक मजे तुरे सब।

0: कौन से अच्छी घर उतना बनाईला सिमुआ सिरे कर देला कब वो के एकोवेनिया कर था तो वो किस करके
1: ला कूज जाए अब जन सवाल बाबा के उलाट डीला जा
0: हां
1: ओके अब एको वाजे के बहुत पहले से कर घर बा ओकर एको सीमा बा जन सेवी कर था वाजे वो कोई नहीं बा घर कुछ ने रहल जब देहांत हो गल तला पोताज हो गल तो भाई बहन में जमीनवा जन बा आगे के ई वाजे हां और आगे के जन बा वो दूसर कोई के माटी है तो ई जन हवन सीमा सेवी करत एको सीमा बनाईले हवन ऐसे एको कच्चा सड़क बायगो जोन सेवी करेलन अब जब वाजे लो के माटी मिल गल तो बोलत हो जा कि अब हमने के सीमा में नहीं छो तब हियां पर जोन वाजे बाबा ओकर धुआ हा बोले के कि हम हियां पर 40 बरिस से हैं 40 बरिस से हम हई सीमा सेवी करेला अब जब ए लोग आल बन जा तो हमने के बोलत हो जा कि सीमा नहीं सेवी करके काहे के होवे एक्के गो से मैं सोची बा ओकर लागे तो जोन वाजे बाबा ओके चाहेला उबलीजे हो के उस सीमा देके
0: जरूर पसी काहे तू ही बोल देला सब 30 बरिस वा के कब सर्वे कर लग ये वो पॉमी कोजिश हुआ
1: 30 बरिस नहीं 5 या 10 बरिस भी सेवी कर लग
0: हां पॉ हां तब वो सकी वो जे आ पैसे करता तो सकी वो लाखों मांग करे के हो वजह वा जोन के सिमुआ नहीं बा या वो हौला जोन है बन करे खो जाता सिमुआ के पुशवीव करे के कि देख कैसे हम निकलब अंकलावे एकरे नाम हो तो कैसे हम को मजे हम आज ही हम के बन कर दिले हुए हम के बन कर दे लो कैसे है तक यही से कहती कानून बना कानून कब सुनी के सो पोते गल बात देख ले बा ओकर रूप से बासों सब चीज का देखा था बोले हां एक तो समय दे सोची एकरे ते बात करत
1: है एकरे बात करत है जा ई हर समय दे सोची,
0: सोची हाँ।
1: और एकर में ओकर पूरा अधिकार है कि जोन सिमो सेवी करता और हो सकेला एगो कैसे बोल जाला एगो एगो एगो एगो एगो सकेन जा एगो ऑप्शन खोजे कि देख भाई हमने के तोर घर तोर समय सोची जोन बा ये हमने के माटी के बीच में आवत हम घर नहीं सकते बनाए हम तो के देवत है ऐसा कर कि बीच में नहीं गुजर हम तो के सीमा कोना में देवत है तो तू जब निकलत हुए तो अब देख तोर कोवेनियो रही तू ऐसे कर अपन अपन अपन जब निकलत हुए अपन घर से तो हम उनके बीच के जमीन में गुजरे के बजाय हम कोना में तो के देवा था तो तू कोना से निकल जो एगो ऑप्शन ई भी सके रहे
0: एगो आको हुई थे बिचारे देखो सको हुई थे हमें खूब बल्ल सिलमा आ देखते हैं हम जुन जुन तपिकवा कर ले जाते हैं सर एक स्टेप आगे हो तो
1: बस हवे तो सीखा ले जा
0: हम लाला सही लग साइकिल एक्सपीरियंस भाई में बस ही काहे बोले लनसन ना कब ओके कुमा जे औसन चीज कब होवेला जब वासे वासे एगो चीज सकेला बोली वाली पाफे नहीं तू बिचवा में नहीं करिए बे कुए में मेरे ये ओके यहां भी देखब से ओके
1: आपको ओकर ई है ना क्योंकि बाहर जाला निकले के तो बीच सीमा में हम तो के काहे देव हम तो के कोना में देवत है तो जमीन वा तो औसने ही बा पारे बा तो जहां तो के जाला सीधे सीधे हमने के बीच के जमीन में निकलबे काहे कि एगो भाई के जमीन और अवती बा कैसे बोला जाए हो सकेला 20 जोन पेयस माटी बा तो उलुक के चाहला 10-10 पेयस लेके तो बता देख हमनी तोरा सीमा देवा थे जा तू हई कोना में सीमा ले ले हमने के यहाँ के जमीन रह जाए
0: हाँ तो ईद खूब बोल रहा है जब ई लोग दोनों में दे डाको आको हुई थी हाँ। सब चीज बोले लन सर केस का कानून जाइब कब एगो आको हुई थे आम्याब ती तो सब चीज ठीक है
1: हाँ।
0: बस ही काहे अपन वाजे ते ही ते तोहर कुमाजे है कुमाजे अपन परिवार है तो ओकरे संगे तू तो कुमाजे सब आके बतियाए वो देख भैया कहाँ हमनी लड़ाई करब सर धन दौलत या जमीन के विषय में है सब कोई तो ही हमने के छोड़ के जाए के चला अच्छा तो कुछ बात नहीं है एगो बात हम समझत हैं तो जहाँ घरवा बनई ले शायद कुमाजे उस समय दे सोची हुआ ऐसी फीजों बा उतना बड़ा नहीं बा कि जैसे थे देख ली सर लुत्तो आली विने के आँख से मिले के वो पब्लिक में तनी जिफिशल बा फो दे हमने दे आले को एक बा हमार तुम एक मजे नहीं है एक मजे लैन में नहीं करब सर एगो आको हुई थे आमयाब कर लिया सर हमने दे ला सर जैसे तू बोलते हो सकी बोले सर मैं बीच में नहीं सर्वी करिए आके कुमा जे कुएं वहाँ में सर्वी और बीच में कानूनी भी नहीं दे तो रहा वो कि मना करे लगो आदमी कोई भी गाँव पहुँचे रो नहीं जाए बोलिए बीच में निकल हर चीज कब निकल बे गो सीमा या कुछ करब तो बोले सर बो सीमे करे के नहीं कि बीच सीमे में करब तो वालिया जोन बाऊ है के है जमीनवा के सब बिगाड़ दिलब यहाँ देख लो एगो चीज सकल लाई रिगले करी एगो कुमा जे आमयाब दूगो कुमा जे है आदमी है आक्षेप्ते हो गलन सन मेक देजाकोब देजाको आक्षेप्ते नहीं होन सन आमयाब कर लन सन नहीं बतियाई के दूसर आदमी आके बोला बड़ा आदमी बोला ये काम भाई जैबे जमीन है के दे दे दो एगो बूट कुमा जे होके कुमा जे सिरवी करे के बोले नहीं हम नहीं दे ये हमारे बाप के देवल है अब एक बार आदमी सब चीज अपन मानियर बोला नहीं दे सैंप जो नदमिया मांगा था उसी मुआ कि कुमा जब बड़ा तनी बड़ा करे के तो उसकी चाहे ना क्योंकि आबू का आबू देखे वो किस लूजे करे के

0: comment dire, la Cour suprême. Mm-hmm. La Cour suprême, c'est qui juge que mangé et go droit de passage. Et le droit de passage écrit dans le chemin d'un insuffisant. Au cas où, comment dire, bara naïba. L'église n'a pas eu la souris, le taux camion est ce que tu as dit. Donc, inconvénient, Kari. तबियां
1: हां एगो आदमी जब घर वो बना मिला त मान ल घर वो बना ले लग तो के त मेप किने के रहला सब कुछ किने रह तब कामियो कामियो तो आईबे करेला ओकर सामान लेके त कहां रखी कैसे लेके जाई
0: हां त यहां देख लो जब ओके इनसफिशिएंट हो जाला उसी मो त कब मांगी ओके कही कानून के सिर्मो के कन्विंक करे के चाहे भी देखब सका करे के चाहे
1: एगो एगो सवाल और बा जैसे कि हमनी बोली जा कि मान ल कि तोहर जोन जमीन बा उ सामने में आवता से गांव होत बा तोहर जमीन सामने में आवता वाजा के जोन माटी बा उ पीछे में बा ओकर पीछे में और कुछ नहीं बा हाँ ये खाली उकर उकर उकर उकर जमीन बा और ओके एगो समय सोची चाहला तो समय सोची उसे के बता देख एगो कोना में तो के देवत है आई जाए के यानी कि हो सिमवा जोन बा खाली वाजे हुई सेवी करी जाए के आई के तो ओके नेसेसियर नहीं बा ओके ढेर बड़ा जमीन दे के वो एगो एगो लोटो जाए आई मैं सिर्फ जब एगो जमीन लंबा रहेला पीछे में ढेर घर बा तो हुआ चाहला जमीन के उकर इतना बड़ा रहे के कि दो गो गाड़ी चाहला यानी कि कुछ सीमा हुई रहे नॉर्मल सीमा जैसे बोली राजा आई जाए के और उतना चाहला ओके जमीनवा दे के
0: अरे ये एक चीज है जे हाँ। एगो बोली के आगे बा एके गो हाँ। पाछे बा कुमा जो करे गो वाजा वा के ओके एगो जमीन दे देला
1: खाली ओकर आई के जाए हाँ, के ओके जाए के
0: ओके हिया में प्रॉब्लम नहीं बा जिस से गो प्रॉब्लम वा बोला जे सिपोसो बहुत सा सिमो बा बहुत सा हो बगर
1: पाछे एक
0: ढेर घर बा तब चाह ये वो चीज है पोता ओके मिले के पेमी जोन हो आदमिया के बेचे के सब कह जाए तो हियाँ देखब मोसेलमा हो या डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हो आके देखे लाई दे के पेमी की कुमा जो घर बनाई के या कुमा जो किने के घर उड़ के से तू कब घर बनाई तो देखे ला अप्रूव हो के चाहला है उ पेमी वहाँ कि जोन बाया सीमे सीमा एगो सीमा सफिशेंट बा नहीं इनसफिशेंट सफिशेंट बा कि बड़ा बा आले भी नहीं करे के न तो नहीं हुआ के पाछे बगल के आदमिया के नहीं मिली तो तो बनी भी नहीं
1: यानी कि एक के गो लोटो के खाली जाए के और आए के सीमा रही
0: हाँ।
1: तब भितरे में ओके धुआं नहीं है एगो मोसेलमा बनाए के
0: नहीं या गो घरों बनाए के नहीं दे पे हमें जिससे काम से लिया ला मेरी बस ओके बोली के हाँ तो सीमा तो तुर सीमा कुमा जा देखा नहीं बड़ी छोटा सन सीमा बा तो नहीं दे
1: ऐसन में तो घाटा तो उकर होगा ना कहीं तो उकर घर बनाए के बाद
0: हाँ तो नहीं घर सकी घर हुए कुछ करे उमें अब तक मजे तब ले मजे सिमुआ बड़ा नहीं हुई समझ लो ना तो नहीं सकी अभी एक बार जगह नहीं देख लो पहले का रहा एगो जमाना कभी गोदमी सीमा रहल तो खाली माटी के सीमा रहल अब तक मजे मांगे लन कुलतागे
1: कुलतागे वाला
0: तो देख लो
1: एगो सीमा जब कुलतागे हो जाए तो पब्लिक हो जाला
0: हाँ एगो अरे ई में एगो छोटा सा बतिया सी दो तीन मिनट वक्त बा एगो सीमा जब सिपोजों प्रिवे है दून घर उड़ के रहला माटी के है कुमा जब सीमुआ तो कब मांग करे लंसन है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से कि उ सीमुआ ओके पब्लिक डिक्लेयर कर तो पब्लिक डिक्लेयर करे कि ओकरो एक बार प्रोसीजर है जब पब्लिक हो जाए डिक्लेयर हो जाए तब ओके म्यूनिसिपालिटी सकेला है कुलतारी करे जब एगो सीमा काल देखब कुलतारी हो गल बा वहाँ पासे हो तो जान उपमा जे कोरेक है सीमा पब्लिक है जे कुलतारे हो बस कि है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नहीं जाके कुलतारे करे एगो सीमा जब एगो एगो सीमा प्रिवे है ना तो ओके कब पब्लिक हो जाए तब ओके कुमा जे कुलतारे करे तो ही डिफरेंस वा जान जाइब कब चलत हो या पौजेरे करत हो या लुत्तु जात हो तरे ये तो सीमा एगो माटी के है तो माटी के सीमा यहाँ दुमा जे है नहीं है पब्लिक के सीमा कैसे बान सीमे नोवेल रूद सीमा पब्लिक के है एगो बोली के आगे है हम नहीं देखते हैं सर वक्त बान तनी मने
1: हाँ हम दो मिनट से कब से बतिया
0: हाँ एगो चीज जैसे मैं बोली लूजे करे के चाहे एगो समय दे सोच तो चाहे ला जो आदमिया वो मांग करता दुआ दे पसज हुआ वो मांग करता है तो मांग करता लाकू के तो के चाहेला बताई के बस एक बार के समय अभी है लड़ाई करते से लाकूर में जहाँ कुमार प्लेटवा में देखब चाहेला सब डाले के ना एक बार तो नहीं डाले लनसन तब बताई के चाहेला वो सीमुआ जोन बा ओकर घरवा जहाँ मटिया बा अंकलावे बा मतलब सीमा नहीं बा निकले के दूसरा चाहेला ओके बताई के कि उस सीमे जो उस सीमा जो निकले के बा नारो बा सीमे ए और जे नारो नहीं हुई तो इनसफिशिएंट बा जैसे मैं बोलता दू गो चीज है नहीं सकी चाहे दूसरा चाहेला बताई के कि वो सीमुआ जोन बा 30 बरिस से

0: सिरवी कर लेबा वो अदमिया तो वो मांग करता कैसे और जो अदमिया ऑब्जेक्ट करता कि कुम का ओके मिल उसी मुआ से कदाई खोले तो बोले वो भी उसी ओकर आंख के आगे कभी उसी मुआ जो कुमा जे सिरवी करता अदमिया मांगता बड़ा करे के कभी ऑब्जेक्ट नहीं कर ले रहल वो सिरवी करे आदमी आले भी नहीं करत रहल और ओके कुमा जे कभी आदमी नहीं ऑब्जेक्ट करेला तो सब याक्षेप हो गल ना और या तीस बड़ी से हम बोली नहीं मैं सिल्मा ओके बताए के चाहेला कि उसी मुआ कब बड़ा करे खोजता तो उसी मा इनसफिशिएंट बा सफिशिएंट नहीं बा कि ओके चाहेला अब ओके बड़ा करे के या बोली देख भैया एगो पैसा दे के पे करेला
1: तब इसकी
0: हाँ तब सकी कुमा जे अब तब लाकुर दे सीधे करी उस जीजों सौ मुआ कुमा जे या जीजुआ कब जे लाकुर में हुई तो वो दे सीधे करी कि कितना पैसा मोदालिते जिसे हमने बोला सर कितना पैसा पे करे के चाहला तो खोले के चाहला सी
1: बहुत खूब तो आज के हमने के जो कार्यक्रम बा आज की चर्चा कर में हमने आज बात कर ले हैं जा राइट ऑफ वे यानी शुमेद सोची जैसे कि कहीं से वाजन के संगे तनिक मुश्किल हो जाला सिवा उन्हें मिलेला तब जान गए कि तुहर अधिकार है सकबा जा अपन जो केस बा वो फाइट करे और जैसे हमने बोली ला जैसे आज हमने मनाओ थे जा विश्व पर्यावरण दिवस आज के दिन चला हमने के ज़रूर सोचे कि हमने के जो देश बा आज हर कोई अपन अंगना सफा करी ना और अपन आसपास में सफाई रखियन तो हमने के पूरा देश साफ सुथरा रही और एक रे बोली ला जना स्वच्छ हमने के स्वच्छता जो बा ओकर पचाना ध्यान दे के तो वकील जी बहुत बहुत धन्यवाद कपिल देव रघुनंदन जी कि आज हमके कार्यक्रम में आयला आज भी बहुत कुछ सीखे के मिलल जाने के मिलल हमने के जितना भी दर्शक श्रोता लोग हमन जा उम्मीद करते हैं कि हमने के कार्यक्रम से ढेर कुछ जाने ला सीखे ला अपन धोवा जाने ला अब अगले हफ्ते एक और कार्यक्रम के संगे आवब जा अभी के लिए आज्ञा दा शुभ दिन
2: आज

करना है और इसी संदर्भ में दुनिया भर में पर्यावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। ये दिवस पृथ्वी को सुरक्षित और स्वच्छ बनाए रखने के लिए सामूहिक जिम्मेदारी निभाने का संदेश भी देता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच 11 यूरोपीय देशों ने रूसी पर्यटकों के लिए वीजा प्रतिबंधों को और सख्त करने की मांग की है। इन देशों का तर्क है कि युद्ध जारी रहने के दौरान रूसी नागरिकों को पर्यटन के लिए विदेश यात्रा की अनुमति देना यूरोपीय संघ की एकजुटता को कमजोर करता है, मॉस्को पर दबाव कम करता है और संभावित सुरक्षा जोखिम भी पैदा कर सकता है। यूरोपीय संघ के 9 सदस्य देशों के साथ साथ आइसलैंड और नॉर्वे ने गर्मियों की छुट्टी के सीजन से पहले रूसी पर्यटकों के लिए वीजा शर्तों को और कड़ा करने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इस पहल का नेतृत्व स्वीडन ने किया है, जिसे श्वेसिया, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, लात्विया, लिथुआनिया, नीदरलैंड और पोलैंड का समर्थन प्राप्त है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। आपके ध्यान के धन्यवाद। साथ रहिए, सुन पाएंगे एक शोक समाचार।

0: शुक समाचार सुनिए। सिबरत लेन फ्लोरियाल में, सिबरत लेन फ्लोरियाल में 74 साल के 74 ईयर्स ओल्ड के श्री सूरजदेव सिबरत, श्री सूरजदेव सिबरत जिन्हें विनोद के नाम से लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज 3 बजे उनके घर फ्लोरियाल से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बिगा शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टूडे 3 PM। तागोलेन तेरूज में, तागोलेन ल्योशे तेरूज में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती गोमती रावा पैदाश्रम जगदेव और जिन्हें दादी देविका के नाम से भी लोग ज़्यादा जानते थे, कि मृत्यु हो गई हैं। उनकी अर्थी आज 3:30 बजे उनके बेटे ऋषि रावा के घर ल्योशे तेरूज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बामाशोक शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमिशन टूडे 3 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV. 819 kHz, ये है रेडियो मॉरिशस।

10:05 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। श्रोताओ, हमारा सादर प्रणाम। आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन करती है। कार्यक्रम है भक्ति धारा। भक्ति की धारा बहने जा रही है लगभग एक घंटे के सफर में। और आज शुक्रवार का पावन दिन है, 5 जून 2026। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करेंगे प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी का नाम लेकर।

0: चलिए श्रोताओं, 10:12 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। भक्ति धारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे, तो चलिए डॉक्टर आचार्य सुनील जी की प्रस्तुति में हम सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम।
1: वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम।

ओम तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। सभी श्रोताओं को सादर सप्रेम नमस्ते। शास्त्र नवनीतम कार्यक्रम में आज का विषय है सौभाग्य प्राप्ति हेतु सुखमय जीवन। सौभाग्य प्राप्ति धन बल बुद्धि स्वास्थ्य और सौभाग्य प्राप्ति का एक विशेष मंत्र ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल सूक्त 21 मंत्र 6। ओम इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि चित्तिम दक्षस्य सुभगत्वमस्मे पोषम रयिनाम अरिष्टिम तनुनाम स्वादमानम वाचः सुदिनत्वमहनाम। अर्थात हे इंद्र, परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर, हमें श्रेष्ठ धन, उत्तम बुद्धि, सौभाग्य, पुष्टि, उत्तम स्वास्थ्य, स्वस्थ शरीर प्रदान करो। हमारी वाणी में मिठास हो और हमें अच्छे दिन प्रदान करो। प्रत्येक व्यक्ति का सदा यह प्रयास रहता है कि वह हर प्रकार से सफल और पूर्ण हो, कभी किसी से उसकी कमी न निकले, क्योंकि कमी निकलने पर वह उसे कांटे की तरह चुभती है। जीवन में कमियां मनुष्य को कमज़ोर बना देती हैं, अतः सबकी यह दृढ़ इच्छा होती है कि वह हर तरह से सफल और पूर्ण हो। वह सफलता एवं पूर्णता कैसे आती है, इसकी प्रक्रिया बताते हुए मंत्र संदेश देता है कि इसके लिए हमें सजग होना चाहिए और सजग होकर हर कार्य को सफल बनाने के लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। प्रयत्न के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता। तभी तो कहा गया है कि पुरुषार्थ से ही इस संसार में समस्त कामना पूरी होती है। मन चाहा सुख उसने पाया जो आलसी बन के पड़ा न रहा। सफल व्यक्तियों का जीवन यही है कि सीढ़ी डर सीढ़ी चढ़कर ही उन्होंने सफलता प्राप्त की। इस सफलता एवं पूर्णता की प्राप्ति का क्रम स्पष्ट करते हुए ऋग्वेद में कहा गया है, इंद्र श्रेष्ठानि द्रविणानि धेहि। हे ऐश्वर्यवान परमेश्वर, आप हमें श्रेष्ठ धन का सौभाग्य प्रदान करें। धर्म एवं पुरुषार्थ से प्राप्त धन ही श्रेष्ठ धन होता है। ईश्वर को इंद्र कहा गया है क्योंकि वह धन धान्य तथा संपूर्ण ऐश्वर्य का स्वामी है। मनुष्य भी ईश्वर की कृपा से धन धान्य एवं बहुत सारे ऐश्वर्य को प्राप्त कर इंद्र के समान बन जाता है। धन दो प्रकार के माने गए हैं, एक विद्या धन और दूसरा द्रव्य एवं संपत्ति। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्याधन सब धनों में प्रधान धन है। परमात्मा ही इंद्र है, वही अन्य जीवों को राजा व इंद्र बनाता है। परमात्मा रूपी इंद्र

अहंकार से पड़े हैं। परंतु राजा रूपी इंद्र अज्ञान रूपी माया जाल में फंसकर तथा सत्ता रूपी लोभ के वशीभूत होकर अहंकार से नाता जोड़ लेता है। लोभ और अहंकार उसे राजा से रंक भी बना देता है। मंत्र में परमात्मा रूपी इंद्र से प्रार्थना की गई है, श्रेष्ठानी द्रविणानी धेहि, अर्थात हे भगवान, आप हमें श्रेष्ठ धन से युक्त कीजिए, हमें श्रेष्ठ धन का सौभाग्य प्राप्त हो, चाहे विद्या रूपी धन हो या सांसारिक धन। श्रेष्ठ धन का अर्थ है धर्म पूर्वक अर्जित किया गया उपकारी ज्ञान या पदार्थ, जो यश कीर्ति दिलाने वाला हो, जो चोरी भ्रष्टाचार या धोखे से न आया हो। हम अपने परिश्रम से श्रेष्ठ धन ही कमाएं, निंदित अनुचित व पाप युक्त धन हमारे पास किसी रूप में न आए। द्रविणानी शब्द बहुवचन में है, यहाँ बहुत सारे धन की बात आई है। वेद कहता है कि वयम श्याम पतयो रैनाम, हम बहुत सारे धन और ऐश्वर्य का स्वामी बने। यहाँ धन का स्वामी बनने की प्रेरणा दी गई है, धन का दास नहीं। लोभ के वशीभूत होकर जब मनुष्य धन का दास बन जाता है तो वह परमात्मा की भक्ति से दूर होने लगता है, वह धन को ही जीवन का उद्देश्य मान लेता है। लोभ और परिग्रह से युक्त व्यक्ति का जब अंत समय आता है तब वह उस धन का उपयोग नहीं कर पाता और न किसी को दान देने की इच्छा होती है। इसी कारण कहा गया है कि कृपण में दान देने की प्रवृत्ति नहीं होती, कंजूस में दान देने की प्रवृत्ति नहीं होती। इसलिए उदार व्यक्ति प्रार्थना करता है कि हे भगवान, आप हमें श्रेष्ठ धन से युक्त कीजिए ताकि उस धन का सही उपयोग हो सके एवं उस धन को परोपकार में लगा सके। काला धन मनुष्य को पतन के गर्त में गिरा देता है, पापयुक्त धन दुख का कारण बन जाता है। मंत्र का अगला अंश है चित्तिम दक्षस्य। दक्ष शब्द योग्यता या निपुणता का वाचक है। चित्तिम का अर्थ है समझ, सही बोध, सही ज्ञान, सही सोच। सफल व्यक्तियों की कहानी भी यही कहती हैं कि वे अपने क्षेत्र में तभी सफल हुए जब उन्होंने अपने आप को योग्य बनाया। एक विद्यार्थी तभी सफल होता है जब वह नियम पूर्वक, रुचि पूर्वक, योजना ढंग से पढ़ने का प्रयास करता है। जैसे जैसे वह पढ़ने का अभ्यास करता है वैसे वैसे उसकी योग्यता बढ़ती चली जाती है, अपनी योग्यता से अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफल हो जाता है। मंत्र के तीसरे अंश में इंद्र रूपी परमेश्वर से प्रार्थना की गई है कि सुभगत्वम अस्मे, अर्थात हे ईश्वर, आप हमें सौभाग्यशाली बनाए, हम कभी भी दुर्भाग्य का शिकार न हो। दुर्भाग्य मनुष्य को दुखी बना देता है। सौभाग्यशाली वही होते हैं जो अपने मन, बुद्धि और कर्म तथा उपासना को परमात्मा में समर्पित कर देते हैं। उत्तम कर्म, श्रेष्ठ विचार के द्वारा ही मनुष्य सौभाग्यशाली बनता है। मंत्र का चौथा अंश है पोषम रईनाम, हमारे धनों की पुष्टि कीजिए, हमारा धन बढ़े ताकि हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी न हो। धन के सदुपयोग से धन की अच्छी गति होती है। जब धन का दुरुपयोग होता है तो प्रगति में बाधा उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अर्थशास्त्र के अनुसार योग क्षेम का पालन करने वाला हमेशा सुखी रहता है। यहाँ योग का अर्थ है अप्राप्त की प्राप्ति, जो प्राप्त नहीं है उसे पुरुषार्थ द्वारा प्राप्त करना योग कहलाता है। क्षेम का अर्थ होता है प्राप्त की सुरक्षा, अपने सूझबूझ से प्राप्त किए धन की रक्षा करने का नाम क्षेम है। धन किसी भी रूप में क्यों ना हो, उसे संभाल कर रखना एवं समय आने पर उसका सदुपयोग करना बुद्धिमत्ता का परिचायक है। धनवान जब कंजूस बन जाता है तो उसका धन उसे पुण्य की भागी नहीं बनने देता। धनवान जब दानशील और उदार मन वाला होता है तो उसका धन उसे यशस्वी

0: और पुण्य का भागी बना देता है। मंत्र का पांचवा अंश है अरिष्टिम तनुनाम। अरिष्टिम का अर्थ है अच्छा स्वास्थ्य, तनुनाम का अर्थ होता है शरीर। अच्छा स्वास्थ्य शरीर को प्राप्त हो, शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहे, हमारा शरीर स्वस्थ बना रहे। स्वस्थ शरीर ही सुख का धाम है। किसी कवि ने कहा, स्वास्थ्य है तो जहान है, वरना सब कुछ शमशान है। मंत्र का छठा अंश है स्वादमानम वाचः। सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए वाणी का सदुपयोग अत्यंत आवश्यक है। विचार पूर्वक बोलना एक मूलभूत गुण है। आपस का प्रेम और साझापन बोलचाल से ही आरंभ होता है। किसी की वाणी में कठोरता, कटुता और अहंकार के भाव झलकते हो तो ऐसी वाणी हृदय को कष्ट पहुंचाती है। कबीर ने भी कहा है कि ऐसी वाणी बोलिए मन का पाक होई, औरन को शीतल करें आप हो शीतल होई। मधुर वाणी से मन शांत होता है। कटु वाणी शत्रुता को उत्पन्न करती है, परंतु सुमधुर वाणी शत्रु के हृदय में भी प्रेम उत्पन्न कर देती है। मंत्र का अंतिम अंश है सुदिनत्वम अहनाम, अर्थात हमारी दिनचर्या अच्छी तरह पूरी हो, हमारा दिन सही रूप से व्यतीत हो। सही रूप से दिनचर्या का पालन करने से हमारा दिन सुदिन हो जाता है। जब मनुष्य धर्मानुकूल जो कुछ कमाता है तो उस कमाई से उसे संतोष अवश्य प्राप्त होता है। संतोषी तथा परिश्रमी व्यक्ति को अच्छी नींद आती है और उसका स्वास्थ्य अच्छा बना रहता है, उसका दिन सही रूप से गुजरता है। आज का वक्तव्य यहाँ विराम लेता है। अब आचार्य सुनील को अनुमति दीजिए। ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे वेद दर्शन पर आधारित कार्यक्रम शास्त्र नवनीतम, प्रस्तुत करता डॉक्टर आचार्य सुनील।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: तो चलिए श्रोताओं, 10:24 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। कार्यक्रम है भक्ति धारा। शुक्रवार का दिन है आज, और इस दिन में हम माँ दुर्गा को पूजते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं, और बहुत सारे लोग जो है व्रत भी धारण करते हैं। वैसे माँ दुर्गा को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। वे हमें सिखाती है कि प्रेम और धैर्य के साथ अन्याय के विरुद्ध खड़े होना भी बहुत ही ज़रूरी है। सच्ची शक्ति वही है जो किसी को गिरने में नहीं बल्कि टूटे हुए हौसलों को उठाने में दिखाई देती है। तो चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को हम शुरू करने जा रहे हैं।

तो श्रोताओं, इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भक्ति धारा कार्यक्रम को हम प्रसारित कर रही है और आज का दिन हम बहुत ही श्रद्धापूर्वक माँ दुर्गा को पूजते हैं, उनके अनेकों रूप को पूजते हैं और हर एक रूप का अपना ही एक महत्व होता है। वैसे अपने भीतर की शक्ति को हमें पहचानना होता है, क्योंकि वही हमें अंधेरों से उजालों तक ले जाती है। और कहते हैं ना, श्रद्धा वह अनमोल भावना है जो मन को विश्वास, शांति और सकारात्मकता से भर देती है। और यह केवल ईश्वर में आस्था नहीं, बल्कि अपने कर्म पर, अपने गुरु पर, जीवन के मूल्यों पर भरोसा रखने का नाम भी है।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: चलिए श्रोताओं, कार्यक्रम को हम जारी रख रहे हैं। वैसे बहुत सारे लोग जो है माँ लक्ष्मी को भी पूजते हैं। माँ दुर्गा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वरूप वो है माँ लक्ष्मी का। माँ लक्ष्मी जो है हमें सिखाती है कि सच्ची समृद्धि केवल धन से नहीं बल्कि अच्छे विचारों और संतोषी मन से प्राप्त होती है। और माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में उजाला तो आता ही है, मन में विश्वास का दीपक भी जगमगा जाता है। तो चलिए, 10:40 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और इस समय हम प्रसारित कर रहे हैं कार्यक्रम भक्ति धारा।

तो चलिए श्रोताओं, भक्ति ध्यारा कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे और इस समय बहुत ही प्यार के साथ आप निभा रही है। चलिए तहे दिल से हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे।

कहते हैं कि शक्ति भी माँ, भक्ति भी माँ, जीवन की हर सुखद अनुभूति भी माँ। जगदम्बे माँ शक्ति, करुणा और ममता का स्वरूप है। जगदम्बे का अर्थ है समस्त जगत की माँ। जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है, उसी प्रकार माँ जगदम्बा अपने भक्तों का मार्गदर्शन करती है और उन्हें साहस प्रदान करती है।

चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुनिए। ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जा रही है। सबसे पहले

तो चलिए श्रोताओं, सेंट्रल एक्सेस बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुनिए। सबसे पहले लातुकोइंग के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है अवेन्यू लातुकोइंग, अपेमन, फ्लॉक्स, मिल्चिपलियों, मिगे, जास्मिन, बोहिनिया, एंड्रियानम, पोर्चुलाका, जिनिया, म्योजोटिस, पेचुनिया, क्रोटों, इबिस्कुस, ग्लाएल, इरिस और जेरानियम के निवासियों को सूचित किया जाता है कि रविवार 7 जून 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। कॉन्फिरिंगा पॉइंट साब के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है रू जॉन ब्लेज के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शनिवार 6 जून 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और अंत में है सेपल और फिनिक्स के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि वैसे सेपल और फिनिक्स के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है जिनमें है रुट सेपल, बेशालेन, पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड, सौमिल लेन, एग्नोर किरण एवेन्यू, मार्सेल मानुएल, एपास गुमानी, बालगोबिन लेन, उस्मान एवेन्यू, अले जैक स्ट्रीट, एपास लोरियो, मार्सेल मांचाबोर, मार्सेल मांसुब्राची, कोइंग लेन नुमरो 1, नुमरो 2 ए नुमरो 3, CWA सैंपल और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार 5 जून 2026 को दोपहर के 2:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए, भक्तिधारा कार्यक्रम का समापन जो है हम कर रहे हैं कार्तिक के साथ। आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुन सकेंगे। समाचारों के उस पार आप उर्दू कार्यक्रम सुन सकेंगे साइडा की पेशकश में। तो चलिए श्रोताओं, आपके लिए अंतिम नज़ाना एक आरती के साथ कार्यक्रम का समापन हम कर रहे हैं।

0: चलिए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार एक बार फिर आपसे अर्षिता नमस्कार।
1: नमस्कार, संक्षिप्त समाचार में आप सभी लोगों का स्वागत किया जाता है। लासूस कैट्रोबोन इलाके में कल शाम एक 38 वर्षीय व्यक्ति का शव उसके घर से बरामद होने के बाद हत्या की आशंका जताई जा रही है। मृतक खून से लथपथ अवस्था में पाया गया, उसके पैर पर गहरा घाव भी मिला है। घटनास्थल पर मौजूद उसके लिव इन साथी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। वर्तमान में कैट्रोबोन की सीआईडी के अधिकारी

0: उससे पूछताछ कर रही है। मृतक की मौत के सही कारणों और परिस्थितियों का पता लगाने के लिए पोस्टमार्टम कराया जाएगा। साइबर हमलों, ऑनलाइन धोखाधड़ी और डिजिटल लेन देन में लगातार वृद्धि को देखते हुए मॉरिशस ने अपने कानूनी ढांचे को और सुदृढ़ किया है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस एक्ट में संशोधन किया गया है ताकि इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान को बेहतर ढंग से विनियमित किया जा सके और डिजिटल सेवाओं में लोगों का विश्वास मजबूत हो। ये सुधार देश की डिजिटल परिवर्तन रणनीति का हिस्सा है। उल्लेखनीय है कि ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2024 में मॉरिशस को अफ्रीका में पहला स्थान प्राप्त हुआ है और साथ में मॉरिशस में साइबर सुरक्षा ने एक नया चरण भी पार किया है। साइबर सिक्योरिटी एंड साइबर क्राइम क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेजिग्नेशन रेगुलेशन 2026 कल से लागू हो गए हैं। ये नया कानूनी ढांचा देश की महत्वपूर्ण डिजिटल अवसंरचनाओं को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से तैयार किया गया। इनमें वित्तीय क्षेत्र, सार्वजनिक प्रशासन, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT, ऊर्जा, जल आपूर्ति और परिवहन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं। इन नियमों के लागू होने के साथ ही LITs द्वारा क्राउड स्ट्राइक के सहयोग से एक साइबर सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। क्राउड स्ट्राइक एक विश्व प्रसिद्ध अमरीकी साइबर सुरक्षा कंपनी है जो कंप्यूटर सिस्टम को साइबर हमलों से बचाने के लिए समाधान प्रदान करती है और कई सरकारों व संगठनों के साथ कार्य करती है। SSO अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कल अधिकारियों ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 62.5 किलोग्राम गांजा जब्त किया। ये मादक पदार्थ लंदन गैटविक से एयर मॉरिशस की उड़ान से पहुंचे दो यात्रियों के पास से बरामद किया गया। जब्त की गई इस ड्रग की बाजार कीमत लगभग 94.5 मिलियन रुपए आंकी गई है और गिरफ्तार किए गए दोनों यात्रियों की पहचान रिविया दिखेल और बदिजा मुगत के रहने वाले चरमदेव चतुरी और रुमाशन पदारत के नाम से की गई है। इस सिलसिले में मौदालविया निवासी मनीष कावलीसर को भी गिरफ्तार किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लगभग 7 वर्षों बाद पहली बार उत्तर कोरिया की यात्रा पर जा रहे हैं। सरकारी मीडिया के अनुसार वे 8 और 9 जून को उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन के निमंत्रण पर प्योंगयांग का दौरा करेंगे। शी जिनपिंग ने आखिरी बार वर्ष 2019 में उत्तर कोरिया की यात्रा की थी। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब हाल ही में बीजिंग में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत किया गया था। ये दोनों देश उत्तर कोरिया की विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हो चला। साथ रहे, बढ़ते हम शोक समाचारों की ओर। शोक समाचार सुनिए। सेज ऑंग्लॉ स्ट्रीट थॉन्गबर्ग पोर्टलुइस में 81 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती देविका गोकुल, पैदाशीनाम राम भोवा और जिन्हें सांता के नाम से भी लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज 2:30 बजे उनके घर पोर्टलुइस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए थॉन्गबर्ग शमशान भूमि ले जाया जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 2:30 PM। तागो लेन लुओशे तेरोज में 80 साल की 80 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती गोमती रावा पैदाशीनाम जगदेव और जिन्हें दादी देविका के नाम से लोग ज्यादा जानते थे की मृत्यु हो गई है। उनकी अर्थी आज शाम 3:30 बजे उनके बेटे ऋषि रावा के घर लुओशे तेरोज से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआमाशोक शमशान भूमि ली जाएगी। क्रिमेशन टुडे 3:30 PM। शोक में डूबे इन दोनों परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: शम्मे फरोजा

आउज़ु बिल्लाही मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान और बड़ा रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान है, जुम्मे में एक ऐसी घड़ी है कि अगर कोई मुसलमान उसे पाकर उस वक्त अल्लाह ताला से कुछ मांगे तो अल्लाह ताला उसको ज़रूर देगा, और वो घड़ी मुख्तसर है। बहवाला सही मुस्लिम शरीफ।

0: जुम्मे का मुबारक दिन है आप तमाम सुनने वालों को, हमारी जानिब से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक आपको ऐसे हज़ारों जुम्मे नसीब फरमाए, आमीन। मौज़े सामीन, उम्मीद है आप फ़ज़ल खुदा खैर वाफियत से होंगे। इस वक्त आप समात फरमा रहे हैं हमारी उर्दू नशरियात शम फरोज़ान रेडियो मॉरिशस के ज़रिए सैयदा सुबाई के साथ। आज की इस उर्दू मजलिस में हर जुम्मे की तरह आप समात फरमाएंगे सूरह अलकहफ की तिलावत, हम्द, नातु सलाम और आपके पैगामात। 5251700 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं। ताखिर ना करते हुए आइए सुकून कल्ब के लिए समात फरमाइए सूरह अलकहफ की तिलावत। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
1: बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

सदकुल्लाहुल अज़ीम। अभी आप समात फरमा रहे थे सूरह अल कहफ़ की तिलावत। ऐ पाक परवरदिगार हमें कुरान शरीफ की तिलावत की तौफीक अता फरमा, आमीन। खाक मुझ में कमाल रखा है, ऐ खुदा तूने संभाल रखा है। मेरे ऐबों पर डाल के पर्दा, मुझको अच्छों में डाल रखा है। अपनी हस्ती से करके वाबस्ता, हर मुसीबत को टाल रखा है। मैं तो कब का मिट गया होता, तेरी रहमत ने पाल रखा है।

मैं आदमज़ात हूँ मौला, तू मुझको जानता तो है कि ज़्यादा आजमाइश पर मैं जन्नत हार जाऊँगा। मौज़ सामीन, इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में 11:40 हो चुके हैं। जुम्मे का मुबारक दिन है और माह ज़िलहज, जी हाँ, इस्लामी साल का आखिरी महीना माह ज़िलहज। आज माह ज़िलहज की 18 तारीख है। आप अपने पैगामात हमें व्हाट्सएप या नॉर्मल मैसेजेस के ज़रिए इस नंबर पर भेज सकते हैं, 5251-7005। जी हाँ, 5251-7005 के ज़रिए आप अपने पैगामात हमें भेज सकते हैं।

जुम्मा यौम ईद है, जुम्मा सब दिनों का सरदार है, जुम्मे के रोज़ जहन्नुम की आग नहीं सुलगाई जाती, जुम्मे की रात दोज़ख के दरवाज़े नहीं खुलते, जुम्मे के रोज़ मरने वाला खुशनसीब मुसलमान शहीद का रुतबा पाता और अजाब कब्र से महफूज हो जाता है। मौज़े सामीन, वक्त तेज़ी से गुज़र रहा है, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आपके पैगामात की तरफ। परवीज़ा के लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह पाक परवीज़ा को शिफाए कामला अता फरमाए। इसके अलावा बंधु और कोमौली फैमिलीज़ जो हैं वो तमाम बहन भाइयों को जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रही हैं। तंजीला और सोमाली फैमिलीज़ मरहूमा ताहिरा सोमाली के मरहूमीन के लिए दुआए मगफिरत की

गुजारिश कर रही हैं और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। इसके अलावा मरहूम अब्दुल सत्तार फ़कीरा, जिनकी तीसरी बरसी है, उनकी तीसरी बरसी पर उनके बेटे मोहम्मद यूसुफ़ किताबची फ़कीरा, बीवी नसीमा, भाई अब्दुल कादिर, बहन रूक्यों और भाभी शकीरा ने दुआए मगफिरत की गुजारिश की है। इसके अलावा मरहूम शगीफ़ बुदू के लिए उनके बहन भाई और चीबहाल और बुदू फैमिलीज़ दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रहे हैं। और क्यूपिप से फरानाज जुम्मन तमाम सुनने वालों को जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रही हैं। इसके अलावा ईसाले सवाब की गुजारिश की है इमरत हुसैन, जी हाँ, अब्बू इमरत हुसैन, दादा इमरत मजीद, दादी हलीमा इमरत और ख़ास कर उनके बहनोई नौशाद सुबहान के लिए ईसाले सवाब की गुजारिश कर रही हैं। और हमेशा की तरह हमें न्यूकोफ की फातिमा भी एक पैगाम भेज रही हैं, जिसमें वो हज से वापस आने वाले खुश नसीबों को मुबारकबाद पेश कर रही हैं। और किसी ने हमारे लिए दुआएं भेजी हैं लेकिन अपना नाम नहीं बताया। जी हाँ, ये थे चंद पैगामात।

मौजूद सामीन, इसी के साथ हम बढ़ते हैं आपके चंद और पैगाम की तरफ। वाकवा की नसरीन बड़े प्यार से हमारा साथ दे रही हैं और जुम्मे की मुबारकबाद भी पेश कर रही हैं। इसके अलावा मरहूम इब्राहिम जॉन मोहम्मद के लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश की गई है। और पोर्ट लुइस से एमबीबी रादिया अपनी मरहूम वालिद वालदा और बहन के लिए दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रही हैं। इसके अलावा तंजीला और सोमाली फैमिलीज़ जो कि रोज़बिल की रहने वाली हैं, वो तमाम मुसलमानों को जुम्मे की मुबारकबाद पेश कर रही हैं और दुआए मगफिरत की गुजारिश कर रही हैं मरहूमा ताहिरा सोमाली के लिए। इसी के साथ थोड़ी ही देर में ये मजलिस इख्तिताम पज़ीर हो जाएगी। आप तमाम सामईन ने हमारा साथ दिया, हम आपके बेहद शुक्रगुज़ार हैं। आप तमाम सुनने वालों को एक बार फिर हमारे दिल की गहराइयों से जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ने चाहा तो फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में सैयदा सुबाई को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।

जन दश मुख कंपन बड़बाकृत बड़ बड़बाकृत बड़ बाणल कृत बहुभस्मार्चन।

शतयोजन शतशतयोजन शरधियोजन शरपरिलङ्घन हरिभाजन हरि हरिभाजन हरिमदभाजन दशमुखकम्पन बडवाकृत बड बडवाकृत बडबाणलकृत बहुभस्मार्चन जय

好，听众朋友，不知不觉今天的怀旧旋律就到这里接近尾声，跟您说再见了。下次节目我们再会，感谢您今天的陪伴。

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन
2: लेकर आ रहे हैं आपके लिए
3: फैमिली बीच फन डे मदर्स डे स्पेशल दिस सैटरडे 6 जून फ्रॉम 1 PM टू 4 PM एट ब्लू बे पब्लिक बीच।
2: म्यूजिक, गेम्स, गिफ्ट्स, फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन एंटरटेनमेंट,
3: लाइव परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक, गेम्स, गिफ्ट्स और बहुत कुछ।
2: सो सेव द डेट,
4: मिलिए हमारे आर्टिस्ट के साथ और साथ में हमारे आर्टिस्ट कुणाल हीरीलाल। वाहन प्यामाल
5: दम दम दिगा दिगा, मौसम दिगा दिगा, दम दम दिगा दिगा।
4: और साथ होंगे डांस इन द सिटी,
3: full on musty and manoranjan this Saturday 6th of June from 1 pm to 4 pm at Blue Bay Public Beach।
6: aapki pasand शुक्रवार 5 जून, घड़ी मिला लीजिए, दोपहर के 2:30 बज चुके हैं और आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए, आपकी सेवा में अभी से लेकर 4:45 बजे तक। सो कैसे हैं आप सभी, ठीक है ना? शुक्रवार आ चुका है और फ्राइडे आता है। शुक्रवार आता है तो लोगों की खुशी जो है वो बढ़ जाती है, क्योंकि पता है कि सैटरडे संडे होगा, वीकेंड होगा, और वीकेंड यानी कि क्वालिटी टाइम परिवार के साथ, वीकेंड यानी कि थोड़ा सा आराम करना, वीकेंड यानी कि सप्ताह भर जिन कामों को हम नहीं कर पाए तो सप्ताहांत में हम उन कामों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, और कभी थोड़ा घूमना हो जाता है, थोड़ा अच्छा टाइम बिताना हो जाता है। तो चलिए फ्राइडे की इस खुशी को हम और भी ज़्यादा बढ़ाएंगे आपके पसंदीदा गाने आपके लिए और आपके अपनों के लिए चलाकर। तो देर किस बात की है, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए हमारे इस प्रोग्राम से 4028085 पर, या तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 5251705 पर।

0: की पसंद।
1: सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। काश हम प्यार को, अपनेपन को, रिश्ते को, नातों को बांध कर रख पाते, लेकिन कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ को जकड़ कर रखते हैं तो वो फिर हमारे पास ठहरता नहीं है। जो भी चीज़ प्यार जिसे हम करते हैं उसे बस छोड़ देना चाहिए। अगर वो हमारा है, वो हमारे पास लौट कर ही आता है, है ना। तो चलिए, खूबसूरत गानों का कारवा शुरू हो चुका है। रफ़ी साहब की आवाज़ में इस अगले गीत की ओर हम बढ़ेंगे। हम साया फिल्म का ये तराना है, जाता है रिवेजी बोस से उदय जी की ओर से, उनकी पत्नी संगीता के नाम। प्रीति है, कीर्ति है, नक्श है, कियान है, और यहाँ पर सास ससुर के नाम और रिवेजी बोस के इनके पूरे परिवार के नाम ये गाना चल पड़ा।

0: आपकी पसंद।
1: यकीनन आपके दिल की आवाज़ ही तो हम सुन रहे हैं जो आपके फरमाइशों के ज़रिए हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। शुक्रिया आपके साथ के लिए। और चलिए बढ़ते हैं इस अगले गाने की ओर। अगला तराना मुकेश साहब की आवाज़ में है। सहेली फिल्म का ये गीत है, जिस दिल में बसा था प्यार तेरा। ये खूबसूरत सा तराना सभी दोस्तों के नाम, सभी पिंताया परिवार के नाम, सेलू सेलू जो है एक्वायो से हमारा साथ दे रही है। ये गाना आपकी फरमाइश पर चल पड़ा सभी के लिए।

0: आपकी पसंद।
1: और चलिए आपकी पसंद में इस अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। हरीश चंद्र तारामती फिल्म का ये जो तराना है, वाकवा से नंदलाल जी ने इस गाने की फरमाइश की है अपने पोते सनाया और रोहेंश के लिए। तो चलिए पूरे परिवार के नाम जो वाकवा से हमारे साथ जुड़े हैं, ये गाना चल पड़ा।

0: चलिए पसंदीदा गीतों का ये प्रोग्राम है और ऐसे में अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। अगले गीत के जरिए हम जन्मदिन की शुभकामनाएं यहाँ पर जोड़ेंगे। तो यहाँ पर दीदी संगीता जो है अपना जन्मदिन मना रही है और यहाँ पर कभी कभी कुछ लोग मैसेज भेजते तो समझ में नहीं आता है कि उन्होंने क्या लिखा है और जन्मदिन किसका है। चलिए यहाँ पर तब तक यहाँ पर इस नाम को जोड़ते हैं। प्रणव वर्मा भी सर अपना जन्मदिन मना रहे हैं। प्रणव जी, जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं आपको आपके दादा भी सर जी की ओर से, जो ग्रॉम्बे से आपको जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएँ दे रहे हैं। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आपके नाम प्रणव। सभी भी सर परिवारों की ओर से आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ। और यहाँ पर जो है साथ ही में आज ही जन्मदिन है रविन स्वयंवर जी का, और रविन जी आपको भी जन्मदिन के हार्दिक बधाई आपके पूरे परिवार की ओर से और खासकर बिसेसव जी की ओर से। राइट, तो यहाँ पर शायद जन्मदिन है आरती टोडा और ज्योति रामलगन का। आप दोनों को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपकी दीदी संगीता की ओर से, सभी रामलगन परिवार की ओर से, सभी तोदाओ परिवार की ओर से। व्यदय से आप लोग दोनों को जन्मदिन की शुभकामनाएं आई हैं और जितने भी सुनने वाले आज अपना जन्मदिन मना रहे हैं आप सभी को MBC रेडियो की पूरी टीम की ओर से हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन का मौका बहुत ही खास होता है और ऐसे में ये दिन आप सभी के लिए बहुत अच्छे से बीते और ये खुशियाँ सिर्फ आज के दिन तक न सीमित रहे बल्कि जीवन भर आपके साथ रहें। सो हैप्पी बर्थडे एक बार फिर से आप सभी को MBC रेडियो की पूरी टीम की ओर से। और फर्स्ट फिल्म का ये तराना, बार बार दिन ये आए, आप उन सभी के नाम जो अपना बर्थडे आज मना रहे हैं।
1: आपकी पसंद

0: तो चलिए इसी के साथ हम बढ़ने वाले हैं 3 बजे के समाचार की ओर और समाचारों के उस पार आपकी पसंदीदा जो प्रोग्राम है ये जारी रहेगा, चलेगा 4:15 बजे तक। तो आप हमारा साथ देते रहिए ऐसे ही रेडियो मॉरिशस पर।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस।

0: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा, आपको नमस्कार।
1: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस दुनिया का पहला गन्ना चीनी उत्पादक देश बनने की ओर अग्रसर है, जिसकी सभी चीनी बोंसुखो से प्रमाणित हैं। ये आधिकारिक प्रमाणन स्थिरता यानी सस्टेनेबिलिटी की गारंटी है, जो ये सुनिश्चित करता है कि उत्पादन श्रृंखला पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार और सम्मानजनक है। ये इस बात का भी प्रमाण है कि स्थानीय स्तर पर उठाए गए कदम और पहल सफल परिणाम दे रही है। इसी का उदाहरण है मॉरिशस शुगर सिंडिकेट को पिछले सप्ताह यानी 27 मई को आयोजित बोंसुखो इंस्पायर अवार्ड 2026 में विशेष सम्मान और सराहना प्राप्त हुई। ये उपलब्धि मॉरिशस के चीनी उद्योग की पर्यावरणीय प्रतिबद्धता और टिकाऊ विकास के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर मंत्री राजेश भगवान ने देश की रक्षा और संरक्षण के लिए नागरिकों से सक्रिय भागीदारी की मांग की है। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा लगातार सफाई अभियान चलाए जाने के बावजूद भी अवैध रूप से कचरा फेंकने की समस्या अभी भी देखी जा रही है। मंत्री राजेश भगवान ने कहा कि ऐसी गतिविधियाँ कचरा प्रबंधन की लागत को बढ़ा देती है। लुहब फिनिक्स में अतिलिये जाओ पुतुस में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, जिसका शीर्षक रखा गया है अटूट एचिमिते यानी पूर्ण आत्मीयता के साथ। इस प्रदर्शनी में शीला डॉन्सन, मिशेल मॉस जुबुआ और स्टीव जुबुआ की लगभग 30 फोटोग्राफ प्राकृतिक दृश्य और दुनिया के विभिन्न कोने में कैद अनमोल पल आप देख पाएंगे। ये प्रदर्शनी 15 जून तक खुली रहेगी। विदेश में बढ़ते तापमान और चरम मौसमी संबंधी घटनाओं में वृद्धि के बीच विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने दुनिया को एलनीनो की वापसी को लेकर चेतावनी दी है। संयुक्त राष्ट्र की इस एजेंसी ने सभी देशों से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम को और मजबूत करने की मांग की है। इस संगठन का कहना है कि जून से अगस्त 2026 के बीच एलनीनो जैसी परिस्थितियों के विकसित होने की 80% संभावना है। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए, हम मिलेंगे शाम 4 बजे।
2: ये है रेडियो मॉरिशस।
0: 3:03 हो रहे हैं, आप सभी का रेडियो मॉरिशस पर एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से कुछ जरूरी विज्ञप्तियां सुन लीजिए। सीईबी प्लेनवेत के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है। सीईबी प्लेनवेत के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक रुई कलकत्ता, मद्रास, सेरांग, महाराता, रुई मागो, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर रविवार 7 जून को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर के 1

0: बजे के बीच यहां पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही प्लेनवियत के इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, प्लेनवियत के खासकर रुई कानाल, बाथर्स्ट, गुन, कारिकाल, हसन हुसैन यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर रविवार सात जून को सुबह के साढ़े आठ बजे से दोपहर के 2 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही लातूर कैनिक के रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है, लातूर कैनिक के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक लातूर कैनिक के खासकर इन इलाकों और गलियों में रहने वाले ग्राहक एवेन्यू लातूर कैनिक, अनिमोन, फ्लॉक्स, मल्टीप्लियोट, मुगेत, जास्मिन, बुहिनिया, आंद्रेनियम, पोचुलाकास, जीनियास, मायोसोचिस, पेटूनिया, क्रोटॉन, हिबिस्कस, गालियल, आयरिस, जेरानियम यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर रविवार सात जून को सुबह के 8:30 बजे से दोपहर के 3:30 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही एक और विज्ञप्ति सुन लीजिए, इन जगहों पर कौंदिमास के रहने वाले ग्राहकों को सूचित करता है, खासकर कौसोना, कौंदिमास पावे, पेचित काबान, यूनिटे यहाँ पर रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर रविवार 7 जून को सुबह के 8 बजे से 9 बजे के बीच और फिर दोपहर के 2 से 3 बजे के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही कौदेमास के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर भी रविवार 7 जून को सुबह के 8 बजे से शाम के 4 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। ये थी कुछ विज्ञप्तियां सीईबी की ओर से।
1: 819 किलोहर्ट्ज़ ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
2: रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन
3: लेकर आ रहे हैं आपके लिए
4: फैमिली बीच फन डे मदर्स डे स्पेशल दिस सैटरडे 6 जून फ्रॉम 1 PM टू 4 PM एट ब्लू बे पब्लिक बीच।
3: म्यूजिक, गेम्स, गिफ्ट्स, फुल ऑन मस्ती, फुल ऑन एंटरटेनमेंट,
4: लाइव परफॉर्मेंसेस, म्यूजिक, गेम्स, गिफ्ट्स और बहुत कुछ।
3: सो सेव द डेट,
5: मिलिए हमारी आजीज के साथ और साथ में हमारे आर्टिस्ट कुणाल हीरीलाल, वाहन प्यामाल,
6: दम दम दिगा दिगा, मौसम दिगा दिगा, दम दम दिगा दिगा
5: और साथ होंगे डांस इन द सिटी।
4: Full on musti and manoranjan this Saturday 6th of June from 1 pm to 4 pm at Blue Bay Public Beach.
7: Aapki pasand.
0: चलिए आपकी पसंद के कार्यक्रम को हम जारी रखते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप सभी का साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगला जो तराना है जूली फिल्म का ये गीत होगा। शिवरानी जी इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई है डीप रिवर से, ये गाना आपके लिए जाता है शिवरानी जी। और ग्रांगप से सुनीता जी हमेशा साथ देती है, तो सुनीता जी जूली फिल्म का ये तराना हम आपके नाम भी करते हैं। और चलिए यहाँ पर फरमाइशी गीतों का सिलसिला यहाँ पर जारी है, ये जो गाना है यहाँ पर इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं या मैसेज भी कर सकते हैं अपनी फरमाइशों के लिए।

आपकी पसंद। चलिए यहाँ पर देखते ही देखते 3:15 बजने को है। बहुत से लोग जो है रोज़ फ़ोन करते हैं, रोज़ गाने मांगते हैं और आप रोज़ इतने प्यार से हमारा साथ देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमारी भी कोशिश होती है कि हम यहाँ पर हर रोज़ सबको मौका दें, सबके गाने को हम फरमाइशों को पूरा करें। यानी कि कल अगर हमने किसी का गाना चलाया है तो आज हम किसी

और को मौका देंगे उनकी फरमाइश को पूरा करने का, क्योंकि हर कोई अपनी अपनी तरीके से कोशिश करता है ना, फ़ोन करते हैं, मैसेज करते हैं। सो आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं इस अगले गाने की ओर। यहाँ पर शकुंतला जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, कह रही कि अगला गान यहाँ पर उनकी बेटी, उनकी बहन की बेटी का जन्मदिन है, लेकिन जिनका जन्मदिन है आपने तो उनका नाम ही नहीं लिखा, तो हम उनको जन्मदिन की शुभकामनाएँ कैसे दें। तो चलिए कोई बात नहीं, आपकी बहन की बेटी यानी कि आपके नीस का बर्थडे है, तो उनको आपकी ओर से और हमारी पूरी टीम की ओर से जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। अगली बार आप मैसेज करें तो जिनके लिए आप गाना मांग रही है, जिनका जन्मदिन है या कोई खास मौका है, उनका नाम लिखना मत भूलिएगा। ओके, अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। गाना चाहता है गीता आपके नाम आपके पति रोहित के लिए। बेटे हैं, बहुए हैं, साथ में नाती पोते हैं आदित्य, आरव और यहाँ पर कविश हैं और जानवी हैं। और आपकी ओर से गाना आया हमारे पूरी टीम के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। श्री 420 फिल्म का ये तराना है आपके लिए, चल पड़ा।

0: की पसंद।
1: चलिए, जीवन के इन राहों में चलते चलते कभी कभार मुड़कर देखना भी पड़ता है पीछे। तो चलिए ऐसे में इस अगले गाने की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगला तराना जो है वाकवा से सुदेवी जी हमारा साथ दे रही है, आपके पूरे परिवार के नाम हम करते हैं। यहाँ पर वृंदा जी हमारे

राहों में चलते चलते कभी कभार मुड़कर देखना भी पड़ता है पीछे। तो चलिए ऐसे में इस अगले गाने की ओर बढ़ते हैं, और यहाँ पर अगला तराना जो है वाकवा से सुदेवी जी हमारा साथ दे रही है। आपके पूरे परिवार के नाम हम करते हैं यहाँ पर। बृंदा जी हमारे

0: तो चलिए इस फरमाइशी गीतों के प्रोग्राम को हम आगे ले जाते हैं। अगला गाना प्रेमिला बोजू की ओर से जाता है, बेटा आकाश के नाम, साथ में यादव है, राजेन है, केविन है, उनके सभी बहनों के नाम, उनके भाई आत्माराम के नाम, सभी गुरुवाधु परिवार और सभी बोजू परिवारों के लिए।
1: आपकी पसंद

0: की पसंद।
1: जी हाँ, आकाश पे बैठा हुआ लिखता है वो तकदीर, और हर कोई चाहता है कि उनकी किस्मत हो या तकदीर हो वो बहुत अच्छी हो, और हर कोई अपनी किस्मत को बेहतर बनाने की कोशिश तो करता ही है। चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। अगला तराना माहिन जी आपके नाम हम करते हैं, और यही गाना आपकी ओर से दीदी मान के लिए और पूरे परिवार के लिए चल पड़ा।

0: की पसंद।
1: चलिए इस खूबसूरत गाने के बाद अब बारी है इस आखिरी गीत की। आपको तो पता ही है शुक्रवार को आपकी पसंद यह प्रोग्राम 4:15 समाप्त हो जाता है। जाते जाते ये अंतिम गाना नसरीन जी आपकी ओर से सभी के लिए, सभी को हैप्पी फ्राइडे, हैप्पी ब्लेस्ड फ्राइडे और सभी को हैप्पी वीकेंड कह रही है, जुम्मा मुबारक कह रही है सभी को। वाकवा से हमारे साथ नसरीन जी जुड़ी है। जाते जाते यही गाना उन सभी के नाम जो हमें सुन रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। इसी गाने के साथ आपकी पसंद यह प्रोग्राम समाप्त हो जाएगा। 2:30 से अभी तक आपने हमारा साथ दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। 4:15 गुलदस्ताए उर्दू इस प्रोग्राम को आप सुन पाएंगे निसार की पेशकश में। हम आपसे जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आपको याद दिला दें कि कल जो है फैमिली बीच फंडे होने वाला है ब्लू बे, दोपहर के 1 से 4 बजे के बीच हमारी रेडियो की टीम वहां पर होगी, तो आप लोग ज़रूर आइए हमारे साथ जुड़िए।

0: गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, गुलों में रंग भरे बादे नौ बहार चले, चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। सामईन कराम, निसार अख्तर की तरफ से आदाब अर्ज हैं। उर्दू अंजुमन गुलदस्ते उर्दू में तमाम शायकीन उर्दू का हम समी में कल्ब से इस्तकबाल करते हैं। उर्दू स्पीकिंग यूनियन की जानिब से ये खुसूसी प्रोग्राम पेश खिदमत हैं। सामईन, दो हफ्ते पहले हमने एक अदबी सिलसिले का आगाज़ किया था, बिलखुसूस राजेंद्र सिंह बेदी का शाहकार अफसाना गरम कोट हमारा मौजू सुखन बना हुआ है। एक ऐसा अफसाना जो बज़ाहिर एक मामूली ज़रूरत यानी एक गरम कोट के इर्द गिर्द घूमता है, मगर इसके पर्दे में मुआशी तंगी, खुददारी, मोहब्बत, कुर्बानी और इंसानी एहसासात की एक पूरी दुनिया सिमट आई है। आइए सामईन, इस अफसाने का तीसरा और आखिरी हिस्सा मुलायजा फरमाइए।
1: मेरे सिवा अनारकली से गुजरने वाले हर जी इज्जत आदमी ने गर्म सूट पहन रखा था। लाहौर के एक लहीम शहीम जेंटलमैन की गर्दन नेकटाई और मुकल्लफ कॉलर के सबब मेरे छोटे भाई के पालतू कुत्ते टाइगर की गर्दन की तरह अकड़ी हुई थी। मैंने उन सूटों की तरफ देखते हुए कहा, लोग सचमुच बहुत मुफलिस हो गए हैं। इस महीने नामालूम कितना सोना चांदी हमारे मुल्क से बाहर चला गया है। कांटों की दुकान पर मैंने कई जोड़ियां कांटे देखे। अपनी तखय्युल की पुख्ताकारी से मैंने शम्मी की काफूरी सफ़ेद सूट में मलबूस जहनी तस्वीर को कांटे पहना कर पसंद या नापसंद कर लेता। काफूरी सफ़ेद सूट, काफूरी मीनाकार कांटे, कसरत इकसाम के बाइस मैं एक भी मुंतखब न कर सका। उस वक्त बाजार में मुझे यजदानी मिल गया, वो तफरी क्लब से जो दरअसल प्रेल क्लब थी, 15 रुपये जीत कर आया था। आज उसके चेहरे पर अगर सुर्खी और बशाशत की लहरें दिखाई देती थी तो कुछ ताज्जुब की बात न थी। मैं एक हाथ से अपनी जेब की सिलवटों को छुपाने लगा। निचली बाएं जेब पर 1 रुपये के बराबर कोट से मिलते हुए रंग का पेवंद बहुत ही नामौजूं दिखाई दे रहा था। मैं इसे भी एक हाथ से छुपाता रहा। फिर मैंने दिल में कहा, क्या अजब यजदानी ने मेरे शाने पर हाथ रखने से पहले मेरी जेब की सिलवटें और वो रुपए के बराबर गोट के रंग का पेवन देख लिया हो। इसका भी रद्द अमल शुरू हुआ और मैंने दलेरी से कहा, मुझे क्या परवाह, यजदानी मुझे कौन सी थैली बख्श देगा और इसमें बात ही क्या है। यजदानी और संता सिंह ने बारहा मुझसे कहा कि वो रिफत जहनी की ज्यादा परवाह करते हैं और वर्स्टेड की कम। मुझसे कोई पूछे, मैं वर्स्टेड की ज्यादा परवाह करता हूँ, रिफत जहनी की कम। यजदानी रुखसत हुआ और जब तक वो नजरों से ओझल ना हो गया मैं गौर से उसके कोट के नफीस वर्स्टेड को पुश्त की जानिब से देखता रहा। फिर मैंने सोचा कि सबसे पहले मुझे पुष्पामणि के गुलाब जामुन और इमरतियाँ खरीदनी चाहिए, कहीं वापसी पर सचमुच भूल ही ना जाऊं। घर पहुंचकर उन्हें छुपाने

0: से खूब तमाशा रहेगा। मिठाई की दुकान पर खोलते हुए रोगन में कचोरियां खूब फूल रही थी। मेरे मुंह में पानी भर आया, इस तरह जैसे गुलाब जामुन के तखयल से पुष्पा मणि के मुंह में पानी भर आया था। कब्ज और इत्रीफल जमानी के ख्याल के बावजूद मैं सफ़ेद पत्थर की मेज पर कोहनियाँ टिकाकर बहुत रगबत से कचोरियाँ खाने लगा। हाथ धोने के बाद जब पैसों के लिए जेब टटोली तो उसमें कुछ भी ना था, 10 का नोट कहीं गिर गया था। कोट की अंदरूनी जेब में एक बड़ा सुराख हो रहा था, नकली रेशम को टिड्डियाँ चाट गई थी। जब मैं हाथ डालने पर उस जगह जहां मरांजा मरांजा एंड कंपनी का लेबल लगा हुआ था मेरा हाथ बाहर निकल आया, नोट वहीं से बाहर गिर गया होगा। एक लम्हे में यूं दिखाई देने लगा जैसे कोई भोली सी भेड़ अपने खूबसूरत पश्म उतर जाने पर दिखाई देने लगती है। हलवाई भाग गया, खुद ही बोला, कोई बात नहीं बाबू जी, पैसे कल आ जाएंगे। मैं कुछ ना बोला, कुछ बोल ही ना सका, सिर्फ इजहार तशक्कुर के लिए मैंने हलवाई की तरफ देखा। हलवाई के पास ही गुलाब जामुन चाशनी में डूबे पड़े थे। रोगन में फूलती हुई कचौरियों के धुएं में से आतिशी सुर्ख इमरतियां जिगर पर दाग लगा रही थी और जहन में पुष्पा मणि की धुंधली सी तस्वीर फिर गई। मैं वहां से बादामी बाग की तरफ चल दिया और आध पौन घंटे के करीब बादामी बाग की रेलवे लाइन के साथ चलता रहा। इस अरसे में जंक्शन की तरफ से एक मालगाड़ी आई, उसके 5 मिनट बाद एक शंट करता हुआ इंजन जिसमें से दहकते हुए सुर्ख कोयले लाइन पर गिर रहे थे। मगर उस वक्त करीब ही की सॉल्ट रिफाइनरी में से बहुत से मजदूर ओवर टाइम लगाकर वापस लौट रहे थे। मैं लाइन के साथ साथ दरिया के पुल की तरफ चल दिया। चांदनी रात में सर्दी के बावजूद कॉलेज के चंद मनचले नौजवान कश्ती चला रहे थे। कुदरत ने अजीब सजा दी है मुझे, मैंने कहा, पुष्पा मणि के लिए गोटे की मगजी, 2 सूती गुलाब जामुन और शम्मी के लिए काफूरी मीनाकार कांटे, ना खरीदने से बढ़कर कोई गुना सरजद हो सकता है। किस बेरहमी और बेदर्दी से मेरे एक हसीन मगर बहुत सस्ती दुनिया बर्बाद कर दी गई है। जी तो चाहता है कि मैं भी कुदरत का एक शाहकार तोड़ फोड़ के रख दूँ, मगर पानी में कश्ती रां लड़का कह रहा था, इस मौसम में तो रावी का पानी घुटने घुटने से ज़्यादा कहीं नहीं होता, सारा पानी तो ऊपर से ऊपर बारी दोआब ले लेती है और यूं भी आजकल पहाड़ों पर बर्फ नहीं पिघलती, दूसरे ने कहा। मैं नाचार घर की तरफ लौटा और नहायत बेदिली से जंजीर हिलाई। मेरी ख्वाहिश और अंदाजे के मुताबिक पुष्पा मणि और बच्चू नन्ना बहुत देर हुई दहलीज से उठकर बिस्तरों में जा सोए थे। शम्मी चूल्हे के पास शैतूत के नीम जां कोयलों को तापती हुए कई बार ऊंघी और कई मर्तबा चौंकी थी। वो मुझे खाली हाथ देखकर ठिठक गई। उसके सामने मैंने चोर जेब के अंदर हाथ डाला और लेबल के नीचे से निकाल लिया। शम्मी सब कुछ समझ गई, वो कुछ ना बोली, कुछ बोल ही ना सकी। मैंने कोट खूंटी पर लटका दिया। मेरे पास ही दीवार का सहारा लेकर शम्मी बैठ गई और हम दोनों सोए हुए बच्चों और खूंटी पर लटकते हुए गरम कोट को देखने लगे। अगर शम्मी ने मेरा इंतज़ार किए बगैर वो काफूरी सूट बदल दिया होता तो शायद मेरी हालत इतनी मुतगैर ना होती। यजदानी और संता सिंह तफरी क्लब में ट्रेल खेल रहे थे, उन्होंने 2-2 घूंट पी भी रखी थी। मुझसे पीने के लिए इसरार करने लगे मगर मैंने इनकार कर दिया, इसलिए कि मेरी जेब में दाम न थे। संता सिंह ने अपनी तरफ से 1 आध घूंट जबरदस्ती मुझे भी पिला दिया, शायद इसलिए कि वो जान गए थे कि इसके पास पैसे नहीं हैं, या शायद इसलिए कि वो रिफत जहनी की वर्स्ट से ज़्यादा परवाह करते थे। अगर मैं घर में उस दिन शम्मी को वही काफूरी सफ़ेद सूट पहने हुए देख कर ना आता तो शायद प्रेल में किस्मत आजमाई करने को मेरा जी भी ना चाहता। मैंने कहा, काश मेरी जेब में भी 1-2 रुपए होते, क्या जब था कि मैं बहुत से रुपए बना लेता। मगर मेरी जेब में तो कुल 4.25 आने थे। यजदानी और संता सिंह नहायत उम्दा वर्स्टेड के सूट पहने नेक आलम क्लब के सेक्रेटरी से झगड़ रहे थे। नेक आलम कह रहा था कि वो तफरी क्लब को प्रेल क्लब और बार बनते हुए कभी नहीं देख सकता। उस वक्त मैंने एक मायूस आदमी के मखसूस अंदाज में जेब में हाथ डाला और कहा, बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीदना कुदरत के नज़दीक गुनाह है। इस हिसाब से प्रेल खेलने के लिए तो उसे अपनी ग्रह से दाम दे देने चाहिए। अंदरूनी केसा, बाएं निचली जेब, कोट में पुश्त की तरफ मुझे कोई कागज सिरकता हुआ मालूम हुआ। उसे सिरकाते हुए मैंने दाएं जेब के सुराख के नज़दीक जा निकाला। वो 10 रुपए का नोट था जो उस दिन अंदरूनी जेब की तह के सुराख में से गुजरकर कोट के अंदर ही अंदर गुम हो गया था। उस दिन मैंने कुदरत से इंतकाम लिया। मैं उसकी ख्वाहिश के मुताबिक प्रेल वरेल ना खेला, नोट को मुट्ठी में दबाए घर की तरफ भागा। अगर उस दिन मेरा इंतजार किए बगैर शम्मी ने काफूरी सूट बदल दिया होता तो मैं खुशी से यूं दीवाना कभी ना होता। हाँ, फिर चलने लगा वही तखय्युल का दौर। गोया एक हसीन से हसीन दुनिया की तख्लीक में 10 रुपए से ऊपर एक दमड़ी भी खर्च नहीं होती। जब मैं बहुत सी चीज़ों की फहरिस्त बना रहा था, शमी ने मेरे हाथ से कागज़ छीनकर पुर्जे पुर्जे कर दिया और बोली, इतने कले मत बनाइए, फिर नोट को नजर लग जाएगी। शमी ठीक कहती थी, मैंने सोचते हुए कहा, न तखय्युल इतना रंगीन हो और ना महरूमी से इतना दुख पहुंचे। फिर मैंने कहा, एक बात है शमी, मुझे डर है कि नोट फिर कहीं मुझसे गुम ना हो जाए। तुम्हारी खेमो पड़ोसन बाजार जा रही है, उसके साथ जाकर तुम ये सब चीज़ें खुद ही खरीद लाओ। काफूरी मीनाकार कांटे, DMC के गोले, मगजी, और देखो पोपी मुन्ना के लिए गुलाब जामुन ज़रूर लाना, ज़रूर। शम्मी ने खेमों के साथ जाना मंजूर कर लिया और उस शाम शम्मी ने कश्मीरी का एक नहायत उम्दा सूट पहना। बच्चों के शोर गुगा से मेरी तबीयत बहुत घबराती है, मगर उस दिन मैं देर तक बच्चू नन्ने को उसकी माँ की गैर हाजिरी में बहलाता रहा। वो रसोई से ईंधन की कॉल की, गुसलखाने, नीम छत पर, सब जगह उसे ढूंढता फिरा। मैंने उसे पुचकारते हुए कहा, वो ट्राईसाइकिल लेने गई है। नहीं जाने दो, ट्राईसाइकिल गंदी चीज होती है, अख्तू गुब्बारा लाएगी। बीबी, तुम्हारे लिए बहुत खूबसूरत गुब्बारा। बच्चू बेटी ने मेरे सामने थूक दिया, बोली, ए गंडी। मैंने कहा, कोई देखे तो कैसा बेटियों जैसा बेटा है। पुष्पा मनी को भी मैंने गोद में ले लिया और कहा, पोपी मुन्ना आज गुलाब जामुन जी भर कर खाएगा ना। उसके मुंह में पानी भर आया, वो गोदी से उतर पड़ी और बोली, ऐसा मालूम होता है जैसे एक बड़ा सा गुलाब जामुन खा रही हो। बच्चू रोता रहा। पुष्पा मणि कथकली मुद्रा से ज्यादा हसीन नाच बरामदे नाचती रही। मुझे मेरे तखय्युल की परवाज से कौन रोक सकता था? कहीं मेरे तखय्युल के कले जमीन पर ना आ रहे, इसी डर से तो मैंने शम्मी को बाजार भेजा था। मैं सोच रहा था, शमी अब घोड़े अस्पताल के करीब पहुंच चुकी होगी, अब कॉलेज रोड के नुक्कड़ पर होगी, अब गंदे इंजन के पास, और एक नहायत धीमे अंदाज से जंजीरें ली। शमी सचमुच आ गई थी दरवाजे पर। शमी अंदर आते हुए बोली, मैंने 2 रुपए खेमू से उधार लेकर भी खर्च कर डाले हैं। कोई बात नहीं, मैंने कहा। फिर बच्चू, पोपी मुन्ना और मैं तीनों शम्मी के आगे पीछे घूमने लगे, मगर शम्मी के हाथ में एक बंडल के सिवा कुछ न था। उसने मेज पर बंडल खोला, वो मेरे कोट के लिए बहुत नफीस वर्स्टेड था। पुष्पा मनी ने कहा, बीबी मेरे गुलाब जामुन। शम्मी ने जोर से एक चपत उसके मुंह पर लगा दी।
1: मुअज़्ज़ज़ सामईन, आप समाअत कर रहे हैं गुलदस्ते उर्दू प्रोग्राम, एक ऐसी बज़्म जहां अल्फाज महकते हैं, एहसास बोलते हैं और उर्दू अपनी पूरी आबोताब के साथ जलवागर होती है। याद रहे, ये ख़ास प्रोग्राम उर्दू स्पीकिंग यूनियन के ज़ेर एहतमाम नशर किया जाता है। सामईन कराम, आज की हमारी दिलावेज़ बज़्म गुलदस्ते उर्दू اختتام پذیر ہوتی ہے۔ امید ہے

0: आज की ये अदबी नशिश्त आपकी समागतों के लिए बाइस मुसर्रत रही। अब निसार अख्तर इजाज़त का तलबगार हैं, अगले जुम्मे को फिर आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।
1: घड़ी मिला जी सामीन इकराम, शाम के ठीक 4 बज रहे हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुदा पे है भरोसा, इसी पे नाज करता हूँ। इलाही तेरे ही नाम से इस बज़्म का आगाज़ करता हूँ।

0: मोहतरम और मोहतरम सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। सबसे पहले आप तमाम लोगों को सैयदुल अय्याम कबूलियत वाला दिन जुम्मे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो।
1: जो यौम सब अय्याम में सबसे अजीम है, जुम्मा करीम है, जुम्मा करीम है।
0: आज ज़िलहज महीने की 18वीं तारीख है और ये वो तारीख है जो हमें याद दिलाती है कि हया का ताज सरे उस्मान ज़ी वक़ार रहा, नबी के दर का वो रोशन चिरागे यार रहा। आज ही के दिन 18 ज़िलहज को खलीफ़ा थवम हज़रत उस्मान गनी रदल्लाहु ताला अन शहीद हुए। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजून। और आज इस प्रोग्राम के दौरान हम इस अजीम शख्सियत को खराज अकीदत पेश करेंगे, उस अजीम उल मर्तबत हस्ती का जिन्हें तारीख इस्लाम में सखावत, हया, इसार और वफादारी की रोशन अलामत के तौर पर याद किया जाता है। यकीनन वो मुबारक शख्सियत जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने जुल नूरैन का मुनफरिद लक़ब अता फरमाया, क्योंकि आपको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की दो साहबजादियों के साथ निकाह की सआदत हासिल हुई और यह इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु।

अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जा बजा मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ अहादीस तैयबा इसको डिस्कस फरमाया और नेकों की सोहबत की इम्पोर्टेंस को आपने जा बजा मेंशन किया। फिर असरात भी दो तरह के होते हैं, अच्छी सोहबत का असर द इफेक्ट ऑफ द गुड कंपनी और बुरी सोहबत का असर द इफेक्ट ऑफ द ईवल कंपनी। हम और आप सुबह शाम हर वक्त इसका मुशाहदा करते हैं और हमें इसका तजर्बा और एक्सपीरियंस है कि नेकों की सोहबत से इंसान नेक हो जाता है, अच्छों की सोहबत से इंसान अच्छा हो जाता है और बुरों की सोहबत से इंसान बुरा हो जाता है। कितने अच्छे लोग हैं जो फकत बुरों की सोहबत से बुरे हो गए और कितने बुरे लोग हैं जो फकत अच्छों की सोहबत से अच्छे हो गए। इस वक्त जो हमारी यंग जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, नई नस्ल नौजवान, उन्हें सोहबत सालिहा द गुड कंपनी इसकी बहुत ज्यादा नीड है। नौजवान नस्ल, नई नस्ल जिस तबाही की राह पे चलती चली जा रही है वो उनके फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस है, उनके मुस्तकबिल को तारीख और ख़तरनाक बनाने वाली राहें और रास्ते। तो ज़रूरत इस बात की है कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ट्यूशन में, जहाँ भी या जहां वो कारोबार करते हैं, बच्चों की सोहबत पे खास निगाह रखी जाए कि उनका उठना बैठना किन के साथ, उनकी नशिस्त व बर्खास्त किन लोगों के साथ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को जो सबसे बड़ा इनाम अता फरमाया वो अपनी सोहबत का इनाम है। और सहाबी बनता ही सोहबत मुस्तफा से, सहाबी की निस्बत आमाल की तरफ नहीं है, सहाबी की निस्बत मुजाहदात और रियाजात की तरफ नहीं है, इबादात की तरफ नहीं है, उनकी निस्बत सोहबत रसूल, सोहबत मुस्तफा की तरफ। फकत एक निगाह मुस्तफा और एक आने सोहबत मुस्तफा बशर्त ईमान उन्हें सहाबी बना देती। फकत एक निगाह मुस्तफा से उनके विलायत के वो मदारिज और मनाजिल पे होते हैं जो सदियों की इबादत से नहीं हो सकते।

जो सदियों के रियाजात और मुजाहदात से नहीं हो सकते। एक तरफ सोहबत मुस्तफा, वो एक लम्हे के लिए ही सही, और एक तरफ हजार हा साल की इबादत और रियाजात और मुजाहदात। ये फैज है उस सोहबत मुस्तफा का। फिर हुजूर के बाद सहाबा की सोहबत है, फिर ताबईन की है, फिर अतबाए ताबईन की है। आगे जाएं तो सोहबत स्ट्रांग होती चली जाती है। अतबाए ताबईन से मजबूत सोहबत और ज्यादा मुअस्सर वो ताबईन की, ताबईन से फिर सहाबा की, और सहाबा से फिर सबसे मुअस्सर सोहबत मुस्तफा की। आप से पहले भी वो जमाना इस रुई जमीन पर किसी को मुयस्सर ना आया, और आपके बाद सुबह कियामत तक वो सोहबत और सोहबत की वो तासीर फिर से अहले जमीन को नसीब ना हो। इसलिए अल्लाह पाक ने फरमाया, वल असर, कसम है जमाने महबूब की, जमाने महबूब के कसम का एक रीजन ये भी है कि इसमें सोहबत की वो बहारें हैं जो मखलूक को ना पहले नसीब हुई ना आपके फिजिकल टाइम के बाद सुबह कियामत तक नसीब हुई। फिर आप अतबाए ताबईन के बाद फिर उलमाए रब्बानीयीन हुए, औलियाए कामिलीन हुए। उनमें से एक सफीर इस्लाम, मुबल्लिग इस्लाम, फैज याफ्ताए बारगाह रजा, वारिस उलूम रजा, वारिस अफकार रजा, वारिस अनजार रजा, मुबल्लिग आलम इस्लाम, शेखुल इस्लाम अल मुस्लिमीन, अश्शाह अल्लामा मौलाना अब्दुल अलीम सिद्दीकी नव्वर अल्लाह मरकदहु, अल्हम्दुलिल्लाह इस सरजमीन पे आज भी ऐसे बुजुर्ग जिंदा और हयात जिन्होंने उनकी सोहबत पाई और उनके दस्ते हक परस पर, दस्ते सिद्दीकी पर बेहद की। उनमें देखें तो सोहबत का वाज़े नजर आता, रंग नजर आता, उनके उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, गुफ्तगू में, मिलने में, हर जान रंगे फैजाने अलीमी नजर आएगा, रंगे फैजाने सोहबत अलीमी नजर आएगा। रीजन ये है कि अल्लाह पाक ने उन्हें सदियों बाद भी ताजदार कायनात की सोहबत का वो अजीम फैज नसीब किया जो उनके जमाने में बहुत कम उलमा और बहुत कम अहलुल्लाह को नसीब थी। उन्होंने फिर हजार हा लोगों की तरबियत की, हजार हा लोगों को रंगे तरबियत अदा किया, और तरबियत का वो नूर उन्हें दिया कि उसकी रोशनी इंशाअल्लाह सुबह कियामत तक तारीखियों को उजालों में बदल देगी। आरिफ रूमी ने फरमाया कि सोहबत सालिह तुरा सालिह कुनत, सोहबत तालिह तुरा तालिह कुनत, नेक की सोहबत तुम्हें नेक बना देगी और बद की सोहबत बुरे की सोहबत बुरा बना देगी। तो बता ये रहा था कि ये फैजान

सोहबत ताजदारे कायनात के जाहिरी हयात से चला और इन शान का सुबह कयामत तक वो चलता चला जाएगा। लेकिन ये साहिब होता कि साहिब किस लेवल का है, जिस लेवल का साहिब होता है उसी लेवल की उसकी सोहबत होती है, उसी लेवल की फिर उस सोहबत के असरात होते हैं, उसका फैजान होता है और उसका इरफान। सहाबे किराम रिद्वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और अहले बैत एज़ाम जो प्लस सहाबा भी हैं ताजदार कायनात की हयात तय्यबा, उन्हें जो सोहबत का रंग नसीब हुआ उसमें वो पूरी उम्मत मुस्तफा में, बल्कि उससे पहले जो उमम हुए उनमें सब में मुमताज और यूनिक, और फिर हर एक को जो सोहबत का इनाम मिला, जो सोहबत का गिफ्ट उसका कादो मिला, उसका तोहफा मिला, वो हर एक का अलग अलग। सैयदुना उस्मान बिन अफान रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में हदीस पाक में हुजूर सलाम ने फरमाया, लिकुल नबीयिन रफीकुन फिल जन्ना, एवरी मैसेंजर नबी रसूल विल हैव ए फ्रेंड इन पैराडाइज, व रफीकी फीहा उस्मान बिन अफान, एंड माय फ्रेंड विल बी इन पैराडाइज सैयदुना उस्मान बिन अफान रदी अल्लाह ताला। फरमाया हर नबी का जन्नत में एक रफीक और मेरे रफीक जन्नत में सैयदना उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, जिनको हुजूर सलाम ने एक बार नहीं बारह जन्नती होने की बशारत अदा की। और जब हुजूर सलाम ने फरमाया कि हर नबी का रफीक होता, तो रफीक के माने उर्दू में दोस्त, इंग्लिश में फ्रेंड, कंपनियन के हैं, जो किसी के कंपनी में होता, लेकिन जाहिर है कि ये एक खास लेवल फ्रेंडशिप की, दोस्ती की बहुत सारी किस्में होती हैं, उसके बहुत सारे मदारिज होते हैं, बहुत सारे मनाजिल होते हैं। अब यहां रफाकत की कौन सी मंजिल है? सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रदी अल्लाह ताला रफाकत मुस्तफ़ा के किस लेवल पे फायज है, किस मुकाम पर फायज है, इसे अल्लाह जानता है या फिर अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, जिन्होंने आपको रफाकत का ये एहसास दिया, रफाकत का ये ऑनर दिया। तो बताना ये है कि सहाबे किराम अल्लाह पाक ने बेपनाह नेमतें अता की, बेपनाह इनामात उन पर हुए अल्लाह के एहसास, लेकिन सबसे बड़ा एहसास सहाबा पर हुजूर सलाम की सोहबत की शक्ल में हुआ। इसलिए कि फैजान सोहबत मुस्तफ़ा से फिर हजार हा नेमतें निकलती हैं, इससे फिर हजार हा अल्लाह के एहसान निकलते हैं। ये वो चश्मा है फैजान सोहबत मुस्तफ़ा का, वो चश्मा है फैजान सोहबत मुस्तफ़ा का, जिससे सहाबा ने हजार हा लोगों को फैजयाब किया। दौरे सिद्दीकी में, दौरे फारूकी में, दौरे उस्मानी में, दौरे आलवी में ये चश्मे बढ़ते चले गए और एक एक चश्मे फैजाने सहाबा से कई चश्मे जारी हुए, जिन्होंने इस कायनात के दूरो दराज खित्तों को भी उस चश्मे

फैजान मुस्तफा से सरा। आज जरूरत नौजवान नस्ल इस बात की है, उनके सामने अकीदे का चैलेंज भी है, उनके सामने अमल का चैलेंज भी है, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए जरूरी है कि उनकी सोहबत अच्छी।

पूरी जिंदगी का खुलासा, उनके हर हर कमाल का खुलासा, उनके जमाल का खुलासा ताजदार कायनात ने इन मुबारक मुख्तसर और पुरनूर कलेमात में अता फरमाया और बयान है। इसलिए इकबाल ने कहा, दियारे इश्क में अपना नाम पैदा कर, दियारे इश्क में अपना नाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर। दियारे इश्क में नाम पैदा होता है सोहबत सालहीन से, फिर आपकी सुबह नहीं होगी, शाम नहीं होगी। देखने में तो सुबह और शाम यकसा नजर आती है, लेकिन जब आप सालहीन की सोहबत का सुरमा लगाएंगे और सोहबत सालहीन से आपकी आंखें बीना, सोहबत सालहीन से आपकी आंखें रोशन होंगी, तो फिर आपको नजर आएगा कि जमाने की हर सुबह भी नई सुबह और हर शाम भी नई शाम है। एक नेम और फेम तो वो होता है जो इस दियार में, इस फिजिकल वर्ल्ड में है, एक नेम और फेम वो होता है जो दियार इश्क में होता है, इश्क के वतन में होता है, इश्क के मुकामात में होता है, इश्क के मनाजिल और मदारिज में होता। अल्लाह पाक ने सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रदी अल्लाह ताला अन्हु को मुकाम अता किया, दो हिजरतें की, पहली हिजरत हबशा के की तरफ सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाद आप पहले मुहाजिर हैं जिन्होंने अहलो आयाल के साथ हिजरत की, फिर हबशा के बाद मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। जुन्नूरैन का लकब है, ताजदार कायनात की दो शहजादियां यके बादी करे आपके निकले, इसलिए भी आप जुन्नूरैन हैं और इसलिए भी जुन्नूरैन हैं कि आपका जाहिर भी नूर है और बातिन भी नूर है। जाहिर में भी नूर रफाकत मुस्तफा का और बातिन में भी नूर रफाकत मुस्तफा का। जब आप हुजूर के रफीक हुए, रफाकत नसीब हुई, तो उस रफाकत से, उस सोहबत से, उस साहिबियत से आपका जाहिर भी रोशन हुआ, बातिन भी रोशन हुआ, और फिर जाहिर और बातिन की रोशनी इंसान को बचाती है। सोहबत सालहीन से नूर नसीब होता, रोशनी नसीब होती है जो इंसान की हिफाजत करती है। मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा शाह अब्दुल अलीम सिद्दीकी नव्वर अल्लाह तआला ने उसी सोहबत का नूर पूरी दुनिया में फैलाया, पूरी दुनिया को उस नूर से जगमगाया। जहां दुनिया का एंड होता है वहां अपने मस्जिद तामीर की, वहां मदरसा बनाया, वहां तक तालीबात मुस्तफा का नूर पहुंचाया। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में आपने तबलीगी दौरे किए ताकि फिजिकली लोग आपकी सोहबत से फैजियाब हो सके। अल्लाह पाक उस अजीम वली, अजीम आरिफ, अजीम जाहिर के मरकदे मुबारक पर अपनी रहमत और रिजवान की बारिशों को नज़ूल फरमाए, जो आज जन्नतुल बकी में महबे ख्वाह। और इसी तरह मेरे मामू, मेरे शेख, मेरे उस्ताद जामिउल माकूल वल मनकूल, हावीउल फुरू वल वसूल, शेखुल हदीस अल्लामा इफ्तिखार अहमद कादरी ज़ियाई नव्वरल्लाह कुतुब मदीना के मुरीदीन में से, उनके फैज़ याफ्तगान में से, वो भी बकी में महबे ख्वाह। हज के मौके पे मैं साथ था गुंबत खजरा के साए में उनका मिसाल, और उनके होंठ हिल रहे थे। हमारे ग्रुप के एक आदमी ने अपने कान करीब किए
तो बताया कि उस वक्त

0: की जुबान पर दुरूद व सलाम। हो क्या तकदीर है, क्या तकदीर है कि रूह निकल रही हो ताजदारे कायनात का जलवा सांसे हो और लबों पर दुरूद व सलाम। इसलिए हुजूर ताज शरिया ने फरमाया, आपकी तलात को देखा जान दी, कबर में पहुंचा तो देखा। मुबल्लिग़ सलाम ने भी तलात मुस्तफ़ा को देखकर अपनी जान दी। ताजदार कायनात के हुसन में फना हुए, हुजूर के जमाल में इतने फना हुए कि रूह निकल गई, लेकिन उन्हें रूह निकलने का एहसास, रूह निकलना आसान नहीं है, रूह बड़े मुश्किल से निकलती है। लेकिन आशिकों के लिए उन्होंने तो पहले ही कहा, जान दी दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा नहीं करूं तेरे नाम पे जान फिदा, न बस एक जान दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करूं जहां नहीं। अब यहां नाम नहीं है, यहां तो खुद रुखे मुस्तफा, चेहरे वद्दुहा है, रुखे ज़ेबाए मुस्तफा है। उसको आशिक देखता है, देखता है और देखते देखते रूह निकल जाती है, न उसे मौत का एहसास होता है, न उसे रूह के निकलने का एहसास होता है, रूह चली जाती है। अल्लाह पाक हम सबको ऐसी मौत अता फरमाए और बुरी मौत से बचाए। वमा अलैना
1: सामीन, अभी आप जमा मस्जिद पोटली में आज जुमे के मुबारक मौके पर वाज की रिकॉर्डिंग समाप्त कर रहे थे अज़ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ क़ादरी रज़वी दामत बरकतुहु आलिया, जिनका उन्वान रहा खलीफ़ा थोम हज़रत उस्मान ग़नी और नेक सोहबत। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन बातों पर हम सबको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन।

कि दौलत की असल जीनत सखावत है, इख्तदार की असल शान अदल इनकसारी है, और ईमान की असल पहचान हया और वफादारी है। आप रदल्लाह ताला ने अपने माल से इस्लाम को कुव्वत बख्शी, अपने किरदार से उम्मत को हया का दर्स दिया, और कुरान करीम की इशाअत के ज़रिए क़यामत तक आने वाली नस्लों पर अजीम एहसान फरमाया। रहेगा नाम उस्मान ता क़यामत जगमगाता, सखावत सब्र और कुरान का परचम लहराता। सामीन, ये प्रोग्राम यहाँ पर इख्तिताम को पहुँचा। ख़ास आज हमने खिराज अक़ीदत पेश किए सैयदना हज़रत उस्मान गनी रदल्लाहु ताला अन्हु को। बस दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सैयदना उस्मान गनी रदल्लाहु ताला अन्हु की तालीमात पर हम सबको अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अनुर को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: आप तमाम सामीन को ये शाम

मुबारक आप साथ दे रहे हैं रेडियो मॉरिशस की लहर पर, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं एक हसीन प्रोग्राम। जी हाँ मज़ी सामीन, गीत और गज़ल का ये हसीन प्रोग्राम जहां से भी आप साथ दे रहे हैं आपका खुशामदीद है। तो चलिए ये पहला तराना आपके नाम करते हैं।

मोहब्बत की ज़बान जब नख़मों में ढलती है तो हर दिल की धड़कन एक खूबसूरत गज़ल बन जाती है। मोहब्बत खुशबू एहसास और यादों से सजी हसीन महफिल गीत और गज़ल में एक बार फिर सलाम अर्ज़ है। महफिल मौसीकी का हुस्न ही कुछ और होता है जब सुरों में खुशबू और धुनों में मोहब्बत का रंग हो। आशा भोसले की आवाज़ में ये खूबसूरत नगमा।

बेशक मोहब्बतें एक ऐसा जज्बा है जो दिलों को जोड़ता है, फासले मिटाता है और ज़िंदगी को खूबसूरत मानी अता करता है। मोहब्बतें दिल से की जाए तो दुआ बन जाती है और सच्ची हो तो रब की अता बन जाती है। लेकिन ऐ दोस्त, वक्त के बदलते रंगों ने बहुत से रिश्तों के माने भी बदल दिए हैं। वफाओं की दुकानें बंद होती जा रही हैं, मोहब्बत अब तिजारत बन गई, लोग कहते हैं। इसी हकीकत को बयान करता हुआ एक दर्द भरा नगमा पेश खिदमत है, समाअत फरमाइए।

0: गई।
1: वो दूर भी था जब दिल दिल से मिला करते थे, अब लोग जरूरत के लिए रिश्ते निभा करते हैं। दिल की वीरानी का आलम ना पूछ ए दोस्त, कभी यादों का हुजूम है कभी तन्हाई का राज। पेश खिदमत है अमीर खुसरो साहब का लाजवाल कलाम, इश्क एहसास में डूबा हुआ सुनिए महसूस कीजिए और मोहब्बत के उन दिलकश रंगों में खो जाइए।

बिलयकीन ए दोस्त, ज़िंदगी के सफ़र में कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं जब दुख, जुदाई और बेवफाई दिल पर ऐसी चोट लगाते हैं कि खुशियां के रंग मान पर जाते हैं। मगर इन्हीं एहसासात से जन्म लेती हैं वो गज़लें और नखवे जो बरसों बाद भी दिलों को छू जाते हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, गीत और गज़लों की दुनिया में आप साथ दे रहे हैं, शुक्रिया। दिल की दौलत न सोने में है न चांदी में, ये तो बस एक सच्चे रिश्ते और खुलूस मोहब्बत में है। पेश खिदमत है मोहब्बत वारफ्तगी और दिल की खूबसूरत कैफियत को बयान करता हुआ ये दिलकश नगमा।

दिल एक ऐसी दुनिया है जहाँ यादें बसेरा करती हैं, ख्वाब परवान करते हैं और मोहब्बत अपनी खूबसूरत कहानियाँ रकम करती हैं। कभी ये दिल किसी एक नाम से हो जाता है और फिर उसके सिवा कुछ भी अहम नहीं रहता। वादे मोहब्बत की बुनियाद होते हैं, कुछ वादे उम्र भर निभाए जाते हैं और कुछ वक्त के गिर्द में कहीं गुम हो जाते हैं, मगर उनकी बाजगश यानी ईको दिल के किसी कोने में हमेशा बाकी रहती हैं। आशा भोंसले।

किसे नहीं मरने दोगी? ये क्या हो गया तुम्हें है? तुम्हारे माथे पर पसीना क्यों? किसकी मौत के बारे में सोच रही थी? मेरी? अरे मेरी जिंदगी और मौत तो अब तुम्हारे साथ है, और प्यार करने वाले मौत से डरा नहीं करते।

मोहब्बत मौसीकी और चांदनी रातों का एक ऐसा अलग ही रिश्ता होता है। मज़ीद सामीन, गीत और गज़ल की ये खूबसूरत महफिल अपने इख्तिताम को पहुंच रही हैं। उम्मीद है कि आज के नख़मों, गज़लों और शायरी ने आपके दिलों को छुआ होगा और आपकी शाम को यादगार बनाया होगा। महफिलें ख़त्म नहीं होती, यादों में बस जाती हैं और कुछ आवाज़ें रुखसत होकर भी साथ रहती हैं। फिर किसी हसीन शाम, किसी दिलकश नगमे और किसी खूबसूरत गज़ल के साथ आपसे मुलाकात होगी। सफ़र की आखिरी गज़ल हसरत जयपुरी के खूबसूरत अल्फाज और पंकज उदास की दिलनशी आवाज़ में गाइए, गुनगुनाइए और परवीज़ा और अंजू को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: यूके में एक नया विधेयक मॉरिशस को शागुस द्वीप समूह की पूर्ण संप्रभुता सौंपे जाने की प्रक्रिया को जटिल बना सकता है। हाउस ऑफ लॉर्ड में पेश किए गए इस विधेयक में अन्य बातों के अलावा ये प्रावधान है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले शागुसवासियों की राय ली जानी चाहिए। इस साल बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वालों के अलावा आलू के लगभग 250 और प्याज के 300 कृषक उत्पादन में जुड़े हैं। मेजिन में कुछ चुनौतियों के बावजूद आलू के लिए 1200 टन और प्याज के लिए 1300 टन से ज्यादा की फसल की उम्मीद की जा रही है। मौसम विश्व मौसम विज्ञान संगठन एल नीनो की वापसी के बारे में दुनिया को चेतावनी दे रहा है और सभी देशों से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूत करने की मांग कर रहा है। वहीं आज मनाए जा रहे विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में मंत्री राजेश बागवान जनता से देश की रक्षा के लिए एकजुट होने की मांग कर रहे हैं। विदेश में इसराइल और लबनानी पक्ष संघर्ष खत्म करके शांति बहाली की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। वहीं हिजबुल्ला ने युद्ध विराम की सभी प्रस्तावों से सरासर इनकार किया है। ओलिवे बॉकुल्ट इस समय लंदन में शागुस शरणार्थी समूह के कई अन्य सदस्यों के साथ मौजूद हैं। पूरे सप्ताह के दौरान उन्होंने स्टेफान डाउटी, ब्रिटिश सांसदों और लपॉटी पार्लियामेंटरी ग्रुप के सदस्यों तथा जेरेमी कोबिन के साथ कई बैठकों में भाग लिया। ओलिवे बॉकुल्ट ने मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए समझौते के समर्थन में अपनी बात रखी, साथ ही शागुसवासियों की अपेक्षाओं और चिंताओं से भी अवगत कराया। उनका कहना है कि जिन सभी लोगों से उनकी मुलाकात हुई है उन्होंने शागुसवासियों की चिंताओं और मांगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उन पर गंभीरता से विचार किया। और यूके में एक नया विधेयक मॉरिशस को शागुस द्वीप समूह की पूर्ण संप्रभुता सौंपे जाने की प्रक्रिया को जटिल बना सकता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश किए गए इस विधेयक में अन्य बातों के अलावा ये प्रावधान है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले शागुसवासियों की राय ली जानी चाहिए। क्रिडेट जेओफा प्रणव बिहारी करुणा लालू का विवरण।
1: फर्स्ट रीडिंग ऑफ अ प्राइवेट मेंबर्स बिल लॉर्ड वेयर ऑफ बालेहोम।
2: लॉर्ड वेयर द्वारा प्रस्तावित ब्रिटिश सॉवरेनिटी प्रोटेक्शन शागुस आइलैंड्स बिल एक ऐसे संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है जब द्वीप समूह के भविष्य को लेकर यूके और मॉरिशस के बीच वार्ता जारी है। इस बिल में तीन चरणों की सुरक्षा प्रक्रिया का प्रावधान है। संप्रभुता सौंपे जाने की कोई भी प्रक्रिया के लिए भावी निर्वाचित BIOT सरकार की स्वीकृति, एक रेफरेंडम के जरिए शागुस वासियों की सहमति और बरतानी संसद का मतदान।
3: My lords, I beg to introduce a bill to affirm and protect the sovereignty of the United Kingdom over the Chagos Islands and the British Indian Ocean Territory, to make provision restricting the cession or transfer of sovereignty without the approval of Parliament and without the consent of the Chagossian people, to provide for the protection of the territory's strategic and defence importance and for connected purposes.
2: इस बिल में मॉरिशस और यूके के बीच होने वाली किसी भी समझौते से जुड़े खर्च पर संसदीय नियंत्रण का भी प्रावधान है। ऐसे किसी समझौते के तहत मॉरिशस को आर्थिक प्रतिबद्धता देने से पहले ब्रिटिश सरकार को हाउस ऑफ कॉमन्स की स्वीकृति प्राप्त करनी होगी। सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए शागुसवासियों के लिए द्वीप समूह के कुछ द्वीपों पर पुनर्वास की व्यवस्था तैयार करने का भी प्रस्ताव है। ये विधेयक शुक्रवार को हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहली पढ़त पर पेश किया गया। चूंकि एक प्राइवेट मेंबर बिल है इसलिए इसके पारित होने की संभावना अभी अनिश्चित है और ये इस पर निर्भर करेगा कि इसे ब्रिटिश संसद में कितना समर्थन प्राप्त हो। अटॉर्नी जनरल की भी यही राय है। उनके अनुसार इस बिल के पारित होने की बहुत कम संभावना है। ये बिल असल में कानून बनने के लिए नहीं है, मकसद बरतानी प्रधानमंत्री कस्टमर पर दबाव डालना, शागुस संधि पर पब्लिक बहस को बढ़ावा देना और संधि के आखिर नज़दीक आने पर सरकार को कमज़ोर करना है। ये बिल संसदीय की अपेक्षा राजनीतिक है। और

0: गैलापागोस द्वीप समूह लगभग 60 छोटे द्वीपों का ये समूह 20वीं और 21वीं सदी के सबसे लंबे कूटनीतिक संघर्षों में से एक के केंद्र में रहा है। अमरीकी दबाव, ब्रिटिश संसद में हुई बहस से डोनाल्ड ट्रंप के बयान, मिसले मदाखें की साहसिक पहल तथा उन लोगों के बीच जो इस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को चुनौती देते हैं, इससे भी लोग हैं जो लंबे समय से विवादों और गलत धारणाओं के खिलाफ संघर्ष करते हुए इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। वे लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि शागुस के इतिहास, अधिकारों और संप्रभुता से जुड़े तथ्यों को सामने लाया जाए और प्रचलित भ्रांतियों का मुकाबला किया जाए। नए सीजन के लिए देश में आलू और प्याज के बीज बोए गए हैं। इस साल बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वालों के अलावा आलू के लगभग 250 और प्याज के 300 कृषक उत्पादन में जुड़े हैं, जिनमें कुछ चुनौतियों के बावजूद आलू के लिए 1200 टन और प्याज के लिए 1300 टन से ज्यादा की फसल की उम्मीद की जा रही है। बढ़ते तापमान और चरम मौसम संबंधी घटनाओं में वृद्धि, विश्व मौसम विज्ञान संगठन एल नीनो की वापसी के बारे में दुनिया को चेतावनी दे रहा है। संयुक्त राष्ट्र की ये एजेंसी सभी देशों से अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम मजबूत करने की मांग कर रही है और उसका ये भी मानना है कि जून और अगस्त 2026 के बीच एल नीनो की स्थिति उत्पन्न होने की 80% संभावना है। इस बीच विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पर्यावरण मंत्री राजेश भगवान ने देश की रक्षा के लिए समस्त जनता से एकजुट होने की मांग की। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर सरकारी सफाई अभियानों के बावजूद देश में कूड़े के नियमित अवैध डंपिंग की समस्या पर खेद जताया। उन्होंने कहा कि कूड़ा संचालन की बढ़ती लागत के कारण अन्य विकास परियोजनाओं के लिए उपलब्ध संसाधन कम हो जाते हैं। और पिछले कुछ सालों के दौरान थोबिश में लगातार हो रहे इरोजन के कारण समुद्र तट के कुछ हिस्सों में चौड़ाई काफी हद तक कम हो गई है। पर्यावरण मंत्रालय लगभग 1.1 किलोमीटर तट रेखा पर एक बड़ी सुधार योजना बना रहा है। वही बीचकंबा होटल ग्रुप ने पिछले हफ्ते थोबिश होटल के सामने एक पुनर्वास परियोजना शुरू की है। फ्रांसीसी विशेषज्ञता द्वारा चलाए जा रहे इन कार्यों का उद्देश्य है प्रकृति की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए रेत के बहाव में धीमापन लाना। माधवी जगन्नाथ, रजनीकर।
1: एक पुनर्व्यवस्था परियोजना के संदर्भ में बीचकंबा होटल ग्रुप की थोबिश होटल के सामने समुद्र तट पर ये कार्य किए जा रहे हैं। प्रकृति में कायम एक सौम्य समाधान समझा जाता है, जिसकी बदौलत लहरों की ऊर्जा कम की जा सकेगी और बालू को बहने से रोका जा सकेगा। थोबिश बीचकंबा गल्फ रिसोर्ट एंड स्पा के जनरल मैनेजर केविन गायरो ने कहा, कार्यों के अंतर्गत ढांचे लगाए जा रहे हैं। लगून की 6 अलग अलग स्थानों पर शुरुआत हो चुकी है। कम से कम 1700 क्यूबिक मीटर समुद्र तट पर ऐसा करना है। अच्छी बात यह है कि महासागर का प्रवाह बदलेगा नहीं इससे, बल्कि प्रवाह को मदद मिलेगी। समुद्र तट प्रभावित नहीं होगा और बालू भी नहीं जाएंगे। अनुमान है कि इन पिछले 40 वर्षों के दौरान थोबिश का तट करीब 40 मीटर अंदर चला गया है, जिससे कि ऊंची ऊंची लहरों का सामना कर पाने की प्राकृतिक भूमिका घट जाती है और तटीय मूल ढांचे सामने आ जाते हैं। थोबिश गांव के एक अध्यक्ष जाकी अलेक्सोव ने कहा, समुद्र तट की स्थिति बहुत बिगड़ गई है, करीब 50 मीटर चला गया। अगर ऐसे ही रह गए, ये ऐसे ही जाता रहेगा। एक समाधान ढूंढना ही चाहिए। सभी लोग तट पर जाना पसंद करते हैं, तैरने के लिए, चलने के लिए कुछ करना चाहिए। पर्यावरण मंत्रालय की ओर से तैयार एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट में थोबिश सबसे कमजोर तटीय इलाकों में से एक है, जिसके लिए आपातकालीन सुरक्षा कदम उठाने की जरूरत है। एक सप्ताह से कार्य शुरू हो गए हैं और ये 4 महीनों तक जारी रहेंगे।
0: और कुछ समय पहले हम बता रहे थे ओलिविया बोंकुर्टे समय लंदन में शागुस शरणार्थी समूह के कई अन्य सदस्यों के साथ मौजूद हैं। पूरे सप्ताह के दौरान उन्होंने स्टेफन डाउटी, ब्रिटिश सांसदों और पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप के सदस्यों तथा जेरेमी कोबिन

0: के साथ कई बैठकों में भाग लिया। ओलिविए बॉकुर्ट ने मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए समझौते के समर्थन में अपनी बात रखी, साथ ही शागुजवासियों की अपेक्षाओं और चिंताओं से भी अवगत कराया। उनका कहना है कि सभी जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई है उन्होंने शागुजवासियों की चिंता और मांगों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और उन पर विचार किया। ओलिविए बॉकुर्ट को सुनते हैं।
1: Ou fin dire qui un gain cross party support qui s'en a ou fin soin et qui qualité soutien ou fin gagné.
2: Sa mission là, il y a une mission vraiment importante pour nous parce qu'il y en a trop beaucoup de contradictions pour faire croire qu'il y a un sagouchien pas pour soutenir les deals qui sont entre le gouvernement anglais et le gouvernement maurice. Et nous avons envie de montrer à travers cette délégation là nos présences physiques dans l'Angleterre pour montrer sa membre du Parlement britannique et aussi membre de la Chambre des Lords qui nous bel et bien nous soutenir. À aucun moment nous pas compte et nous apporte nous full soutien à sa digue. Là, d'abord, nous avons un de mes grands supporters, la Ligue Sagouchien, Jeremy Corbyn, et aussi, comme vous venez de mentionner, membre qui siège le haut parti parlementaire groupe des Sagos, qui au nombre de 46, qui apporte de tout parti, qui apporte de soutien à la cause sagougienne et qui toujours finit membre du CRD, la communauté sagougienne, pour qu'elle trouve le chemin. Et mon zoon aussi, même mon conservateur, par exemple, mon zoon, c'est Ian Duncan Smith, qui est opposé à ça. Nous portons avec lui, nous disons lui, qui nous expectations. Et je suis capable de dire qui aussi nous avons l'autre. Par exemple, nous avons l'autre Lister, l'autre Ledford et les autres l'autre encore qui nous ont. Et ce qui est plus important, nous avons aussi the chairperson of Joint Commission on Human Rights qui est vraiment concerné par ça.
0: मॉरिशस में रिन्यूएबल ऊर्जा को बढ़ावा देने की दिशा में एक नया कदम उठाया गया है। पुद्रुदो में कल एक सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किया गया जो लगभग 3,400 घरों को बिजली देने में सक्षम होगी। एमसीबी, ओमनिकेन और कालिसे इंटरनेशनल के सहयोग से तैयार इस परियोजना में 250 मिलियन रुपये का निवेश किया गया है। खास बात यह है कि यहां बिजली उत्पादन के साथ कृषि गतिविधियों को भी परियोजना में शामिल किया गया है। इस परियोजना का उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना, बिजली उत्पादन में अक्षत ऊर्जा की हिस्सेदारी 60% तक पहुंचाना और 2035 तक कोयले के उपयोग को धीरे धीरे समाप्त करना है। क्लोदेट जेओफा, करुणा लालू।
3: पुरोडो सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन ऐसे समय में किया गया जब ऊर्जा संक्रमण देश की एक प्राथमिकता बन गई है। लगभग 4 हेक्टेयर में फैली सौर ऊर्जा परियोजना में 8,000 से ज्यादा फोटोवोल्टाइक पैनल लगाए गए हैं। ये सौर फर्म प्रतिवर्ष लगभग 7,700 मेगावाट प्रति घंटे स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करेगा, जिससे लगभग 3,400 घरों की आपूर्ति की जाएगी। ये परियोजना मिक्स ऊर्जा उत्पादन में नवीनीकरणीय स्रोतों के उपयोग के राष्ट्रीय लक्ष्य में सीधे रूप से योगदान देगी। जाक जिनियाविल ने कहा, कई टापू राष्ट्रों की तरह मॉरिशस क्लाइमेट चेंज के समक्ष नाजुक स्थिति में बना रहता है। ऊर्जा चुनौतियां बढ़ रही हैं, संबद्ध संसाधन पर भी भारी दबाव है। इस तरह की परियोजना से मदद मिलेगी स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन और जमीन के अधिकाधिक उपयोग को लेकर भी। इस परियोजना में लगभग 250 मिलियन रुपए का निवेश किया गया है और ये टिकाऊ वित्त पोषण के नए मॉडलों के विकास का भी उदाहरण है। चेरी एब्रो ने कहा, एमसीबी दल की ये पहल ऊर्जा संक्रमण के तहत है। परियोजनाओं का समर्थन किया जा रहा है, वित्त टिकाऊ ऊर्जा की ओर बढ़ने में अहम साधन है। इस परियोजना की एक और विशेषता कृषि वोल्टाइक यानी अग्री वोल्टाइक पद्धतियों का समावेश है, जिसके तहत एक ही स्थल पर ऊर्जा उत्पादन और कृषि गतिविधियों को एक साथ संचालित किया जा सकेगा। कृषि मंत्री डॉक्टर

0: अरविंद बुले ने कहा, चुनौतियों को देखेंगे और उन्हें संभावनाओं में बदलेंगे। इसीलिए कृषि खाद्य मंत्री की हैसियत से बागास पर फिर से गौर किया गया। गन्ने के अलावा बायोमास के अन्य साधन भी हैं। साथ में आने से नीति विकसित करने में सरकार को मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि जलवायु प्रतिबद्धताओं का सम्मान करते हुए ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना और जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता कम करना मॉरिशस की दीर्घकालिक उड़ान नीति के प्रमुख लक्ष्य बने रहेंगे।
1: शागुस द्वीप समूह पर ही बात करते हैं। शागुस द्वीप समूह लगभग 60 छोटे द्वीपों का ये समूह 20वीं और 21वीं सदी के सबसे लंबे कूटनीतिक संघर्षों में से एक के केंद्र में रहा है। अमरीकी दबाव, ब्रिटिश संसद में हुई बहस है, डोनाल्ड ट्रंप के बयान मिसले मौदाहें की साहसिक पहल और उन लोगों के बीच जो इस द्वीप समूह पर मॉरिशस की संप्रभुता को चुनौती देते हैं, ऐसे भी लोग हैं जो लंबे समय से विवादों और गलत धारणाओं के खिलाफ संघर्ष करते हुए इस मुद्दे पर अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। वे लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि शागुस के इतिहास, अधिकारों और संप्रभुता से जुड़े तथ्यों को सामने लाया जाए और प्रचलित भ्रांतियों का मुकाबला किया जाए। अंजुराम गुलाम, करुणा लालू।
0: यूके ने शागुस द्वीप समूह को मॉरिशस उपनिवेश से अलग कर ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी की स्थापना की। इसके बाद लंदन और वाशिंगटन एक समझौता तय करके जिगोगोसिया में एक अमेरिकी सैन्य अड्डा स्थापित करने की अनुमति दी। उस समय मॉरिशस स्वतंत्र नहीं हुआ था। शागुसवासियों को बलपूर्वक मॉरिशस और सेशल्स भेज दिया गया। 1980 के दशक में शागुसवासियों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए शागुस रेफ्यूजी दल में संगठित होना शुरू किया। अंतर्राष्ट्रीय न्याय अदालत ने अपने मत में कहा कि मॉरिशस की उपनिवेश मुक्ति प्रक्रिया कानूनी रूप से पूरी नहीं हुई थी और यूके को शागुस द्वीप समूह का प्रशासन खत्म करना चाहिए। आज मॉरिशस में रहने वाले अनेक शागुसवासी, खासकर युवा पीढ़ी, कहते हैं कि उन्होंने यहाँ अपनी जगह बना ली।
2: J'ai fait civil engineering dans l'université Maurice et mon fini avec first class qui vraiment m'a rien fait que mon fier. Mon content mon reste Maurice parce que si moi je suis en Angleterre, mon pas je peux pas aider dans le processus comme on ici comme mon cas activement participe avec groupe réfugiés chagous comme mon cas exode participe exode à l'exode et c'est causé c'est principe d'une perspective 23e génération. Parce qu'il n'y a pas toute troisième génération qui paraît. Essayer de montrer aux autres qui sont dans l'espoir de manger, montrer aux autres qui nous l'a pour aider aussi.
0: London, Ravana, honne se pehle, hamari mulakat, Olivier Bancoul se hui thi.
3: Moi, qui suis né dans Sagos, mon génération qui est née dans Sagos, nous dit à haut et faux, ce qui est content, content, ce qui n'est pas content, pas content, Sagos appartenait à l'île Maurice.
0: शागुस एक ऐसा द्वीप समूह जो स्मृतियों और सामरिक शक्ति के बीच झूलता रहा है। राजनीति, राष्ट्रीय हितों और अंतर्राष्ट्रीय तनावों से परे यहाँ एक ऐसी जनता भी है जो इस इंतजार में है कि इतिहास उससे छीनी गई चीजें उसे वापस लौटाए।
1: मॉरिशस में आने वाले समय में कई बिलियन रुपए के नए निजी निवेश देखने को मिल सकते हैं। निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक गतिविधियों को नई रफ्तार देने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड ने अपने प्रयास और तेज कर दिए हैं। हाल ही में हुई बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। साथ ही निवेशकों के लिए कारोबार माहौल और बेहतर बनाने और देश को अंतर्राष्ट्रीय निवेश के लिए अधिक आकर्षक बनाने के उद्देश्य से कई नई पहलों की भी घोषणा की गई। अब्दुल बुला की, करुणा लालू।
0: इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के निदेशक मंडल ने हाल ही में कई ऐसे उपायों को मंजूरी दी जिनका उद्देश्य मॉरिशस में निवेश को आकर्षित करना तथा

0: तथा आर्थिक विकास को गति देना है। मुख्य फैसलों में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत 4 कंपनियों को प्रीमियम निवेशक प्रमाण पत्र प्रदान करना शामिल है। संजय भंजन ने कहा, करीब 10 परियोजनाओं पर स्वीकृति दी गई है। विभिन्न सेक्टरों में 6.3 बिलियन रुपए की लागत पर 5 रियल इस्टेट में स्मार्ट सिटी हैं, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, बायोमेडिकल इक्विपमेंट, स्मार्ट सिटी एग्रीकल्चर भी शामिल
1: है। इक्विपमेंट बायोमेडिकल स्मार्ट एग्रीकल्चर मशरूम आ टेंपरेचर कंट्रोलर ए
0: व्यापार सुगम बनाने की पहल के तहत EDB जल्द ही बिजनेस ऑब्स्टेकल अलर्ट मैकेनिज्म नामक एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करेगा। ये मंच आर्थिक ऑपरेटरों को परमिट, लाइसेंस तथा अन्य नियमों संबंधी प्रशासनिक बाधाओं की सूचना देने की सुविधा प्रदान करेगा। EDB में आज 400 परियोजनाएं हैं, 410 बिलियन रुपए की लागत की। EDB के नेतृत्व में इनका कार्यान्वयन हो रहा है। स्वीकृति मिलने पर अक्सर परियोजना को साकार करने में 4 से 8 साल लग जाते हैं। EDB की भूमिका इन्हें लागू करने पर भी नजर रखना है।
1: Mais nous faciliter, nous suivre qui soit un projet là implémenté et ça donne un signal que l'investissement est dans le bon sens.
0: बोर्ड द्वारा गोल्डन वीजा प्रोग्राम के दिशा निर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने और साथ ही निवेशकों तथा उच्च आय वाले लोगों के लिए एक त्वरित सुविधा सेवा की भावी शुरुआत का भी जायजा लिया गया।
2: विदेश में जहां इजरायली और लबनानी पक्ष संघर्ष खत्म करके शांति बहाली की दिशा में प्रयास कर रही है, वहीं हिजबुल्ला ने युद्ध विराम के सभी प्रस्तावों से सरासर इनकार किया है।

और अब आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही हैं, दक्षिण की ओर से आ रहे बादलों का असर आज रात को हमारे स्थानीय मौसम पर पड़ेगा। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को मौसम काफ़ी अच्छा रहेगा सिवाय देश के पूर्व, दक्षिण और सेंट्रल प्लाटू पर बादल कुछ घिर आएंगे, रहकर वर्षा होगी। और कल सुबह भी देश के पूर्व, दक्षिण और ऊंचाइयों पर बादल घिरे रहेंगे, बाद में मौसम में सुधार आएगा, मौसम अच्छा रहेगा। हवा दक्षिण की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, दक्षिणी पश्चिमी लगूनों में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 16 से 18, अधिकतम तापमान 22 से 25, साहली इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22, अधिकतम 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कल सुबह सूर्योदय 6:40 पर होगा।

6:24 हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक शिव को धन्यवाद देते हैं, साथ में समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।

या जिन्हें लोग राकेश नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थ थे कल दिन के एक बजे इनके मकान नंबर 4B लेपास जिले बाउंडेरी रोज हिल से उठाकर कोदिगाव कृष्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। और नंबर 14A सहिलारी ब्लड एवेन्यू कैटबोन में 103 साल की 103 years old श्रीमती सनमती दसोई पैदाशी नाम गोकुल और जिन्हें लोग सुगिन नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थ है कल दिन के साढ़े बारह बजे इनके मकान नंबर 14A सहिलारी ब्लड एवेन्यू कैटबोन से उठाकर थामा मेल की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 12:30 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

सेबी अपने ग्राहकों को सूचित करता है कि मरम्मत कार्यों की वजह से इन इन इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। शनिवार 6 जून 2026 से सुबह के 8:30 बजे से लेकर दिन के 3 बजे तक कॉन्फ्रेगा पॉइंट साबल में और आसपास के इलाकों में जैसे कि लारू जॉन ब्लेज में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और शनिवार 6 जून 2026 सुबह 8:30 बजे से लेकर दोपहर के 3:30 बजे तक फिकॉन्फ्लाक में और आसपास के इलाकों में एवेन्यू दे कोलोम, एवेन्यू दे जेग्रेट, एवेन्यू दे कनारी, एवेन्यू दे जेग्लों, एवेन्यू दे पेड्रिक्स, एवेन्यू दे फ्लामां, एवेन्यू दे कोमोरान और एवेन्यू कारोल में भी। रविवार 7 जून 2026 सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 1 बजे तक प्लेनवेट में और आसपास के इलाकों में रू कलकत्ता, मद्रास, सेरोंग, मराठा और लारू मागों में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। और रविवार 7 जून 2026 सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक प्लेनवेट में और आसपास के इलाकों में रू कनाल बाटस्ट, गुन, कारिकाल और असन हुसैन में भी। और रविवार 7 जून 2026 सुबह 8:30 बजे से लेकर दिन के 3:30 बजे तक मौसलमान नू डाली, जेरानियम रोड और अडोल्फ रोड दे प्लेविट्स में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और गांबे में और आसपास के इलाकों में भी। और रविवार 7 जून 2026 सुबह 11:00 बजे से लेकर दिन के 2:00 बजे तक गांबे में वैंपिये रोड, गांबे दान ले पेरीमेट, ट्रिबल असेट और मोविलाक में भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। मरम्मत कार्यों के समाप्त होने पर बिना सूचना लिए ही बिजली की सप्लाई फिर से जारी कर दी जाएगी। सेबी अपने ग्राहकों से क्षमा चाहते हैं और अपना इंतजाम कर लेने की मांग करते हैं। शुक्रिया।

0: आइए सुनते हैं आज की सूचनाएं।
1: शनिवार 6 जून को 9 से 2 बजे तक

बेका के पार्किंग में इंडोमोरास वुमन एरा द्वारा रक्तदान का आयोजन किया गया है। सत्यार्थ प्रकाश मास के उपलक्ष में आर्य सभा मॉरिशस शनिवार 6 जून को ओलिये आर्य समाज में शाम 3:30 बजे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है, जिसमें भारत से आए हुए प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी सत्यार्थ प्रकाश पर प्रवचन देंगे।

0: बजले प्रभु का नाम रेडियो मॉरिशस के लहरों पर।
1: भजले प्रभु का नाम। नमस्कार श्रोताओं। श्रोताओं, आजकल हम प्रभु का नाम थोड़ा सा भुला बैठे हैं। समय ही नहीं मिलता, लगता है जीवन के सब कार्य पूरे हो रहे हैं लेकिन भगवान कहीं हमसे छूट रहे हैं और फिर दुख बढ़ते हैं। क्योंकि श्रोताओं, संसार बातें तो सुन सकता है, आपको कुछ सलाह भी दे सकता है, लेकिन जो आंतरिक शांति है वह प्रभु के पास ही मिलती है। इसीलिए आइए कुछ समय हम प्रभु के साथ जुड़ते हैं और इस भजन को सुनते हैं।

श्रोताओं, जब प्रभु का नाम भजते हैं तो हमें एक आंतरिक ताकत मिलती है। यह जो आंतरिक ताकत है वह हमारी उस शक्ति को बढ़ाती है जिसे हम सहन शक्ति कहते हैं। जीवन में सुख दुख की यात्रा तो चलती ही है, पर कोई तो हमारे साथ हो। संसार के लोग होते हैं साथ, लेकिन एक सीमा तक। लेकिन प्रभु का साथ असीम होता है। वे कब कहाँ मदद कर जाएंगे पता भी नहीं चलता है, और बाद में हम उन्हें धन्यवाद कहते हैं। आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

प्रभु का नाम जब हम भजते हैं, सुख तो वक्त निकाल देता है लेकिन दुख थोड़ा भारी लगता है। लेकिन जब प्रभु साथ होते हैं तो हम अकेलापन महसूस नहीं करते। वे हमें शक्ति देते हैं, वे हमारा रास्ता निकालते हैं, वे हमें सद्बुद्धि देते हैं, वे हमें सहन शक्ति देते हैं और हम अपने रास्ते को अपने कर्मों के अनुसार तय करते चलते हैं। क्योंकि जीवन में कर्मों के अनुसार ही सब कुछ मिलता है। हम स्वयं कहाँ तय कर पाते हैं।

कितना कुछ हम सोचते हैं, लेकिन कभी कभी गाड़ी ऐसी पटरी पर चल पड़ती है कि हम सोचते हैं कौन इसको आगे ले जा रहा है, तो उस समय प्रभु ही कर्ता धर्ता होते हैं। इसीलिए श्रोताओं, उसका नाम सदैव भजना चाहिए।

भजते भजते गुण भी आने लग जाते हैं। प्रभु के गुण बहुत हैं, इसलिए तो हम उन्हें भगवान कहते हैं, भाग्यवान। केवल अपना ही नहीं, सबका भाग्य बनाते हैं वे और भाग्य को रास्ता दिखाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं ना कि भाग्य पर छोड़ दो, डेस्टिनी पर छोड़ दो, अर्थात ईश्वर पर छोड़ दो, और भगवान तब हमारी ताकत बनते हैं। श्रोताओं, कष्ट आते हैं पर शक्ति चाहिए ना, लेकिन नाम स्मरण वही शक्ति देता है। चहूं और कष्ट हैं, हर घर में दुख है। नानक कहते हैं, नानक दुखिया सब संसार, सोई सुखी जो नाम आधार। यह जो नाम है, यह सचमुच हमें खुशी देता है, आनंद देता है।

और अंत में श्रोताओं, चलिए कुछ समय के लिए पूरी तरह से उस प्रभु में जुट जाएं, उसके साथ जुड़ जाएं, उसके गुणों का ध्यान करें। ध्यान करिए, हर लीला में भगवान ने बहुत कष्ट सहे और उन कष्टों में ही उन्होंने इस समाज को रास्ता दिखाया, उनके दुखों को दूर किया। तो हम और आप क्या चीज़ हैं? हमारे भी जीवन में कष्ट आते हैं, लेकिन प्रभु शक्ति बनकर हमारा सहारा बनते हैं। तो श्रोताओं, भजले प्रभु का नाम, अर्थात हर पल उसी का स्मरण करें, उसी को भजें, ताकि वह हमारी शक्ति बन सकें और हम इधर उधर भटकने से बच सकें। तो आइए, मुझे और यज को अनुमति दीजिए। नमस्कार, शुभ

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: मीडियम वेव 819 किलोहर्ट्ज़ पर ये रेडियो मॉरिशस है। परवेज आपसे मुखातिब है। उम्मीद है अल्लाह रब्बुल आलमीन और नबी रहमत शफाए मशर मालिक दो जहां जनाब अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सत्य के आप तमाम सामीन खैर व आफियत से हैं। जहां से भी आप हमारे साथ निभा रहे हैं, आपको दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। तो आइए मज़ीद सामीन, उर्दू नशरियात बनाम महफिल शब का आगाज़ करते हैं एक खूबसूरत हमद

वो जो निशान दीदा व दानिश से परे हैं, वो जो हर नफस में हर रग जान में रवा हैं, ज़मीन पर उसको अजमत के निशान कम नहीं, वो जो हर दर पर खड़ा हैं और अर्श पर भी वही हैं। ये रेडियो मॉरिशस है और आप सुन रहे हैं उर्दू नशरियात महफिल शब। मज़ी सामीन, अक्सर ये देखा गया है कि रमज़ान गुजरने के बाद मस्जिदों में नमाज़ें कम हो जाते हैं और ईद उल अधा गुजरने के बाद हमारे दिलों की वो नरमी, वो सखावत जो 3 दिनों में नज़र आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती हैं। मज़ी सामीन, ईद के दिनों में हमने लोगों के दिनों में ईद के दिनों में हमने लोगों के घरों में गोश पहुँचाया, हमने उनके चेहरों पर खुशियाँ देखी, मगर क्या ईद के बाद उनकी भूख ख़त्म हो गई? क्या उनकी ज़रूरतें पूरी हो गई?

शामिल मोहतरम, हकीकत में असली इम्तिहान अब शुरू होता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में साफ फरमाता है कि अल्लाह को ना तुम्हारी कुर्बानियों का गोश पहुंचता है ना उनका खून, बल्कि उस तक तो तुम्हारा तकवा पहुंचता है। मज़ीद सामीन, अगर कुर्बानी के बाद भी हमारी ज़बान से दूसरों के दिल दुख रहे हैं, अगर हमारी कमाई में रिस्क हलाल के साथ बिलावटें शामिल हैं, अगर हम भाई भाई का हक मार रहे हैं, तो हमें दोबारा सोचने की ज़रूरत है कि हमारी कुर्बानी का मकसद क्या था। ईद उल अधा हमें सिला रहमी सिखाती हैं। शामिल मोहतरम, ज़िंदगी बहुत छोटी है, इससे छोटी ज़िंदगी में नफ़रत के लिए वक्त कहाँ है। आइए आज हम अपने दिलों को साफ करते हैं। हम ईद के इस पैगाम मोहब्बत को मुस्तकबिल अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं। आमीन। हमें भी अपनी दुआओं में शामिल करें। तकनीकी मदद अंजू की रही है, मशकूर व ममनून है हम। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक परवीज़ा को इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।

0: भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का में तोहर स्वागत करत हैं जान। नमस्ते, हम सुरेखा तोहर साथ देवत हैं और भोजपुरी तड़का तोहर खातिर रहले हैं। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम में तोहर लोग अपन पसंद के गाना हमने से मंगिया जा, टेलीफोने करिया जा 4028085 पर, या फिर मैसेज भेजे जा 5251700005 पर। तोहर पसंद के गाना तोहर लग के सुनवाब जा, तोहर पसंद के भोजपुरी गाना तोहर लग के सुनवाब जा। भोजपुरी तड़का प्रोग्राम है, चला तलक के सुनवाइला जा। अभी सुनील कुमार राम तोहर जी के गावल चांदो और पारो होला गाना, और ये गाना हमने बजाओ थे जा परी खातिर। परी रहेलन मौसल माँ, उनकर बहिन संध्या, उनकर खातिर गाना मंगले हवन।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: राजकमल चिंतामणि जी के गावल गाँव के लाफो तेनवा हमके बीतल दिनवा के याद दिलाए के गाना है। राजकमल चिंतामणि जी के गावल गाना हमनी गाँव गुप के सुनीता जी के पसंद पर बजाओ थे जा। उनकर बहिन नवीमाला खातिर कोंगो मारे उनकर बहिन उनकर नाम करते जाए गाना।

0: भोजपुरी
1: भोजपुरी तड़का तड़का
2: अभी कुछ जन से तड़का लगाओ अब जा ओ गाना है ज्ञान में ही पतलाल जी के गावल और गाना हमने से मंगले हवन आत्मा राम जी बिलिया से मंगले हवन अपन बहिन ललिता बहिन सुदेवी बहिन प्रभावती और बहिन छोटी जी खातिर और पूरा इसनु परिवार खातिर बिलिया के

चला अभी कुछ अनीता जी के पसंद के गाना तो लोग के सुनवाई ला जाफरी कॉम्प्लेक्स से अनीता जी मंगले हवन दादा के कहानी दादी के कहानी चला ये गाना सुनिए जहाँ हमने अनीता जी के संग दिया और उनका सब परिवार लोग खातिर।

दादा की कहानियाँ और दादी की कहानी सुनला के बाद चला हमें आगे बढ़ब जाओ री माँ बाप की मूल हमने पहचानी ला जा। गीता गजाधर जी के गावली गाना हमने बजावत है जा फूलवंती जी के पसीन पर। वाकवा से फूलवंती जी गाना मंगले हवन अपन माँ अनुराधा के नाम और अपन पूरा परिवार के नाम।

अबू जी के पसंद के गाना अब बिल्कुल तहलक के सुनवाओ अब जा और वाकवा से अबू जी गाना मंगले हाउ वन विक्रम कुलाचंद जी के गावल धोती पोथी पगड़ी संभाल के हमने के पूर्वज लोग के अला के बात छिड़ल भाई जा पर और गाना अबू जी मंगले हवन आफेज असलम आयास जायान जाहिरा काला चौथी रईस खातिर और अपन संगत या अपी और उनकर पत्नी के नाम करत हवन अबू जी गीत।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: तड़का दे कार्यक्रम में लगेला तोहर फरमाइश ही संगे और तड़का लगावत वन मेविन जी कुद्दो से मेविन जी मंगले हवने को गाना और ये गाना है जमाल कुदू किशोर खिमिया जी के गावली गीत हमने बजवाई लज्जा मेविन जी बगल से बुनते के जानवी खातिर।

और चला अभी कुछ ललिता जी के पसंद के गाना बगल बढ़ी जय ललिता जी गिरीश रूपचंद जी के गाना सुने खुजतवन सुंदर परी। और इस सुंदर परी गाना हमने बजवावत है जय ललिता जी बगल से कृष्णी के जन्मदिन के अवसर पर, उनकर माँ निशा बगल से, उनकर पापा कृष्ण बगल से बहुत बहुत शुभकामना के संगे, फिर भाई निर्वेश बगल से बहुत बहुत प्यार बहुत बहुत शुभकामना संगे, मंगल कामना देवथन ललिता जी भी कृष्णी जी के। ललिता जी अपन बहन सुदेवी छोटी जी खातिर, प्रभावती जी खातिर, आत्माराम जी खातिर, सुखलाल मौसी, उषा लुकाना और माला राम जवन खातिर मंगले हवनी गाना।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: ऐसे तो सच के बोले लंजा कि अपन बोली से सकबे गो पहाड़ गिरा दे, एगो अपन बोली से कितना दिल सकबा तोड़ दे, पकिर यही बोली से सकबा कितना दुनिया बसा देवे, और यही बोली से सकबा कितना दिल के जोड़ देवे, कितना दिल के बहुत प्यार दे देवे। बहुत मीठा मीठा बोलबा तो जीवन में तोहरा मीठा प्यार मिली, और ही मीठा मीठा बोले के सलाह हमने के स्वीटी राम बरन देव थवन। स्वीटी राम बरन जी के गावल ये गाना हमने जात है जहाँ गायत्री जी के पसंद पर, माँ गायत्री अपन बेटी रेखा के याद में गाना मंगले हवन, और अपन बेटा अजय के संगे संगे मिल के रेखा के याद में गाना मंगले हवन। चल सुनी जा।

विष्णुहरी जी के गावाली, माफ करिए, संभाती धवन जी के गावाली गाना, विष्णुहरी जी के गाना अभी अभी खोज के निकलनी आई खातिर उनकर नाम चला जबान पर, संभावती धवन जी के गावल गाना हम धड़के सुनवावत हैं जा। और ये गाना हमसे मंगले हवन प्रेमिला जी, प्रेमिला जी त्यागूर से गाना मंगले हवन अपन बहिन संध्या के संगे संगे।

चलो हमने भी बड़ी दूर से तो हर मैसेज देखी ला जा, मतलब बड़ी दूर से आवेला मैसेज और हमने देखी ला जा तो हर मैसेज और तो हर मैसेज के जरिए तो हर मैसेज के आधार पर तो हर गाना प्रस्तुत करी ला जा। अभी चलो सुनी जा हमने साजिद जी के पसंद के गाना। साजिद जी रहे लनगोजिल और उनकर पसंद के गाना है विष्णु हरी जी के गावली गीत। और ये गाना चलावत है वन हमने के सब श्रोता लोग के नाम और कनाडा के अपन सहपाठी सरोवर जी के नाम।

और अब चला हमने सुदेवी जी के पास, इनके गाना चलाओ अब जा, वाकवा के सुदेवी जी मंगले हवन गाना। और ये गाना हमने चलाओ थे जब इनू चिंतामणि जी के गावल यह माता पिता के आदर भाव प्रकट करे के एक गाना। और ये गीत हमने बजाओ थे जाओ उन सुदेवी जी बगल से, तो योले के दीदी ललिता खातिर, कुशल परिवार खातिर, आत्माराम भैया, दीदी सुनीता, शोभा, देवीना, मालेगा के राम रतन, राम गुलाम कुआहो परिवार, और हमने के सब सुने होला रुके नाम।

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: चले लगाए लजा बिकुट के तड़का मेट्रो एक्सप्रेस संगे महेश विश्वजीत जी के गावल गाना संगे। और ये गाना हमने बजवा थे जय शांति जी खाती त्याहूर के शांति जी। ये गाना मंगले हवन दागुचे के अपन मराठी परिवार खातिर, अपर दागुचे के अपन भगीना ओम खातिर और हमने के सब श्रोता लोग खातिर।

चलो दूल्हा राजा के बरियात लेके चली जा हमने, बसंत सुपाल जी के गावाली गाना गाते चली जा हमने। और ये गाना राजन लक्ष्मण जी बंगले हवन अपन भांजा रितेश तुलसी जी के शादी के अवसर पर, उनकर शादी अभी हाल ही में होल बा, उनका ढेर शुभकामना देवा तवन राजन लक्ष्मण जी पूरा तुलसी परिवार के संगे मिलके और लक्ष्मण परिवार के संगे मिलके।

चले जर टनी सन हमने एगो प्रेम कहानी सुनी जा, मुर्गा मुर्गी के प्रेम कहानी सुनी जा। ई गाना हमने बजावत है जा शोभा जी के पसंद पर। शोभा जी रहे लंते होश, ई गाना मंगले हवन अपन बहिन खातिर, अपन बहिन अनुराधा खातिर और अपन भाई केशव के नाम। सुदेश बोजू जी कल गावली गाना है मुर्गा मुर्गी के प्रेम कहानी।

ते चले ब्रिकुते गौर गाना सुनवाई लाजा हमने प्रेम कहानी फिर मुर्गा मुर्गी के प्रेम कहानी रहल अब हमने कबूतर कबूतरी के प्रेम कहानी सुनी जा ये गाना हमने सुनब जा शशि सोहादेव जी के गावल और गीत हमने बजाओ था जा कुद्दो के मेविन के पसंद पर गाना मंगल हवन बुनते के जानवी खातिर

गीत गवाई के माहौल हो तो चला गीत गवाई के पोपुरी गाना सुनी जा हमने विवाह चिंतामणि जी के गावल और गीत गवाई में हवन भी रेखा जी गीत गवाई में ऐसे तो गीत सुनते हवन गईते हवन मटकते हवन और ये गाना भी सुनवाए खोजते हन अपन संगत आलो खातिर।

गाना सुनी जा और सेल्फी गाना है। चला संगे संगे मिलके को सेल्फी ले ला जा। ये गाना हमने विजय जी खातिर बजवाई ला जा। विजय जी के नाम करे थे जा हमने इस सेल्फी गाना।

नीरज गुप्त मधु के संगे संगे चला खुशी के दिन में तनी जांची जा झूमी जा गावी जा और तनी कमर वांडर आयला जा। ये गाना हमने बजवाओ था जा पालमा के महेन जी खातिर।

बलमा के संगे तनी नखरा वखरा चला सुनी जामे श्वेता बाबूलाल के ई गाना में किशोर की मियाँ भी संगे संगे हवाना और ई गाना हमने बजाओ थे जा पीतों के अमृता जी के पसंद पर उनका लेकालो खातिर सोनिया परी मीनाक्षी विशान खातिर और पूरा गणेश परिवार खातिर

0: भोजपुरी तड़का, भोजपुरी के स्वाद, संगीत के खुशबू, सुरेखा संगीत, भोजपुरी तड़का।
1: भोजपुरी तड़का
2: भोजपुरी तड़का के समय है जब पर पूरा हो ले जाता। अभी 11 बजे में 6 मिनट बाकी बा और 6 मिनट के गाना हमने तो खातिर प्रस्तुत करब जा। अभी जन गाना चली ई त्रिलोक गंगा जी के गावल गाना है। त्रिलोक गंगा जी के गावल एगो भक्त देशभक्ति गाना है। तो चलिए गाना के संगे संगे हमने के कार्यक्रम भोजपुरी तड़का समाप्त हो जाए और ये गाना के बाद हमने के कार्यक्रम सुनहरे पल सुनिया जा। सुनहरे पल पुराना गीत के कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम सुनिया जा हमने के सखी गिनीशा बगल से और आवत हला हमने फिर मिलब जा। तब तक खातिर शुभ रात्रि, नमस्ते।

0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: सुनहरी पल रेडियो मॉरिशस के साथ।
2: हर सुर में प्यार, हर बोल में एहसास, पुराने बॉलीवुड गीतों का ये अनमोल सफर आपके लिए लेकर आए हैं हम, जिसका नाम है सुनहरे पल, सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पर। विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार और गणेशा का प्रणाम। स्वागत है आप सभी का म्यूजिक लवर्स इस खूबसूरत से सुनहरे पल में, जहां पे आपकी यादों का खजाना खुलने वाले हैं। तो बस तैयार हो जाइए इस खूबसूरत सी सफर में हमारा हम सफर बनने के लिए।

यादों की किताब के कुछ खूबसूरत पन्ने आज फिर खुलने वाले हैं। बिल्कुल जी, रेडियो मॉरिशस पर साथ बनिए रहे। संगीत का वो दौर जहां गीत दिल से लिखे और दिल से गाए जाते थे, चलिए उसी दौर में चलते हैं वापस सुनहरे पल के साथ।

सुनहरे पल, सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ। दोस्तों, हमेशा याद रखना कि हर गीत एक ऐसा रिश्ता बनाता है और हर याद को जिंदा रखता है। आज उन्हीं यादों को फिर से महसूस करते हैं। रेडियो मॉरिशस सर लेकर आए हैं आप लोगों के लिए पुरानी फिल्मों के अनमोल गीतों की सौगात। स्वागत है आपका सुनहरे पल में। जी हाँ दोस्तों, आराम से बैठ जाइए और इन खूबसूरत गानों का आप आनंद ले लीजिए।

वक्त बदलता है लेकिन कुछ गीत हमेशा जवान रहती हैं। दोस्तों इसमें तो कोई शक नहीं है कि वक्त किसी के लिए नहीं रुकती है, लेकिन वक्त बदल जाता है लेकिन कुछ गीत हमेशा जवान रहते हैं। और आज उन्हें गीतों के साथ गुजारेंगे कुछ खूबसूरत सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस पर, और वो भी किनिशा का साथ। जी हाँ, हमारा साथ देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी। और ये अगला नगमा खासकर आपके नाम।

अपनी सूरत दिखा दे समा खूबसूरत बना दे, नहीं तो तेरा नाम लेके तुझे कोई इल्जाम देके तुझको इस महफिल में रुसवा ना कर दूं रुसवा।

खफा हो के चेहरा छुपा ले मगर याद रख हुस्न वाले जो है आग तेरी जवानी, मेरा प्यार है सर्द पानी, मैं तेरे गुस्से को ठंडा ना कर दूँ।

पुराने गीत पुराने यादें, व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन। लेकिन फिर भी हमेशा हम आपको याद दिलाते हैं कि जब ऐसे गीत हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए सुनहरे पल में, तो वक्त जो है ना फिर से हम वापस लेकर आते हैं, उन्हीं यादों को हम दोबारा फिर से ज़िंदा कर लेते हैं और इन्हीं गीतों के ज़रिए आपको आपके उन खूबसूरत यादों को फिर से जीने पर हम मजबूर कर लेते हैं। तो चलिए जी, ये अगला नगमा स्पेशली हमारे दिल से आपके दिल तक।

वेल, हो सकता है कि आज आपका दिन ज़्यादा हेक्टिक था, हो सकता है कि आज आप कुछ ज़्यादा ही थके हुए हो। अरे मेरी जान, आप फिक्र मत करना, गिनिशा है ना साथ देने के लिए, आपकी इस थकान को दूर भगाने के लिए हम आ गई हैं बिल्कुल। और इन खूबसूरत लम्हों के ज़रिए आई एम गोइंग टू मेक यू ट्रैवल टू टाइम, यस बैक टू मेमोरीज, जहाँ पे आप और आपके उस खूबसूरत पल बिल्कुल जी दोबारा जीने के लिए आप तो बिल्कुल तैयार है। लेकिन गाना कौन सा हम लेकर आए हैं अगला, चलिए खुद ही सुन लीजिए।

तो चलिए जी, आपको खूबसूरत गीत सुनाते सुनाते वक्त कैसे बीता चला गया हमें पता ही नहीं चला, अंदाज़ा भी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम आपसे वादा करते हैं फिर मिलेंगे एक और खूबसूरत से सुनहरे पल के शो में। तब तक के लिए गिनीशा को आप इजाज़त दीजिए। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

0: एनबीसी रेडियो हर पल आपके साथ।
1: ये गुलशन, फूल, कलियां, बहार, वादियां, ये मौसम, खेत, हरियाली, पहाड़, बर्फ, ये कायनात, कुछ भी नहीं,
2: कुछ भी नहीं,
1: कुछ भी नहीं। गरन में वो नहीं,
2: वो है कौन?
3: कप्तान साहब, उस लड़की का कोई नाम तो होगा।
1: नाम?